शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं।

सुबह के 10 बज रहे हैं श्रोताओं, आपको जिस पल का बेसब्री से इंतजार था वो पल आ चुका है। जी श्रोताओं, अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिसार का। इस कार्यक्रम में हम आपको खबरें, रोचक तथ्य, सामान्य ज्ञान तथा एक महान व्यक्ति से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियां देते हैं जो आपके ज्ञान को ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपका मनोरंजन भी करवाती है।

तो चलिए शुरुआत करते हैं हिसार और उसके आसपास की खबरों के साथ। डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और युवा पीढ़ी को डाक विभाग से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए हरियाणा डाक परिमंडल ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में एन जैन थीम पर आधारित नवनिर्मित डाकघर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कुलपति बलदेव राज कम्बोज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एन जैन अवधारणा का मूल उद्देश्य छात्रों को छात्रों द्वारा छात्रों के लिए भावना को साकार करना है।

आज ज्येष्ठ मास की निर्जला एकादशी वीरवार को श्रद्धा एवं आस्था के साथ मनाई जाएगी। इसमें लोगों को शीतल शरबत पिलाने के लिए कई जगहों पर छबीले लगाई जाएंगी।

देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 2026 के तहत प्रसिद्ध पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण तथा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके रोहित शर्मा को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये सम्मान प्रदान किए।

0: अर्ज किया है, रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया। रांझे ने हीर को कबूतर से खत भिजवाया और एक जैसी छतों को देख कबूतर ने खत गलत पते पर गिराया। कबूतर की गलती ने बेचारे रांझे को सरे बाजार बहुत पिटवाया। तब हीर ने रांझे को समझाया,
1: अरे बुद्धू, मैसेज ही भेजना था तो ईमेल से क्यों नहीं भिजवाया।
2: RADIOHISAR यानी radiohisar@gmail.com पर
1: आप भी भेजिए अपने मैसेज ईमेल के माध्यम से अपनी पसंद के गाने सुनने के लिए कार्यक्रम ई फरमाइश में
2: हर मंगलवार शाम 5 बजे
1: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं नमस्ते हिसार। यह आपका अपना रेडियो स्टेशन है जो हर पल आपके साथ।

है मनोरंजन जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ मैं हूं आपका हमसफर अमर बेनीवाल। अगले कुछ समय में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके पसंद के रोचक जानकारी और संगीत। आज के नमस्ते हिसार में हम आपसे प्रश्न पूछने जा रहे हैं और श्रोताओं आप इस प्रश्न का उत्तर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। अपना नाम, प्रश्न का उत्तर और आपके पसंद का गीत। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। नंबर एक बार फिर सुने 9729253272। और आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारे हरियाणा में बादशाह प्राण पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। प्रश्न एक बार फिर सुने हमारे हरियाणा में बादशाह प्राण पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर और अपने पसंद का गीत हमें लिखकर भेजें। तब तक सुने ये प्यारा सा नगमा।

तो आइए दोस्तों, आपको जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर बता देते हैं। उस प्रश्न का उत्तर है हिसार। हमें सबसे पहले प्रश्न का उत्तर भेजा है वो सुंदरनगर हिसार से, मोनिका खरलवा, पंकज शिवम, नैन्सी, सुलेख, सुरेश खरलवा ने। दूसरा उत्तर हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से, रवि कुमार, राहुल कुमार, रंजीत, जयप्रकाश, राहुल, मन्नत ने। और फिर हमें उत्तर भेजा है गांव सुई, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी से, बलजीत मनकस, मूर्ति देवी, संतोष, प्रदीप, दीप्ति, वीरेन मनकस। और फिर हमें उत्तर भेजा है अगले श्रोतागण ने वायुसेना स्टेशन नाल बीकानेर से, संत कुमार गुर्जर, विजेंद्र राज पुरोहित, ओमवीर स्टोरकीपर, हवलदार दिनेश, सूबेदार खुशीराम गुज्जर, राकेश पेंटर, निरंजन पेंटर, अमनप्रीत मीटर रीडर। और इस प्रश्न का उत्तर हमें भेजा है गांव ढाणी, कुतुबपुर, जिला हांसी से, रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी ने। और अगला उत्तर हमें भेजा है गांव नलोई, तहसील शिवानी मंडी, जिला हिसार से, सजन जांगड़ा, राजवाला, कार्तिक वेदांश ने।

आज की इस कड़ी में हमारा अगला प्रश्न है। हरियाणा में एकमात्र शक्तिपीठ है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा में एकमात्र शक्तिपीठ है वो कहाँ स्थित है और कौन सा है? इसका उत्तर हमें लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9729253272। तो आइए सुनते हैं आपके द्वारा भेजे गए उत्तर के साथ आपके पसंद का ये गीत।

गीत तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ये हैं गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा, सार्थक और सचिन। और हमारे ये श्रोता है गांव पनिहार चक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, कान्हा, लड्डू और ममता, इनके साथ समस्त दहिया परिवार हमारे नियमित श्रोता हैं। ये गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, और इन्हीं के साथ हैं मनोज भ्याण और सुरेंद्र भ्याण।

हमारे ये श्रोता है हिसार से जो है गांव गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक, तेजपाल, कृष्णपाल, सुमन, पूनम, सोनिया, रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक।

0: प्रिय श्रोताओं, हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हमें लिख भेजा है गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सजन जांगड़ा राजबाला कार्तिक व वेदांश ने। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है भद्रकाली देवी को मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है सुंदरनगर हिसार से मोनिका खरलवा पंकज शिवम नैन्सी सुलेख सुरेश खरलवा ने। और अगला श्रोतागण है हमारा गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी से रामधारी अवाना अवनी प्रियांशी रियांशी औजस अनाया गुरदीप बेबी किरित अवाना। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है वायु स्टेशन नाल बीकानेर से संत कुमार गुज्जर ब्रिजेंद्र राजपुरोहित ओमवीर स्टोरकीपर हवलदार दिनेश सूबेदार खुशीराम गुज्जर राकेश पेंटर निरंजन पेंटर अमनप्रीत मीटर रीडर। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है हमारे श्रोतागण ने गांव सुई तहसील भवानीखेड़ा जिला भिवानी से बलजीत मनकस मूर्ति देवी संतोष प्रदीप दीप्ति वीरेन मनकस ने। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल मन्नत गुरशब्द राहुल। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से राधेश्याम शर्मा इंदिरा शर्मा सार्थक शर्मा और सचिन शर्मा ने। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है गांव गोंदर करनाल से किरणपाल बुम्बक तेजपाल कृष्णपाल सुमन पूनम सोनिया रोशनी देवी भगत सिंह बुम्बक ने। और अगला उत्तर हमें लिख भेजा है मंटू शर्मा गांव सेरडा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से।
1: मत कर।

सही जवाब देने वालों में हमारे श्रोतागण रहे हैं वीरेंद्र भ्यान, सुरेंद्र भ्यान, शमशेर भ्यान, मनोज भ्यान, ये हैं जेवरा हिसार से।

0: भारत अभियान।
1: जब सुरक्षित है वे लोग जिन्हें अधिक है टीबी होने की संभावना, तभी साकार होगी टीबी मुक्त भारत की कामना। पहली से मौजूद स्वास्थ्य परिस्थितियाँ टीबी होने की संभावना को बढ़ा सकती हैं। इस वर्ग में आप या आपका परिवार भी हो सकता है। इस समूह में आते हैं वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान या शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित, टीबी निकट संपर्क हुआ हो, मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग। तो टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपनी जांच कराएं। अगर टीबी ना हो तो जरूरत पड़ने पर टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी से सुरक्षित हो जाएं, अन्यथा निशुल्क दवा और उपचार का लाभ उठाएं। आइए हम सब मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी।
3: जारी करता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा।
4: क्या आप परेशान हैं?
5: मैं परेशान।
6: क्या आप खुश हैं?
7: आज मैं ऊपर।
4: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
6: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
8: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
4: या आप प्यार में हैं?
9: पहला पहला प्यार है।
6: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
10: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
4: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
6: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
4: कार्यक्रम संदेश आपके, गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
6: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
11: FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो साथी सुषमा डोडी के साथ। श्रोताओं, हिसार की मिट्टी प्रतिभाओं और कर्म योगियों की धरती रही है। इसी धरती से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व का परिचय लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। श्रोताओं, आज हम जानेंगे हिसार अंचल से जुड़े एक ऐसे जन नेता और समाज सेवी के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं चौधरी मनीराम गोदारा की। चौधरी मनीराम गोदारा का जन्म 17 नवंबर 1925 को बड़ोपल गांव में हुआ।

जो उस समय हिसार जिले का हिस्सा था। उनका परिवार कृषि से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के जीवन की कठिनाइयों को बहुत निकट से देखा। इन्हीं अनुभवों ने उनके मन में समाज सेवा और जन सेवा की भावना पैदा की। वे लोगों की समस्याओं को सुनते, उनके समाधान के लिए प्रयास करते और हमेशा आम जनता के बीच रहकर कार्य करते थे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते ही वे लोकप्रिय जन नेता के रूप में विख्यात हो गए। वे कई बार विधायक चुने गए और बाद में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी बने। हरियाणा सरकार में उन्होंने सिंचाई, बिजली तथा गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली।

मणिराम गोदारा जी का मानना था कि किसी भी प्रदेश की प्रगति उसके गांव और किसानों की समृद्धि पर निर्भर करती है। उन्होंने किसानों की समस्याओं को विधानसभा और संसद में प्रमुखता से उठाया। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, ग्रामीण विकास और जन कल्याण से जुड़े अनेकों कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे सादगी, ईमानदारी और जनसंपर्क के लिए विशेष रूप से जाने जाते थे। वे अक्सर लोगों के बीच पहुंचकर समस्याएं सुनते थे। 15 जून 2009 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी सेवा भावना, संघर्षशील व्यक्तित्व और जनहित के प्रति समर्पण आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। श्रोताओं, चौधरी मणिराम गोदारा का जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि व्यक्ति में सेवा का भाव व ईमानदारी हो तो वह लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहता है।

0: क्या आप परेशान हैं?
1: मैं परेशान, परेशान, परेशान, परेशान।
2: क्या आप खुश हैं?
3: आज मैं ऊपर।
0: क्या आप डांस करना चाहते हैं?
2: क्या आपका दिल टूटा हुआ है?
4: दिल के टुकड़े टुकड़े करके।
0: या आप प्यार में हैं?
5: पहला पहला प्यार है।
2: क्या आप अपने पुराने दिनों में लौटना चाहते हैं?
6: कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
0: तो मैसेज कीजिए 9729253272 पर,
2: क्योंकि हमारे पास है हर गाना आपके मूड और सिचुएशन के हिसाब से।
0: कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, हर मंगलवार और शुक्रवार रात 10 बजे
2: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।

दोस्तों, नमस्ते हिसार के जारी कार्यक्रम की सूची में अब हम चलते हैं रोचक तथ्यों की ओर। साझा करते हैं कुछ नई जानकारियां। दोस्तों, गर्म पानी को अगर ठंडे पानी की तुलना में देखा जाए तो गर्म पानी तेजी से बर्फ में बदल जाता है। वैज्ञानिकली इसको इम्पीबा इफेक्ट कहते हैं। स्नेक प्लांट, जिसे साइंटिफिकली सेंसिवीरिया कहते हैं, ये प्राकृतिक रूप से घर और ऑफिस के अंदर की जहरीली गैस जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड को सोख कर हवा को स्वच्छ बनाने वाले मुख्य पौधों में से एक है। अब आपको अगले नए रोचक तथ्य की जानकारी देते हैं। जब आप रास्ते में चलते हैं और अचानक आंख में मच्छर गिर जाए तो आप रुककर आंख को बिना मले 3 कदम पीछे चलें। मच्छर संभवतः स्वयं निकल जाएगा। श्रोताओं, ऐसा बैकवर्ड थ्रस्ट फोर्सेस के कारण होता है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं मोबाइल को हिंदी में दूरभाषा यंत्र कहते हैं, रेलगाड़ी को यानी

बैडमिंटन को लोहपत गामिनी और क्रिकेट को लंबदड़ गोल पिंड धर पकड़ प्रतियोगिता कहते हैं। लोकप्रिय मजाकिया नाम एक और भी है जिसे गोलगट्टम लकड़पट्टम दे दनादन प्रतियोगिता कहते हैं।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: हर सुबह एक मौका है
6: खुद को कल से बेहतर बनाने का।
5: कोई है जो आपको एहसास दिलाता है
6: कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का।
5: कीजिए अपने दिन की बेहतरीन शुरुआत
6: आकाशवाणी हिसार के साथ।
7: राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम।
5: सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात
6: रोज सुबह 7:40 पर
5: सिर्फ आकाशवाणी हिसार 102.3 FM पर।
0: मैं माँ बनने वाली हूँ। बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो दुनिया में अपनी तरह का एक अनूठा और शानदार उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेघालय की मातृसत्तात्मक परंपरा के बारे में, जहाँ पीढ़ियों से महिलाओं को सर्वोच्च सामाजिक और आर्थिक सम्मान प्राप्त है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों में मातृसत्तात्मक समाज चलता है। इन जनजातियों में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के घर जाकर रहता है। इनमें वंश और गोत्र माता से तय होते हैं। परिवार की सबसे छोटी बेटी को पूरे पैतृक घर और संपत्ति का मुख्य उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके बदले छोटी बेटी पर ही वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी होती है। संतानें अपनी माता का उपनाम अपनाती हैं। परिवार में पिता का स्थान भावनात्मक रूप से तो होता है, लेकिन महत्वपूर्ण और सामाजिक फैसलों में मामा की भूमिका सबसे अहम होती है। तो कैसी लगी आपको सबसे रोचक जानकारी?

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिएगा कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का भाग 1314।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया, शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू, नाहिद और पापा हबीब अहमद

0: इदरीसी, कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800044559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। ये कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।

0: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
0: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
0: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: सर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना।

0: क्या क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
2: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक

0: विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
1: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
1: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम

गिजुभाई बधे का एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना। श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। आज आपने सुना इस कार्यक्रम का 1314वां भाग। FM बैंड 102.3 MHz पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र। और अब सुबह के 11:28 हुए हैं। कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है।

कार्यक्रम में आप सुनिए मसरूर अनवर का लिखा ये शेर। इसे आवाज दी है रूना लैला ने।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाजों में हम आपको एक गैर फिल्मी गीत सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं यतीन्द्र मिश्रा और संगीत दिया है प्रीतम ने।

विद भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। ये आवाज है भूपेंद्र सिंह की, विमल कश्यप के बोल हैं और निखिल कामत का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी पर भरी।

0: में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको एक भक्ति पद सुनवा रहे हैं।

रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज लता मंगेशकर की, और हम आपको संत मीराबाई का ये भजन सुनवा रहे हैं।

0: इस भक्तिपद के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: रंग तरंग। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की

0: मेजबानी करेगा। दो दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज महान संगीतकार मदन मोहन का जन्मदिन है। हम उन्हें आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। साथ ही आज मशहूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम याद करेंगे मदन मोहन को और साथ ही करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत सुनेंगे। यह आवाज लता मंगेशकर और भूपेंद्र की, फिल्म का नाम मौसम, गीतकार गुलजार, संगीतकार मदन मोहन।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
2: कौन लाया।
3: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत सुनिए, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम हीर रांझा।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव

0: अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में अब सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, स्वर लता मंगेशकर का है और ये फिल्म है चिराग।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खान का लिखा गीत। आवाजें मदन मोहन और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था वो कौन थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब सुनिए राजा मेहदी अली खान की रचना, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है मेरा साया। संगीतकार हैं मदन मोहन और अभी तक हम आपको सुनवा रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में अभी अपनी फिल्म मेरा साया का गीत सुना। गीतकार राजा मेहरी अली खान थे और संगीतकार थे मदन मोहन।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर

0: कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है, और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दोस्तों अभी तक आप सुन रहे थे मदन मोहन की संगीत रचनाएं, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी अभिनेत्री करिश्मा कपूर की फिल्मों से कुछ गीत। तो लीजिए पहले हम आपको नदीम श्रवण की संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ ये गीत सुनवा रहे हैं, उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजी, फिल्म का नाम राजा हिंदुस्तानी।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, उदित नारायण की आवाज और ये फिल्म है अनाड़ी।

धरती पे आए चमक चांदनी।

0: कलियों की मस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख।
1: इस कार्यक्रम का अब आखिरी गीत सुनिए, आनंद मिलिंद का संगीत, समीर के बोल, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजी, फिल्म का नाम कूली नंबर 1।

0: उसकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है?
2: हाल बहुत अच्छे हैं।
1: देखिए बारिश की बूंदें पड़ गई।

0: मुंबई के सरजमी पर और
1: मुंबई के
0: इंतजार
1: अलावा
0: है।
1: और भी बहुत सारी जगह है जहां छुटपुट बारिश की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन बारिश के बाद जब फिर से धूप निकलती है ना तो बारिश का मजा किरकिरा कर देती है, क्योंकि उमस बहुत ज्यादा हो जाती है।
0: बस जब बारिश होती है तो हमें इंतजार रहता है कि नदियां भर जाएं, तालाब, झरने और कलकल बहने लगे। मतलब ये लगता है कि पानी पानी चारों तरफ दिखाई पड़े, और जब ज्यादा बरसात होती है तो हम परेशान भी होने लगते हैं। तो बस यही उम्मीद करते हैं कि इस बार संतुलित बारिश हो। और आज विशेष तौर पर हम अपने श्रोताओं को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आज एक विशेष दिन है, नाविक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस।
1: जी
0: तो ये वैसे हमें रोज इस बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इस दिवस के बहाने हम लोगों को आगाह करते हैं कि जो हमारे मछुआरे हैं, नदियों में जाते हैं, समंदर में जाते हैं, मछलियां पकड़ने जाते हैं,
1: जी
0: तो उनकी उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, कितनी सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है, घर परिवार वालों की, समाज की। और दूसरा कि जब आप इस नौका विहार के लिए जाएं और नाविक का काम, मतलब मछुआरों का काम करने जाते हैं, तो पहली शर्त यह कि तैरना आना चाहिए, कि बिना तैरे नदी में छलांग न लगाएं कि हम
1: वैसे
0: तैर रहे
1: भी
0: हैं।
1: जब हम किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं जहां नदी, झील, झरने ऐसी चीजें होती हैं, और वहां पर जब हम नाव की सैर के लिए जाते हैं तो सुरक्षा के तौर पर हमें एक जैकेट दिया जाता है पहनने के लिए कि अगर कभी कुछ दुर्घटना हो तो वहां आप सुरक्षित रहें। लेकिन उसके अलावा एक नाविक इस तरह का मौजूद हमेशा रहता है कि अगर कोई दुर्घटना हो तो अधिकतम लोगों को वो बचा कर ला सके, और बहुत ही उनकी कठिन जिंदगी होती है, उनके बारे में लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता हो, इसीलिए इस तरह के खास दिन जो है वो हम मनाते हैं।
0: और कई बार क्या होता है कि जब नौका विहार के लिए लोग निकलते हैं तो बहुत सारे जो नाविक होते हैं वो नाव पर, जहां पर ये सुरक्षा जैकेट नहीं देते हैं,
1: जी
0: कम होते, 2-4 होते हैं और 15-20 लोगों को बिठा देते
1: जी
0: हैं, तो ये बहुत खतरनाक होता है। जो लोग बैठते हैं, कहीं पैसों की बचत के चलते, कहीं समय की बचत के चलते बैठ जाते हैं, उनको ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जिंदगी ज्यादा कीमती है, न कि आपके धन की धन। तो ये ध्यान रखें, अक्सर किसी जगह पर जब, जहां पर कहीं भीड़ भाड़ इकट्ठी होती, तो अमूमन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि फला जगह पर नौका डूब गई। तो ये ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि इस तरह की आपदाएं अब कम हो रही हैं, क्योंकि सरकार की ओर से भी मुहिम चलाई जा
1: जी
0: रही है कि एक तो सुरक्षा जैकेट बहुत जरूरी कर दिया है, और जगह जगह पर उनकी टीम काम करती है, नदियों में जाती रहती है कि कहीं ऐसी दुर्घटना हो तो उन्हें बचाया जा सके।
1: तो इससे जुड़े कोई अगर अनुभव है हमारे सुनने वालों के तो वो हमें लिखकर अवश्य भेजें। इसके अलावा आज जिन विषयों पर बातचीत हम करने वाले हैं, हम बता दें कि अगर आपने घर में कुछ पौधे लगाने के आप शौकीन हैं या आप कोई खेती भी करते हैं तो कीट जो लग जाते हैं, जो कुछ कीड़े हैं ना जो लग जाते हैं, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके घरेलू पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तो आज तो हम सिर्फ घरेलू पौधों के बारे में बात करने वाले हैं। आपने घर में अपने गार्डन छोटा सा बगीचा बनाया, छत पर एक बगिया बनाई है, तो उनको बचाने के लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे सुनने वाले जरूर हमसे साझा करें। और शादी ब्याह एक ऐसा बहाना होता है जब बहुत सारे सगे संबंधियों से मुलाकात हो जाती है हमारी। कई बार तो हमें शादी में जाते ही इसलिए है कि अरे वो मौसी आएंगी, वो मामा आएंगे, वो ताऊ आएंगे, या उनके बच्चों से मुलाकात नहीं हुई होती है तो उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा
0: और बहुत सारे दोस्त मित्र मिलेंगे तो चलते हैं, और वो जो इकट्ठे टीम बना के, दल बना के जाना, वो एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि अमूमन अकेले अकेले ही जाना होता है। लेकिन शादी ब्याह में कई टीम बन जाती है, भाई दफ्तरों से भी जब लोग किसी की शादी में जाते हैं तो कहाँ मिले, फला जगह पे मिलते हैं, और सब झुंड बना के जाते हैं, तो उसका एक अलग अनुभव होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे श्रोताओं के इस मामले में क्या अनुभव है कि वो जब शादी ब्याह में जाते हैं तो उन्हें किस तरह की फीलिंग होती है, कौन सा एहसास होता है, उन एहसास को यहाँ पर साझा करें विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।
1: और आज होगी कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत जिनका परिचय हम करा रहे हैं ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई। तो बातें विस्तार से होंगी, लेकिन ममता जी एक गीत पहले सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं ये गाना।

0: ममता जी, आज हम जिनकी कहानी की बात कर रहे हैं पद्मश्री के अंतर्गत, ये हैं रमीला बेन राय सिंह भाई, जिनको साल 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार बिना स्वार्थ के ये अपनी सेवाएं देती आ रही हैं।
1: और बता दें कि सामाजिक कार्यों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान दिया और 1 जून 1969 को गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा 10वीं कक्षा के आगे तो नहीं हो पाई और उनका जहां जन्म हुआ था समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए तो लोग जाने जाते हैं वहां के, लेकिन संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित है, इसलिए उनकी औपचारिक शिक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। ऐसा समुदाय जहां लड़कियों के लिए शिक्षा अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों और कृषि कार्यों के आगे उपेक्षित थी।
0: बिल्कुल। और रमीला बेन, ज्ञान की प्यास उनमें थी और कुछ कर दिखाने का जुनून ये भी उनका कम नहीं हुआ। मतलब जिस जहां वो जन्मी पली बड़ी, माहौल चाहे जैसा भी था, लेकिन उनके जुनून को वो रोक नहीं पाया और इसी बात ने उनके जीवन को उद्देश्य दिया और दिशा भी थी। भले ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी, लेकिन उनके जीवन के जो अनुभव थे उन्होंने उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाया, एक दयालु और दृढ़ निश्चय और परिवर्तन लाने वाली महिला के रूप में उन्हें ढाल दिया। रमीला बेन के जीवन जो था वो बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ था। उनके गांव में उचित शौचालयों का अभाव था, खुले में शौच करने जाना दैनिक जीवन की एक वास्तविकता थी और खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो बच्चों के लिए भी बात करें, जो छोटी बच्चियां थी उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य

0: से जोखिम पैदा हो सकते थे। इस चीज से महिलाओं को शौच के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ता था और इससे उनकी सुरक्षा और गरिमा ये भी खतरे में पड़ जाती थी।
1: और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी ग्रामीणों को, जो सदियों पुरानी प्रथाओं को छोड़ने के लिए मनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो प्रथाओं में इतने जकड़े होते हैं कि उसे निकालना मुश्किल काम होता है। सबके विरोध का सामना करते हुए उन्हें एक एक परिवार का विश्वास भी जीतना था। उस पर उनकी आर्थिक तंगी ने उनकी चुनौतियों को और बढ़ा दिया, जिससे सामग्री जुटाना और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, जो कि वो कर रही थी।
0: और वो अपने इस काम के लिए सरकारी सहायता भी चाहती थी, लेकिन यहाँ भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, क्योंकि कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं ना जो नहीं चाहते हैं कि ये महिला काम करे। और ये सारी जटिलताएं, इनसे निपटने के लिए बहुत सारा धैर्य और दृढ़ता की जरूरत उन्हें थी। कितनी भी उनकी यात्रा जो चल रही थी उसमें बाधाएं आती गई, लेकिन वो अडिग रही और अपने अटूट हौसले के साथ में आगे बढ़ती रही।
1: और रमीला बेन के गांव में परिवर्तन लाने के लक्ष्य की शुरुआत हो चुकी थी। अपने गांव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता की समस्या को सुलझाने का प्रयास शुरू किया। अपनी कोशिशों से उन्होंने लोगों को एकजुट किया और 700 से ज्यादा स्वच्छता इकाइयां बनवाई, जिससे कुछ गांव खुले में शौच मुक्त हो गए।
0: लेकिन उन्हें बुनियादी ढांचा तैयार करने के साथ साथ लोगों में जागरूकता भी बढ़ानी हुई। जैसे आपने कहा ना कि भाई अपनी पुरानी जो प्रथाएं या रूढ़ियां हैं, लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो उन्हें खुले में शौच के संबंध में जो जोखिम होते हैं उन पर प्रकाश डालने के लिए बहुत सारे शैक्षिक अभियान उन्होंने चलाए, जिनमें बहुत सरल और प्रभावशाली संदेश होते थे, जिनके जरिए वो ग्रामीणों को समझाती थी तो बात उनके समझ में भी आ जाती थी।
1: और यही नहीं, उन्होंने सामुदायिक बैठकें आयोजित की, स्थानीय नेताओं से संपर्क किया और घर घर जाकर लोगों से निजी तौर पर बातचीत की संदर्भ में। और उनका काम केवल स्वच्छता तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में आर्थिक स्वतंत्रता की शक्ति को पहचानते हुए बहुत से स्वयं सहायता समूह स्थापित किए, जिनमें महिलाओं को एक साथ लाकर सामूहिक रूप से बचत करने और छोटे छोटे ऋण लेने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में सहायता दी। और ये सहायता समूह ग्रामीण आबादी और सरकारी योजनाओं को सीधे पहुंचाने का माध्यम भी बने।
0: इन सहायता समूहों ने महिलाओं को सिलाई और हस्तशिल्प से लेकर लघु कृषि तक सूक्ष्म उद्योग चलाने के ज्ञान भी दिया। और रमीला बेन ने विधवा कल्याण के लिए भी बहुत सारा काम किया, जिससे महिलाओं को सहायता मिली और वित्तीय सहायता भी मिलती रही। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्होंने घरेलू आय में सुधार किया और महिलाओं में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को भाव, जो ये भाव था, उसको बढ़ावा दिया।
1: रमीला बेन के प्रयास से गांव में जो स्वच्छता की कमी थी, स्वच्छता की ओर लोग जागरूक हुए, और जिससे स्वास्थ्य समस्याएं जो बहुत ज्यादा थी कम हुई, और जो धन का अभाव था वो भी बढ़ा, क्योंकि निजी रूप से उन्होंने आर्थिक संपन्नता की ओर उन्मुख किया लोगों को, ग्रामीण लोगों को। और उनके अथक प्रयास से आसपास के गांव भी जैसे खुले शौच में जाने की जो प्रथा थी उससे मुक्त हुए, और जो बीमारियां थी निश्चित रूप से उससे कमतर हुई बीमारियां, और महिलाओं को सम्मान और निजता का अधिकार भी वापस मिला, क्योंकि अब उन्हें अंधेरे में खेतों में जाने की जरूरत नहीं थी।
0: और पहले घरेलू भूमिकाओं तक सीमित रहने वाली जो महिलाएं थी, अब वो खुद को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उद्यमी और वित्तीय निर्णय लेने वाली वो बन रही थी। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ रही थी, परिवारों तक उनके लाभ भी पहुंचने लगे थे। ये वो लाभ थे जो पहले इनके बारे में जानकारी भी नहीं थी उन लोगों को, और इन गांवों में नए सिरे से सम्मान और आशा की भावना जागृत हुई। इन गांवों के बच्चे, खासतौर पर लड़कियां, अब बिना डर के अपनी शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर पा रही थी।
1: बिल्कुल सही बात है। रमीला बेन गुजरात में एक समाज सेविका के रूप में उभरी, और उनका कहना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और उनकी सेवा भाव और मेहनत को देखते हुए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। 2002 में पद्मश्री के अलावा उन्हें स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए,
0: ममता जी मैं यह करेक्शन करना चाहूंगी, 2022 में उन्हें मिला।
1: 2022 बिल्कुल सही कहा आपने, और 2017 में भी उन्हें पुरस्कृत किया गया स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से, और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नारी तू नारायणी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और उनका नाम दृढ़ता और बदलाव का पर्याय बन गया।
0: और उनकी ये जो कहानी थी, जो कार्य उन्होंने किए, वो बहुत सारी महिलाओं को के लिए आगे बढ़कर अपने जीवन की बागडोर संभालने के लिए प्रेरित करते थे। बहुत सारे गांवों को स्वच्छ और सशक्त बनाने के लिए जो उनका जुनून था, इसने उन्हें पहचान भी दिलाई और सम्मान भी दिलाया। और

0: बेन अब तक गुजरात के करीब करीब 700 से ज्यादा शौचालय वहां पर वो बनवा चुकी हैं या मदद की है उन्होंने, हम ऐसा कह सकते हैं। और उनकी कहानी अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है और ये साबित करती है कि एक बदलाव का छोटा से छोटा कदम भी अगर है, अगर अटूट संकल्प है, तो वो उसी से शुरुआत उसकी होती है।
1: बिल्कुल। अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं सखियों और सखाओं को।

0: चंचल जी, देखिए शादी ब्याह केवल दो लोगों का मिलना नहीं होता, मिलन नहीं होता, बल्कि बिछड़े हुए रिश्तों और परिवारों को फिर से जोड़ने का सुंदर अवसर भी होता है। कहा जाता है कि समाज के दो परिवार का मिलन होता है। घर में जब शादी का माहौल होता है तो चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों की गूंज छाई रहती है। ऐसे में जब रिश्तेदारों का आगमन होता है, जब झुंड के झुंड रिश्तेदार आते हैं कि वो फलाने वाली बुआ आ रही है, फलानी चाची आ रही है,
1: कोई मत वाला आया मेरे द्वारे नहीं होता है।
0: और ये भी कहा जाता है कि वो जैसे मड़वा वाली भाभी, हाँ, पुरवा वाली भाभी और वो प्रतापगढ़ वाली, ऐसे ऐसे जगह, हाँ, जयपुर वाली, तो ये बड़ा
1: वाली चाची, हाँ, आगरा वाले ताऊ,
0: कई बार तो भाभी और चाची कर वो न कह के बल्कि सीधे सीधे वो जयपुर वाली आ रही है, देखिए ना राजस्थान वाली आ रही है, तो उससे भी क्लियर हो जाता है कि कौन आ रहे हैं। तो ये जो शादी ब्याह में जमावड़ा होता है, इसी का आनंद अलग होता है।
1: और एक बात और ममता जी, आजकल सिर्फ शादी ब्याह ही रह गए हैं जहां हम अपने पुराने रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूं ऑनलाइन बात करना, फोन पर बात करना और एक

0: जब इस तरह से हम मिलते हैं बहुत लंबे समय के बाद आमने सामने से एक दूसरे को देखते हैं, तब उस मुलाकात का मजा बहुत कहते हैं कि अलग होता है। और इसके अलावा पहले हम अपने बहुत दूर दूर के रिश्तेदारों को भी जाना करते थे, लेकिन आजकल ये चीजें बड़ी संकुचित होती जा रही हैं। हमारे बच्चे कई बार तो हमारी जो हमारी सगे बहनों को तो जानेंगे, लेकिन अगर मेरी चाचा की लड़की है या मेरे ताऊजी के लड़के हैं तो वो उनको नहीं पहचानते, क्योंकि उनका मिलना जुलना ही बहुत सीमित हो गया है। जब कोई शादी भी हमें जाने की बात आती है तो हम भाई बच्चों की परीक्षाएं हैं, अभी उनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनका असाइनमेंट है, इनके चलते बच्चे जा ही नहीं पाते, या बच्चों का भी सोच जिस तरह से हो रही है वो एडजस्ट करना नहीं चाहते हैं। जिस तरह से बड़े लोग हर माहौल में एकजुट होकर रह जाते हैं, बच्चे इस बहाने से भी जाना थोड़ा सा
1: उनको अपना कमरा चाहिए, उनको अपना
0: जी
1: बाथरूम चाहिए, और उनको अपने खाने पीने की जो टाइमिंग्स है उसी
0: जी
1: टाइम पे नाश्ता चाहिए, वही दायरा उसी दायरे में सिमट कर रह गए। और बच्चे पूछते भी हैं कि कौन से वाले मामा, कौन सी वाली मामी, कौन सी
0: हाँ
1: वाली चाची, कौन सी वाली बुआ, तो उनको पता ही नहीं है कि फोन पर क्योंकि बात होती है, मिलना जुलना हो ही नहीं पाता। तो शादी के बहाने बच्चों को भी ले जाना चाहिए शादी समारोह में। और पढ़ाई की जहां तक बात है कि पढ़ाई पे
0: जी
1: विघ्न आता है तो किताब कॉपी लेकर जा सकते हैं अगर दूसरे शहर में
0: अगर
1: शादी है
0: कोई
1: तो।
0: बहुत जरूरी ही ऐसा है कि परीक्षाएं ही चल रही हैं जिन्हें आप बिल्कुल अनसुना अनदेखा नहीं कर सकते हैं, तब आप नहीं ले जा रहे हैं बच्चों को तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं है फिर भी अपनी सहूलियत या सुविधाओं की वजह से बच्चे मना कर रहे हैं, तो थोड़ा जिद करके बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, क्योंकि एक समय पर आकर बच्चे रिश्तेदारों को पहचानेंगे ही नहीं और वो रिश्ते कहीं आकर सिमट कर रह जाएंगे। उनके लिए रिश्ते का मतलब होगा सिर्फ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त या जहां उनके सहकर्मी हैं वो।
1: अच्छा, अब जरा ये देख लें कि हमारे श्रोता क्या कह रहे हैं इस बारे
0: जी
1: में। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि शादी ब्याह त्योहार किसी पारिवारिक आयोजन के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात का अवसर मिलता है। ऐसी मुलाकातें रिश्तों में अपनापन और मधुरता बढ़ाती हैं। परिवार के लोग एक दूसरे का हालचाल जान पाते हैं, सुख दुख साझा करते हैं और पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। आज की व्यस्त जीवन शैली में जब सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं तब ऐसे अवसर रिश्तों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। जब इकट्ठे होते हैं फोन पर वो चर्चा कैसे हो सकती है?
0: बिल्कुल सही बात है।
1: हालांकि कई बार ये होता है कि एक साथ कन्वर्सेशन के लिए कई लोग फोन, मतलब कई फोन एक साथ मिला लिए जाते हैं और बात करते हैं, ग्रुप कॉल होता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं आता जो आमने सामने बैठ के छेड़छाड़ करके एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं, धौल धप्पा करते हैं। उसमें जो आनंद आता है पुरानी बातें ताजा करते हैं कि फलानी भाभी ने एक बार ये कहा था, और फिर उसमें जो ठहाके लगते हैं जोरदार, और वो ठहाके कमरे में नहीं आंगन तक बरामदे तक गूंजते हैं,
0: बिल्कुल बहुत
1: उसकी
0: सारी
1: बात अलग
0: छेड़छाड़
1: होती है।
0: होती है और बहुत लंबे लंबे समय के बाद जब अब पुराने रिश्तेदारों से हमारी मुलाकात होती है और जब हम उनसे उनसे मिलते हैं ना, तो एक बात तो बड़ी कॉमन सी होती है जो हर कोई कहेगा, अरे तुम तो बड़े दिन बाद मिले हो, कितना छोटा सा देखा था तुमको, कितने
1: बड़ा हो
0: बड़े हो गए तुम।
1: गया, बड़ा हो गया हमारा बेटा,
0: जी
1: बड़ी हो गई हमारी बिटिया, तो ये सब होता है। और समय का अंतराल कई बार कुछ चीजों को विस्मित कर देता है जो जब आप मेलजोल के साथ वो बातें ताजा हो
0: कई बार
1: जाती
0: कुछ
1: हैं।
0: कटाक्ष भी होते हैं, अरे बड़ी दुबली हो गई हो, क्या ससुराल वाले खाने को नहीं देते, अगर थोड़ा वजन बढ़ गया कितना खाती हो भाई, ज्यादा खिलाते हैं ससुराल वाले, तो इस तरह के कटाक्ष,
1: ज्यादा अमीर हो
0: छेड़छाड़।
1: गई हो, ये
0: हाँ
1: भी होता है। अब ज्यादा बातें ना हो जाए इसका ख्याल रखते हैं, एक गाना सुनवाते हैं।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की टिप्पणियां बहुत सारी आ रही हैं। क्या था विषय की शादी के बहाने सगे संबंधियों से मुलाकात, और चंचल जी भी ढूंढ रही हैं, लेकिन ये जो टिप्पणी आई है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं, जो हंसी मजाक वाली बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी कोने में चाचा पुरानी बातें सुना रहे होते हैं, कहीं मामा हंसी मजाक में सबको हंसा रहे होते हैं, तो कहीं बरसों बाद मिले भाई बहन बचपन की यादों में खो जाते हैं। ऐसे मौकों पर लगता है कि रिश्ते कभी पुराने नहीं होते, बस मुलाकात का इंतजार करते हैं, और फिर शादी बीत जाती है लेकिन मन में एक मीठी सी तसल्ली रह जाती है कि इस उत्सव ने कुछ घंटों के लिए ही सही पूरे परिवार को फिर से एक साथ मुस्कुराने का अवसर दे दिया। और कई बार जो मन की गांठें हैं वो भी खुलती हैं कि नाराजगी होती है कि फलानी बुआ नाराज है, वो फोन नहीं कर रही है, बात नहीं कर रही है, फलानी दीदी नाराज है कि वो फोन नहीं आएंगे शादी में, और आ जाती है जैसे तैसे, फिर रोना धोना मचता है, उसके बाद बिल्कुल माहौल हल्का।
3: अभी इसी बात पर देखिए अगला कमेंट है कि शादियों में मिलना जुलना भी होता है और कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी खड़ा करते हैं, थोड़ी सी नोकझोंक भी होती है, उसके बाद मुंह फुलाना, बाद में मान मनोवर।

0: के बच्चे भी फ्री हो जाएंगे। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बचपन की यादें ताजा हो गईं। संगीत में भी सब जमकर नाचे, बहुत मस्ती हुई। बच्चों को भी अपने चचेरे ममेरे भाई बहनों से मिलने और समझने का मौका मिला और बुजुर्ग तो भावुक ही हो गए सबसे मिलकर। कई रिश्तेदारों से तो बरसों बाद मिलना हुआ। सबसे ज्यादा आनंद तो इसमें लेडीज संगीत का जो होता है और रात को जो महलूल होता है, अगर बेटे की शादी है तो उसमें सबसे ज्यादा आनंद घर वालों को आता है, क्योंकि लेडीज संगीत में सारे मिलकर, कहने नाम तो लेडीज संगीत है लेकिन उसमें पुरुष भी शामिल होते हैं, जेंट्स भी, और खूब मस्ती करते हैं नाच गान के साथ।
1: लेकिन जब नहीं पहुंच पाते हैं, उनका दुख बयान करते हुए हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि सगे संबंधियों के बहाने हमने भतीजे का हाल सुना, बहुत बहाना क्या करें, बच्चों की परीक्षा है और श्रीमान जी की तबीयत खराब है, नौकरी से उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, शादी के बहाने मिल तो लेते लेकिन जिन्होंने भी बहाने किए हैं वो सभी शादियां पधारें। पता नहीं क्या लिखना चाहती हैं, कुछ साफ साफ नहीं है।
0: इनका कहने का आशय ये है कि हम लोग बहाने करते हैं कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिली, बच्चों के इम्तिहान है। दरअसल उसके पीछे मंतव्य ये होता है कि कौन जाए इतना खर्च बर्च करने के लिए। ठीक है, उतने पैसों की बचत कर लेंगे, लेकिन वो जो पैसे खर्च करके आप जो खुशी ले आते हैं उसकी कोई सानी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर बचत न करें।
1: हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि अभी आपने कहा था ना पुरुष शामिल होते हैं, तो हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में बहुत सारे पुरुष होते हैं शामिल होते हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि आज शाम को ही रिश्तेदारी में अजमेर में एक शादी है, बड़े बुजुर्ग और छोटे रिश्तेदार सबसे मुलाकात होगी, जहां हम अपने बड़ों के साथ चरण स्पर्श करके आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मेरे घर में शादी चल रही थी, बारात आ गई थी और सभी नाश्ता पानी करके अपने अपनी जगह पर बैठे हुए थे। सर्दी के दिन थे इसलिए लोग घर के रूम में ही बैठे हुए थे। रिश्तेदारी में आई एक सदस्य बाहर से आए किसी मेहमान का मजाक उड़ा रही थी। वहां पर हम सभी बैठे हुए उनकी बात में हां मिलाते हुए हंस रहे थे और तब तक अचानक जनरेटर बंद होने से लाइट चली गई थी। 5 मिनट के अंदर ही लाइट तो आ गई और जब लाइट आई तो जिनका मजाक उड़ाया जा रहा था वो सामने एक चेयर पर बैठी थी। अब बोलने वाली का चेहरा देखने लायक था, किसी को कुछ बोलते नहीं बना। मैंने उसी समय से उनकी बात को संभाल लिया कि अपनी किसी सहेली के बारे में बोल रही हैं, पर वे मुस्कुरा कर रह गईं और सभी शादी विवाह का विधि विधान देखने के बहाने धीरे धीरे वहां से खिसक गए। आज भी हम सब जुटते हैं तो उस समय की वो बात याद करके खूब हंसते हैं। वैसे वो दोनों रिश्तेदार थी और उन लोगों में आपस में बनती नहीं थी। और कई बार चंचल जी ये भी होता है कि खाने पीने के मामले में भी लोग नाराज हो जाते हैं कि हमें देखा वो फलानी को तो चाय हाथ में पकड़ा दी और हमें चाय पूछा तक नहीं, और हमें तो वो पता है कि हमें लड्डू पसंद है और लड्डू ने दे के हमें तो गुलाब जामुन दे दिया। मतलब बिना बात के भी लोग शिकायत करते हैं।
1: इस तरह की शिकायतें भी होती हैं कि देखो उनकी शादी में गए थे, वहां कितना अच्छा इंतजाम था, हाथों में नाश्ता आता था, समय पर चाय पानी हो जाया करती थी, यहाँ तो 11 बज गए नाश्ते का ही इंतजाम नहीं है। तो कई बार हम जिनके यहाँ जाते हैं उनकी समस्या भी समझ लेनी चाहिए कि हो सकता है हलवाई के आने में देर हुई हो या जो मैनेजमेंट देख रहे हैं वहां कुछ दिक्कत हुई हो। जिन्होंने आपको बुलाया है, जो आप आतिथ्य जो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपके आतिथ्य में कोई कमी रहे, लेकिन थोड़ा समझकर हमें भी चलना
0: है। पर रिश्तेदार जो जाते हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं घर से जुड़े हुए हैं तो सीधे रसोई घर में जाके वो कमान संभाल सकते हैं, क्योंकि जो घर वाले लोग होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा बोझ होता है, सबकी आवभगत करना और शादी की तैयारियां करना, शॉपिंग, कितना सारा तामझाम होता है और सारे रस्म और रिवाज का ख्याल रखना। तो जो रिश्तेदार जाते हैं उनको सिर्फ बैठ के आलोचना करने की बजाय शामिल हो जाना चाहिए कि लाओ हम एक जिम्मेदारी उठा लेते हैं, खाने पीने का नाश्ते का इंतजाम हम कर लेते हैं कि हम सबके हाथों में नाश्ता पहुंचाएंगे, तो कितना अच्छा लगता है।
1: और इसके बाद जब शादी ब्याह के बाद सारे मेहमान चले जाएंगे तो पूरा जो पसरा हुआ घर है या जितने भी चीजें फैली हुई हैं उनको समेटते समेटते भी उनको 1 हफ्ता 10 दिन लग जाता है। कई बार तो जो घर के लोग होते हैं उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है,
0: अमूमन ऐसा होता है।
1: चलिए फिलहाल हम एक आनंद की बात कर रहे हैं, शादी ब्याह के मजे की बात चल रही है, तो गाने सुनते
0: हैं।

0: भाई ममता जी शादी ब्याह की बात चल रही थी और एक कमेंट में देखिए क्या लिखा गया है, सालों से दूर रहे कजिन्स, चाचा, ताऊ, मौसा, मौसी एक छत के नीचे आ जाते हैं जिससे बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ढोल नगाड़े संगीत हंसी मजाक के बीच लोग अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को बिल्कुल भूल जाते हैं। नई पीढ़ी का परिवार के सदस्यों से यानी कि बच्चों और बहुओं के साथ पूरे कुंभ से मिलना हो जाता है, अपनी संस्कृति को समझने का मौका मिलता है। दुख में भले ही लोग दूरी बना लें लेकिन शादी की खुशी हर किसी की कड़वाहट को भुलाकर गले मिलने का अवसर देती है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी बातें कॉमन है, कई श्रोताओं ने लिखी तो वो एडिट करते हुए मैं आगे पढ़ रही हूँ। लिखा है कि इस शादी वाले घर में सभी व्यस्त होते हैं शादी, और उसी व्यस्तता में अपने चचेरे, ममेरे, फुफेरे, भाई बहन, बुआ, चाचा, मामा का परिवार सभी से मिलना जुलना होता है और सबसे मजा आता है। संगत में पत्तल में बैठ कर खाना खाना और एक दूसरे की खिंचाई करना और रात में एक रूम में सभी मिलकर गीत गवाई, आधी रात तक गप्पे लड़ाना, फलाने की बेटी और फलाने की बहू और तुम्हारी वो सहेली और तुम्हारा वो दोस्त, आज इस विषय प्रसंग ने परिवार में हुई कितनी शादियों की यादें ताजा कर दी।
0: हमारे श्रोता लिखते हैं कि शादी ब्याह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जो हम शादी में जाते हैं इसलिए कि सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए। शादी एक ऐसा माहौल भी होता है जहां पर अपनापन दिखाई देता है। हंसी मजाक में साथ बैठकर भोजन करने का आनंद ही होता है। मेहंदी लगवाना, ढोलक की थापड़, बन्ना बन्नी के संगीत की महफिल रिश्तों को मजबूत बना देती है। तो कई बार समारोह में नई पीढ़ी का परिचय भी अन्य सदस्यों से हो जाता है जिससे पारिवारिक

0: पारिवारिक जुड़ाव बना रहता है।
1: हमारे एक श्रोता ने टिप्पणी भेजी है, लिखा कि बात कुछ साल पुरानी है। हम एक शादी में गए थे, हमारे बगल में एक कपल बैठे हुए थे, उनसे औपचारिक बातें हो रही थी। मेरी बड़ी बहन आई और कहा भाई बहन में दोस्ती हो गई। मैंने पूछा भाई बहन, तब उसने बताया कि ये तो हमारे भाई भाभी हैं। मैं परिवार में छोटी हूँ, मेरी मुलाकात उनसे ना के बराबर हुई और मेरी पढ़ाई हॉस्टल में हुई, तो मेरे बचपन का चेहरा और आज का चेहरे में बहुत फर्क आ गया है, इसलिए भाई ने मुझे नहीं पहचाना। फिर तो बातों का सिलसिला जारी रहा कि बस ये मुलाकात यादगार बन गई। भाई आज अगर सगे भाई बहन एक दूसरे को नहीं पहचान रहे, ये तो बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि अब तो मोबाइल का भी जमाना है। अगर आपको फुर्सत नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल पर एक दूसरे को देख लें।
0: और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन रिश्तेदारों को हमने बहुत सालों से नहीं देखा, या जो नई बहू आई है, नए जवाई घर में आए हैं, जिनसे हम नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन हमने उनके चेहरे देखे हुए होते हैं, तो जब हम मिलते हैं सालों के बाद भी, तो कम से कम उन चेहरों को पहचान लेते हैं। एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि आज की भागदौड़ भरे जिंदगी में किसी के पास इतना समय ही नहीं है कि लोग अलग से समय निकालकर एक दूसरे से मिल सके और उनका हालचाल बताएं या दूसरों की सुने। शादी एक ऐसा समारोह है जिसमें सब मिलकर एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपनी व्यस्तता को भी बता देते हैं। शादी एक बहाना बन जाती है जो सालों से नहीं मिले होते हैं उनको मिला देती है।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बिल्कुल अभी हमने जो बात कही थी कि किसी को चाय दे दीजिए, उसके जवाब में लिखा है, अभी भी ये टिप्पणी आई है 6 मिनट पहले, इन्होंने लिखा है कि आपने किसी एक को पहले चाय दे दी तो तुरंत दूसरे का मुंह फूल जाता था और उसका बहुत ज्यादा उसकी इज्जत हो रही तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये भी लोग कहते हैं। और बेटे की जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात जागरण करती हैं और मड़वे में हर तरह का स्वांग रच के डोमकच जलवा करती हैं, उसको बहुत जगहों पर महलूल भी कहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सही कहा, सब बहनों का मिलना, प्यारी सी मस्ती, थोड़ी सी लड़ाई, बताया नहीं तू ये पहनने वाली है, हमारे पास भी ऐसा ही था, हम भी पहन लेते, या फिर सबका एक कलर के कपड़े लेना और फिर किसी का कुछ घर में छूट जाना, सब कुछ बहुत मजेदार होता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर जयपुर में तो सखी सहेली की मौसम की बात हुई, और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये मुद्दा उठाया, आज मुझे तो झपकी सी आ गई थी लेकिन अचानक नींद खुली और ये बातें सुनी तो बहुत अच्छा लगा और बातें हम सुनने लगे। एक श्रोता ने लिखा है कि फरवरी में मेरी भतीजी की शादी थी, हम काका पापा के 8 भाई और 8 बहनों में बड़े भाई की लड़की की शादी थी, मतलब हमारी पीढ़ी की पहली शादी। कई साल बाद सब इकट्ठा हुए, बहुत मजे किए, डांस किया, बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर सब ने इतने फोटो वीडियो शेयर किए कि सब बोलने लगे आजकल तो आपका परिवार फेसबुक पर छाया हुआ है।
0: इसी तरह से आज ये विषय ऐसा है कि इसके कमेंट भी बहुत सारे छाए हुए हैं, हमने कोशिश की हम बहुत सारे संदेशों को शामिल कर सकें, लेकिन जिनके नहीं हो सके उनसे माफी मांगते हुए अब सुन लेते हैं ये गीत।

0: बंधी रहे ये प्यार की डोरी, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना। और बहुत सारे रिश्तेदार भी ये बात कहते हैं, जब शादी विवाह के रंग बिरंगे समारोह केवल उत्सव नहीं होते। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है, बल्कि रिश्तों की डोर को मजबूत करने वाले ऐसे अवसर होते हैं जहां जाने पर सारे रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाती है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह की बातें लिखी हैं। और अब हम बात करते हैं कि अगर आपने घर में कुछ छोटी सी बगिया बनाई है और उस पौधों पर कीट लग जाते हैं तो उन्हें बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इस पर हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे उपाय बताए हैं कि बारिश के मौसम में ये होता ही है। इसके लिए कुछ उपाय इस तरह से हैं कि नीम के तेल की 3-4 बूंदें में 3-4 बूंदें शैम्पू की भी डाल लें और अब इसे पानी में घुल जाए इस तरह से इसका घोल बना लें और ये मिक्सर शाम के समय पूरे पौधों पर हर तरफ से स्प्रे कर दीजिए। खासतौर पर पत्तों के नीचे वाले हिस्से पर करना है क्योंकि कीट और अंडे वहीं पर ज्यादा पनपते हैं। और अगर नीम का तेल ना मिले तो हल्दी के पानी को भी मिलाकर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी की जो राख होती है उसे अगर पत्तों पर छिड़का जाए तो उससे भी कीड़े नहीं आते हैं। नीम के हरे पत्तों को चलाकर उसका धुआं करने से भी कीड़ों से बचाव हो जाता है। बाजार में या ऑनलाइन इस तरह की गम कीबोर्ड मिलते हैं, 2-4 वो कई किसी जगह पर टांग देने से कीड़े उस पर चिपक जाते हैं, लेकिन कई लोग कीट को मारना नहीं चाहते तो वो इस उपाय को ना करें।
1: और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का घोल बना ले, मतलब लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च का घोल बनाकर उसे छानकर जैविक कीटनाशक छिड़काव कर सकते हैं। ये प्राकृतिक रूप से कीटों को दूर रखता है और पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और समय पर पौधों की सिंचाई करें, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी न दें, उनमें संतुलित खाद का प्रयोग करें ताकि पौधे स्वस्थ रहें।
0: और अगर पौधे बहुत छोटे हैं तो उनके पीछे छुपे हुए जो कीड़े और अंडे होते हैं उनको हाथ से ही हटा देना चाहिए, ऐसा एक कमेंट में लिखा गया है। और भौतिक बाधा कीड़ों तक पहुंचने से रोकने के लिए महीन जाली का उपयोग किया जाता है। चिपचिपे जाल, पीले रंग के चिपचिपे पौधे

0: पौधों बोर्ड।
1: पहले स्टिकी ट्रैप लगाएं,
0: हाँ
1: मेरे ख्याल से ये कहना चाहते हैं, ताकि वो
0: ये
1: जैसे मक्खी है, मधुमक्खी है, तो जो उड़ने वाले कीट को आकर्षित करने के लिए किया जाता है, ताकि वो पकड़ने में मदद मिले।
0: इसके अलावा पेस्टिसाइड का उपयोग भी कर सकते हैं या कीटनाशक जिसे हम कहते हैं। ये हमारे श्रोताओं ने हम तक सलाह पहुंचाई है। और हम अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की अगर बात करें ममता जी, तो 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी और पहला अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दुनिया का लगभग 80 से 90% जो भी व्यापार होता है वो समुद्र के रास्ते से ही होता है। नाविक बहुत लंबे समय तक अपने परिवारों से दूर रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और जो सप्लाई चेन है जिसे हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कहते हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, इसमें इन नाविकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और हमारे दैनिक जीवन में जितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं, खासतौर पर जो भी वस्तुएं हैं, भोजन है, ईंधन है, वो सब हमें इन्हीं समुद्री रास्तों से नाविकों के द्वारा पहुंचाया जाता है।
1: बिल्कुल, और समुद्र में तेल की खोज की जाती है, वो उनमें भी इनकी अहम भूमिका होती है। और कई बार समुद्र में जब तूफान आता है, सीरफ जिसे कहते हैं, तो कई नाविक दूर दूर तक समुद्र के बीचों बीच चले जाते हैं, तो उनकी जान को भी बहुत खतरा होता है। वो मुसीबत से लड़ते हुए कई बार घर वालों को पता नहीं चलता है, कोई नेटवर्क नहीं होता है, मोबाइल फोन वहां तक नहीं पहुंचता है, तो उस समय घर वालों की चिंता देखते ही बनती है। तीन तीन चार चार दिन, कई बार महीनों तक वो तूफान में फंसे रहते हैं, लेकिन जब वो घर लौट आते हैं तो घर वालों की चिंता खत्म होती है।
0: बिल्कुल, इसीलिए उनके क्या अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा किस तरह हो, उनका कल किस तरह से बेहतर किया जाए, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस तरह के जो भी खास दिन है वो आयोजित किए जाते हैं। और इस दिन का उद्देश्य भी यही है कि नाविकों के योगदान के लिए उन्हें समाज में सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए और उद्योग समुद्री उद्योग को बेहतर हो सके इसे बढ़ावा देने के लिए ये दिन हम मना रहे हैं।
1: और अब सुनते हैं प्रोग्राम का ये आखिरी गाना।

0: था आरजू फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज थी। और अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम शुरू हो गया है संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स हमेशा की तरह से आज हमारे खास मेहमान एक सोल्जर जिनका नाम है कर्नल वरुण बाजपाई VSM। देश के कुछ बेहद टफ और सेंसिटिव रीजन्स में सर्व कर चुके हैं जिसमें कश्मीर घाटी से लेकर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर्स शामिल हैं। इसके अलावा 3 नए सैनिक स्कूल्स खड़े करना आसान काम नहीं होता। और भी कई शानदार अचीवमेंट्स और कीर्तिमान स्थापित करने वाले कर्नल वरुण बाजपाई VSM हमारे साथ हमारे संदेश टू सोल्जर्स के आज के हैं स्पेशल गेस्ट। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो।
1: नमस्कार,
0: बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे इस शो में। और संदेश टू सोल्जर्स हमारा प्रोग्राम है जो डेडिकेटेड है हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिकों को। तो आपने तो सैनिक स्कूल 1 या 2 नहीं 3 स्टैब्लिश किए हैं, तो जाहिर है हमारी उस पर बात होगी। लेकिन सर हम शुरुआत करेंगे अपने आज के शो की, और हम आपके बारे में जो हमने थोड़ा सा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया है, ज्यादा हम आपसे ही बातचीत में जानेंगे कि शुरुआत आपकी किस तरह से हुई और आपने जो आर्मी ज्वाइन की इंडियन आर्मी, तो कहां से आपको इंस्पिरेशन मिली या फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से रहा?
1: जी, मैं मूलतः लखनऊ का रहने वाला हूं एंड आई कम फ्रॉम एकेडमिकली ओरिएंटेड फैमिली, जिसमें कि मूलतः ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा। तो आई एम द एल्डेस्ट अमंग्स 3 सन्स ऑफ माई पेरेंट्स। तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था। तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस, इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे। बट हाँ, मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज NCC कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें। तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लेयर्ड फॉर, आफ्टर डूइंग माय ग्रेजुएशन क्लेयर्ड फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर IMA ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी। तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है, जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
0: जी,
1: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं। तो वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा।
0: Okay, मतलब पूरा वो
1: हाँ, तो हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली JNK का ही है। तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है। इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं JNK में।
0: Okay.
1: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको, जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा है, देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स। तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई।
0: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो

0: का रहा तो वापस हुआ,
1: वो वापस घूम फिर के वापस
0: घूम फिर करके आया। लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए, बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा। उसके बाद के तो टास्क बाद में आए,
1: बिल्कुल
0: वो कैसा था?
1: बिल्कुल मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज जनरली द कटिंग एज, जहां पे जिसको जिसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है। अच्छा। तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे, तो जहां जहां पे यूनिट रही, जहां जहां पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहां वहां पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते। अच्छा। रहे जी। तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीजों से।
0: अच्छा।
1: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं, जहां से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स डिफिकल्ट नहीं हो
0: रहा। ओके। तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
1: जी जी, देर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेज। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज व्हाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग व्हाइट क्लोज, योर इग्लू इज व्हाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज व्हाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, वो बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
0: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित है, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेडियो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 01123421085, 2349108।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में बेहद ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया। क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया?
1: जी, मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहां पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहां पे आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने सिक्योरिटेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहां पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहां पे हमने सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई। अच्छा। जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहां पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया। शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वाज अ गुडविल विच वाज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप, मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं की वो टेबल तक आई। बट इट वॉज अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में, और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं, और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करने पड़े वो तो, और पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती है। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहां पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज इस जिले में।

0: ज्यादा फौजी थे पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को उन क्लास छठे में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में लाके उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे,
1: पूरा लाइफ स्टाइल
0: जी। तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आप कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होकर आए होते हैं। फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मैस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर ट्रेमेंडस। मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे एंड आई शुड वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वाज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग। और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देखिए या मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही इसमें, कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे थे, स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द इंटायर ऑब्जेक्टिव वॉज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ना, वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वाज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूं कि कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं।
1: अच्छा।
0: कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पर गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देकर आ गया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बनकर पेड़ बन रहा है, फल फूल रहा है, सब तरफ फैल रहा है। तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैनेज कर, 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपके बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट, आपके आंख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना, कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां लगा कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, पर हाँ इससे निकल के आने के बाद में स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, ठीक है, हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने किसी टाइम पे आके, पर ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से नए बच्चे निकल करके आते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह रहा।
0: मैं बिल्कुल मानता हूं आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको, जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे, जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था, तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको BSM से सम्मानित किया गया, तो वो जो मोमेंट था?
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से, अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, पर ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट के तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था, इट वॉज एक्चुअली ट्रेमेंडस अचीवमेंट।

0: आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक एक, एक अलग सी चीज है,
1: जी
0: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
1: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला। पर हाँ, फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
0: बिल्कुल
1: जी
0: सर, एक चीज यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
1: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
0: ठीक है
1: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में हैं,
0: जी
1: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
0: ओके,
1: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
0: अच्छा
1: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट उस राज्य से भरी आती हैं और 30% सीट अलग अलग राज्यों से भी भरी आती है, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहां पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं, जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा, सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
0: जाता है। बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते हैं और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफ स्टाइल जो है पूरा वो बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सर, इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
1: यस यस, अगर गूगल करेंगे तो सैनिक स्कूल एडमिशन की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे कि जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पर जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
0: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने आ जाएगा उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
1: या जो पास आउट हो चुके हैं
0: हाँ, वो
1: 12 साल की लिमिट होती है,
0: 12 साल
1: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
0: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSN। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हेंगे रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ। अंजलि लोड फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे के पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं।
0: okay.
1: तो वहां पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे डीएमएमसीएच एमडीएमएस के जो पाठ्यक्रम है, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज,

0: और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
1: तो आई ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
0: संभालना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड विच वॉज हार्ड कोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड से, एक एकेडमिक मैनेजमेंट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन वॉज अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। मैं तो उस प्रकार का व्यक्ति था कि मुझे हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी के बीच में ढंग से फर्क नहीं पता था, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी मेडिसिन साइंसेज और क्लिनिकल साइंसेज के बारे में।
1: तो पहले आपको खुद सीखनी पड़ी वो
0: जी, बट हाँ तीन साल चार साल हो गए वहां पे। इन चार सालों में द एक्सपीरियंस हैज बीन ट्रेमेंडस, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली और बहुत चीजों को कंट्रीब्यूट भी किया हम लोगों ने। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स को हमने बढ़ा के उनकी संख्या काफी बढ़ी वहां पे, तो पहले 28 थे अब करीब 41 हैं।
1: अच्छा
0: हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो कि इंडिया में क्लिनिकल सर्विसेज देने वाले इंस्टीट्यूटों में नंबर 3 पे आता है, एम्स दिल्ली और चंडीगढ़ पीजीआई के बाद में।
1: ओके,
0: और यूपी के करीब 26-28 करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी काफी और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
1: जी। तो सर अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है, तो लखनऊ वाला पीजीआई दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि और प्लस पीएचडी भी हैं जो कि सुपर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं, तो ये चूज कर सकते हैं। ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इंप्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहां पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहां
1: अगर हम एक लेमेन के हिसाब से समझें या आम भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से आप जो ये बता रहे हैं आप
0: संस्थान में? जैसे कि टर्शरी केयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज केयर होता है।
1: अच्छा।
0: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, इसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं वहां पे, डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: सब दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर एंड आई हैड ऑल द पीपल हु अंडर मी एंड आई कुड यूज देम एट माय ओन डिस्पोजल। यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज और अलग अलग एनवायरमेंट से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना और उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहां पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहां पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी वहां पे, जहां फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज की यस बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जॉशन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा भी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू।

0: टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थकते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते
0: फिर
1: हैं।
0: आगे बढ़ते हैं
1: सर,
0: बिल्कुल।
1: इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन

0: केयर है वो तो नर्स के नर्स की जिम्मेदारी है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेस को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, पर उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया, और उनके मेट्रिक्स को हमने किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की है जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट जी, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है, और जो जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है। तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं, और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना, वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो उस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं, और कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, देखिए पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ
0: वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ,
1: और बहुत ही स्पेशल है,
0: मैं समझता
1: हूँ। तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें, उस सीखें, और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो।
0: जी,
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज आर स्ट्रांग इनफ, सो कंपल्सरी जो कंसेप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी है, वो शायद यहां संभव ना हो पाए, पर हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दुश्वार है,
1: एग्जैक्टली। सर एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिसाब लें, जैसे आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिविजन होता है, सीनियर डिविजन होता है। तो जूनियर डिविजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिविजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिविजन में, और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है, और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम

0: पे अपना फीस डिफर कर सकता है। बट फीस डिफर करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपेयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द एकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपेयर करने की छूट मिल जाती है। यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी। एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपल्सरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं।
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज,
0: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड दैट स्पिरिट।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज में बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोर से जज्बा हो, देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा कि हाँ भाई क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्नोलॉजी की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है। तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी बिल्कुल।
1: तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहां पर आपके लिए प्ले कर सकें।
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं।
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSN। आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेडियो संदेश सोल्जर्स शायद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक आप भी एंजॉय करें। और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से, 9868107070 नंबर है हमारा।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी पीजीआई लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि पीजीआई लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब एआई का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब एआई का बहुत यूज हो रहा है, तो पीजीआई किस तरीके से एआई के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप एआई से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: एआई हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको

0: जी हाँ, नहीं मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए साहब, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ जब नई आती है तो
1: जी
0: इनेबलर होती है, कुछ चीज़ को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं,
1: जी
0: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में,
1: अच्छा
0: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीज़ों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ। कि
1: ओके
0: आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए
1: जी
0: होगा,
1: जी
0: देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी,
1: बिल्कुल
0: दैट दैट के यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते। बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 AI के जो AI का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है,
1: जी
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो PGI में बहुत बड़े स्तर पे अभी AI को हम लेके आएंगे
1: जी
0: अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम कैसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है।
1: जी
0: आई एम श्योर आने वाले टाइम पे AI से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे,
1: जी
0: AI
1: जैसे कि
0: विल।
1: अक्सर लोग बताते हैं कि सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर
0: जी
1: उसको वो
0: जी
1: एनालाइज करता है तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को, लेकिन ये बताया गया है कि AI बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद
0: ये
1: तक
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी देखी हैं जहां पे ये देखा गया है कि AI का जो असेसमेंट रहा है
1: जी
0: वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और
1: अच्छा
0: स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया उसने। मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि दे विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी, तो
1: बिल्कुल
0: ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि AI के माध्यम से, AI के आने से जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं, अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे। दिस
1: जी
0: कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ।
1: सर, AI पर हमने बात की और AI तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में।
0: जी
1: हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए
0: जी
1: बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे, लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं। ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं शबनम BK दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर,
0: जी
1: इनका सवाल यह है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं। हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी
1: थी,
0: जी जी
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता
0: देखिए,
1: सकते
0: ऑल
1: हैं।
0: ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है,
1: जी
0: क्लास 5 बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं,
1: जी
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है, क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन किया जाता है, एग्जाम NTA कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशंस की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस,
1: अच्छा
0: वो सारा सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न सब कुछ मिल जाएगा, और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपेयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं,
1: अच्छा
0: कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं। तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है आपके, यू जस्ट
1: बिल्कुल
0: हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन एंड यू कैन गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन।
1: ओके,
0: जी
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी,
0: पूरा
1: ऑनलाइन
0: मिल
1: अप्लाई
0: जाएगा,
1: भी आप वहीं से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल।
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर, NRJ सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी, आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फियरलेसली सर्विस टू आर नेशन, आई गिव
0: थैंक यू।
1: रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
0: भारत माता की जय।
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं, लेकिन हम सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से। तो हमारे यहां भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे यही बच्चे जो होते हैं फिर ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम
0: जी
1: उसी जिंदगी में लाइफ स्टाइल में,
0: जी
1: तो वो सोशल मीडिया के भी काफी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो NDA में जब ये जाते हैं तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा।
0: जी जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है जिसके
1: जी
0: पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है,
1: जी
0: अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं,
1: जी
0: बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है,

0: ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है तो इसका उत्तर ना है। ये तो एक
1: बिल्कुल
0: हाँ ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से।
1: जी
0: तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है।
1: ओके
0: तो यही क्लास 12th पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये
1: जी
0: भी फोन पे ही इनका इनका फोन का एडिक्शन है। ये लड़के जब एनडीए जा रहे हैं तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं।
1: जी
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं 5 लोग तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम
1: अपने अपने
0: पे,
1: फोन पर हो
0: या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पर लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल
1: एग्जैक्टली
0: रही
1: मैं
0: है बस
1: वही पूछने
0: खाली।
1: वाला था सर, ये
0: जी
1: रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो
0: जी
1: चुके
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचें इससे?
0: देखिए साहब ये बहुत जरूरी है। तो जिन जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इसको इस पे बैन लगाया
1: बैन
0: है,
1: किए हैं जी
0: दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज। सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी एक जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है।
1: बिल्कुल
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो
1: जी
0: ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज सॉर्ड तो है ही। आप
1: एग्जैक्टली
0: जैसे मैंने
1: आपने सही
0: पहले
1: बताया
0: बोला
1: जी
0: इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीजों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर
1: जी
0: निकल के
1: जी
0: आने
1: जी
0: में
1: जी
0: बड़ी
1: जी
0: तकलीफ हो रही
1: सर
0: है।
1: एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही
0: जी
1: एक्सेप्ट करता है, प्रेफर करता
0: जी
1: है,
0: जी
1: वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता।
0: जी
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, जो क्योंकि जो फौजी बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं 12th पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए
1: जी
0: कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है। हर चीज मोबाइल और हर चीज लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं।
1: किताबें जो
0: देखिए
1: हैं वो
0: साहब आप
1: ऑनलाइन अगर आ गई तो उसका क्या कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं?
0: एयरपोर्ट जाइए आप, देखिए साहब एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें
1: जी
0: पढ़ते मिलते थे,
1: बिल्कुल
0: मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन काफी कम हो गया है। तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन आप नहीं जा
1: जी
0: सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग, ये बहुत आवश्यक है।
1: ये बहुत जरूरी है।
0: जी
1: और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उस
0: जी
1: पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस
0: हाँ
1: किया है,
0: जी
1: और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि
0: देखिए
1: उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: फौज में आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए कि
1: अच्छा
0: किस तरीके से दूर रहना है। देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे
1: जी
0: इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए, तो इन सब से भी ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है। तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई
1: अच्छा
0: कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना।
1: अच्छा मतलब
0: हाँ
1: सोशल मीडिया अकाउंट
0: यस
1: भी
0: अकाउंट
1: नहीं
0: भी
1: बना सकते हैं?
0: डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए
1: अच्छा
0: हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसिमिनेट होती है। आप बोल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीजों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इस चीजों से।
1: ओके
0: प्लस आपको पता ही है कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी ईविल आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना समझाना सिखाना बहुत जरूरी है।
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है,
0: छूट नहीं पा रहे हैं
1: तो
0: लोग।
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए
0: देखिए कुछ चीजें
1: जब डेवलप
0: तो
1: कंट्रीज ऐसा कर रही हैं तब?
0: जी जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही हैं, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है। प्रॉब्ली वी विल कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीजें बैन करनी पड़ेंगी, अदरवाइज तो इस चीजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों।
1: जी तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही। आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जिससे सुन रहे होंगे
0: जी
1: उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की।
0: थैंक यू सो
1: तो
0: मच।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय निकाला और यहां पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद
0: थैंक यू
1: आपके
0: सो
1: आने के
0: मच
1: लिए।
0: जी।
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे, कर्नल वरुण वाजपेयी बीएसएम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संदेश टू सोल्जर्स।

0: हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम थारी महारी पसंद आजाद भाई के साथ।
3: आप सुन रहे हैं ऐतिहासिक नगरी हिसार की संगीतमय पहचान आकाशवाणी हिसार 102.3 FM।

खारी मारी पसंद कार्यक्रम सुननी है सारे बण भाइया ने। आजाद भाई की राम राम। आजकल लोग बागे बिना काम और बिना बात तनाव में रहन लाग गए। जिंदगी अनमोल है, क्यों ना इसने हंसी खुशी के साथ बिता जा। मारा भी यो प्रयास रहे कि अपने कार्यक्रमों के माध्यम से हंसी खुशी का माहौल बना जा। आसन बोलते आदमी के दुख तकलीफ आदि और सुख दोगुने हुआ करें। तो आज आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं, हंसी मखोल की बात हर गीत रागनी के साथ। प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। ये कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सके हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ रहेंगे जाने माने लोक कलाकार, लोक कवि, आशय कलाकार श्री कृष्ण लाल लीला गांव खेड़ी।

0: आज के इस कार्यक्रम में आकाशवाणी सार के साथ हैं श्री कृष्ण लाल लीला शास्त्री गांव खेड़ी चोपटा। लीला शास्त्री जी, सबसे पहले आपके मुखारविंद से हरियाणा की खूबी जानना चाहूंगे।
1: और जैसा कि आजाद भाई ने बताया कि विषय आपका ये मिला है, श्री कृष्ण जहां मगन हुए थे गीता ज्ञान सुनाने में, आज जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणा में, मैदानी पहाड़ी मरुस्थली धरती से हरियाणा की एक साल

में छह ऋतु हो बदल बदल का आने की, जीरी मक्की चना बाजरा गेहूं फसलों खाने की, मूंग मसूर और उड़द दाल तन सरसों तेल कढ़ाने की, एक हमारा गुड़ चीनी शक्कर आवे काम बनाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करो सो जो खूबियर यहाँ में, हरे चारे में हमारे पशुआ ने बरसम और ज्वार मिले, ईख के गोड़े कच्चा मक्का रजका और ग्वार मिले, सूखा चारा तूड़ी कड़बी प्राण चने का न्यार मिले, खड़ सरसम की दलिया पक जा चाट बनोड़ा त्यार मिले, गौ भैंस दुधारू मेले जीते मिल जा खुशी खुआने में, हाथ जोड़ प्रणाम करो सो जो खूबियर यहाँ में, धोती कुर्ता और पागड़ी मारे मर्दा का बाणा से, चौक चपाल पोके बाजे बैठे याना शाना से, दमन चोली चूंडा चूंदड़ी बीरा का गिरकाना से, जब पनगट पर हम झोल बजे मारा फिर दिखर याना से, करा हंसी ठट्ठे आपस में मिले खुशी में खोल उड़ाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, मारे हरियाणे का मेल जोल रैन सैन बड़ा प्यारा से, कई धर्म और जात कई मारा साफ सफाई नारा से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कई मतों की धारा से, इतनी भिन्नता होने तमारा फिर भी भाईचारा से, हम कुटुंब की तरिया रहा प्रेम त नाराजी बैर बढ़ाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, तीज ने वीर घाल के झूले गीत सुरीले गावे से, सह रक्षा बंधन कौ सलूमन बाण भाई ने चावे से, करवा चौथ का व्रत राख का वीर सुहाग बचावे से, कुवारी कन्या मारी का तकमा ठंडे जलते नावे से, मारा हरियाणा से एक नंबर पर बेटी बचा पढ़ाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, त्योहार सुनो हरियाणा के जो सारे लोग मनावे से, लोहड़ी ईद क्रिश्चियन डे दिवाली दीप जलावे से, संक्रांत दशहरा शिवरात्रि गोवर्धन पूजन जावे से, शीली सातम देवी माँ के नवरात्रे धोबे आवे से, होली दुलंडी वीर मर्दले मस्ती फाग मचाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, बाजरे की खिचड़ी गेहूं का दलिया हांडी चोल चढ़ावा सा, माल पूड़े पूरी हलवा चूरमा खीर बनावा सा, गरम जलेबी दूध के मोए गेल त्योहार मनावा सा, दूध दही घी मक्खन देसी छक छक खेना खावा सा, सब सेरिया पर लाली रह से कमी नहीं मारे खाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, मेहनत कस किसान मारा जो जुटदंदा सरेआम करे, कंधे तक कंधा मिला मरत औरत भी घना काम करे, देश का पेट भरने की खातर कदे नहीं आराम करे, अन्न का भंडार भरे विश्व में हरियाणे का नाम करे, मेहनत कस किसान मारे रहे आगे फसल उगाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, मारे हरियाणे में खेल कबड्डी कुश्ती मन में भावे से, पैंद लंगोट पहलवान मारे जब दंगल में आवे से, सब देशा के दहशत जब लंगर खड़े घुमावे से, दंगल के में हाथ मिलादा दमखम खूब दिखावे से, वर्ल्ड कप ले जीत देर ना लावे देश जिताने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में, फिर हमारे हरियाणा के नौजवान कैसे हैं, हमारे हरियाणा के वीर लड़ाकू देखण में हट्टे कट्टे, जे दुश्मन देश चढ़ाई कर दे पलक झपक चकते फट्टे, मोर्चे ऊपर डटके न दुश्मन के दांत करे खट्टे, मात पिता और जन्म भूमि का कोना लागण दे बट्टे, कुर्बान जान करे हंसते हंसते देश की लाज बचाने में, हाथ जोड़ प्रणाम करूं सो जो खूबी हरियाणे में।

हमारे हरियाणा के पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल गर्म पानी का चश्मा, सोना पड़खल झील, फरीदाबाद मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चों बीच करा फरियाद, सरस्वती की उद्गम सतली पीवा के में कहते साध, फल फलगु और पंडारा कुरुक्षेत्र में भरा श्राद्ध, मारे तीर्था पर पाप कटे पणवासी में उस नहाने में, आ जोड़ प्रणाम करुसु जो खूबी हरियाणे में। मनोरंजन का साधन क्या है? मनोरंजन का साधन मारा गाना और बजाना से, रामलीला जगराता सत्संग धार्मिकों का गाना से, हरियाणवी फिल्म ड्रामा नाटक सबके मन को भाना से, बाजा बीन भंडेला मारा बढ़िया सांग।

और जैसा कि आजाद भाई ने बताया कि विषय आपका ये मिला है कि वह किसान पिछड़ने का कारण क्या है। किसान पिछड़ने का कारण है खेती के ऊपर खर्चा ज्यादा लग रहा है और आमदनी कम हो रही है। इसी विषय पर भी हमने एक कविता लिखी थी कि वह इस खेती के मामले में फैल हुआ विश्व विज्ञान धरती और किसान बचाई से खोल दे शिक्षण संस्थान। हरित क्रांति लाने खातिर रसायन खाद की होगी खोज, यो रसायन खाद प्रयोग करा फिर पैदावार बड़ी कुछ रोज, एक कट्टे तो 70 मन हुई कुछ दिन हुई किसान का मौज, आज फसल घटा और खर्चा बढ़ गया चढ़ गया सर कर्जे का बोझ, आज कर्जे तडर सपरा पी का आत्महत्या करे किसान, धरती और किसान बचाई से खोल दे शिक्षण संस्थान। सपरा पी के क्यों मरता न्यू नहीं किसी ने ख्याल करया, या महंगी खेती करवा कहो भोला कुन बा काल करया, तारी बुका में जहर छिड़क।

अपना हरियाणा है किसी जगह है जेड़ा कोई भी बात कह दे उसे का चुटकला बन जे। इबे एक बुढ़िया थी बेचारी बोली सी थी, बेरा था को नहीं भाई कौन सी नौकरी बड़ी है कौन सी नौकरी

टाइप बता बड़ा होकर के बनेगा। निवला जी पहला तो मैं खूब पढ़ूंगा, निवला जी फिर मैं विदेश में जाऊंगा, निवला जी ओडा जाकर भी नौकरी करूंगा, निवला जी फिर जो मैं खूब सारे पैसे कमाऊंगा। उसका बाबू जमा खुश हो गया। डॉक्टर बोला निवला बेटा फिर, निवला जी फिर जो मैं बड़ा ही शोरूम में जाऊंगा, निवला बेटा ओडा के करेगा, निवला जी मैं एक बढ़िया क्वालिटी की निक्कर खरीदूंगा, रबड़ काटूंगा, गुलेल बनाऊंगा, तीतर मारूंगा।

0: एक छोरा था बुग्गी पे बैठा, एक बेचारा आदमी जान लग रहा, लोगों को सोचा राय से पूछ लियूं। न्यूला बेटा तेरा के नाम?
1: शेर सिंह।
0: आदमी डर गया ना भाई, खतरनाक गलात लग गया। न्यूला बेटा तेरा बाबू का के नाम? न्यूला शमशेर सिंह। न्यूला यू जमा मारेगा? न्यूला बेटा फिर अड़े गया बैठे कुत्ती तो डरू। एक बार एक अपना हरियाणा का बुढ़ा पहली बार बस में बैठा दिल्ली जाना, उसकी की सीट आ रही पे बराबर में भी बुढ़िया बैठी, पाछे भी बुढ़िया बैठी। वो बोले उसते कंडक्टर बोलिया उनके जो पाछे लुगाई बैठी थी, बोला ताई टिकट ले लो, एक बिलिन बोली बेटा कमला नगर की दे दे जमसी बुढ़ा दौरे, दूसरी बिलिन बोली भाई सरोजनी नगर की दे दे, तीसरी बोली भाई शांति नगर की दे दे। ताऊ ने सोचा ना भाई तो नाम का हिसाब था टिकट मिला है, बोला ताऊ तो ना कड़े की दे, बोला बेटा मना कसुत्ता नगर की दे दे। नहीं बोला कसुत्ता नगर? लता यू कतौड़ सी हो गया? बैठे शांति नगर की जड़ में।

बुजुर्ग आदमी पेंशन बनवाना आ गया, वो जिलाधिकारी से मिलने वाला, जाके मिसेज पूनम जाके वहां पेंशन बनवा देगी, तुम आड़ फार्म जमा करा दे। ओडा बेटी बेला पेंशन बनवानी थी, बताओ जी ये मेरा काम नहीं है, ये मिस अर्चना करेंगी। बूढ़ा चक्र में पड़ गया, ये मिस और मिसेज न्यू कुकर के बैम है, वो जाके नबिला बेता में मन न्यू बताओ, यू मिस और मिसेज कुकर है। वो एक बहन जी ने बोली ताऊ जो ब्याह रखी हुई तो मिसेज और जो नी ब्याह रखी हुई मिस। बोला ठीक, आप भी पल्सन नहीं बनवा दे, एक बात का बेरा पार्टी। तब बच्चे कितने आप? ना बेटी इबे तो मैं मिशे रह रहा हूँ।

तो भाइयों, ये तो सुना कार्यक्रम आपने, आंसी मजाक की बात हर गीत रागनी के साथ। कार्यक्रम आपने किसक लग गया, इस बारे में ठोस ठीक प्रतिक्रिया इस पते पे लिखा करें। कार्यक्रम थारी मारी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी असार पिन 125001। और इसी के साथ आज का थारी मारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दी अनुमति। सारे वन भैया ने राम राम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को

0: आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
1: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

अभी आपने सुना कार्यक्रम थारी महारी पसंद, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975

0: को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सहवाग और किदांबी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सहवाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ये समाचार रिले किए जा रहे थे एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कार्यक्रमों की रूपरेखा। एक नजर हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कार्यक्रम भक्ति संगीत आप सुन सकेंगे साय 6:20 पर, और आज साय 6:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर से सीधा प्रसारण। कार्यक्रम किसान वाणी का समय रहेगा साय 7 बजे, और आज इस कार्यक्रम में होगा फोन इन प्रोग्राम जिसका विषय रहेगा कपास की फसल में कीट प्रबंधन। किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर राम कुमार सैनी। साय 7:30 पर आप फिर से आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का सीधा प्रसारण सुन सकेंगे। राष्ट्रीय हिंदी समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर, और इन समाचारों के बाद आप रात्रि 9 बजे से पुनः आप सुन सकेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच मैच का सीधा प्रसारण। अब प्रसारण कल के लिए, कल प्रातः 5:51 पर हमारे केंद्र की प्रथम प्रसारण सभा का आगाज होगा। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप सुन सकेंगे कल प्रातः 6:45 पर। कार्यक्रम लोकरंग का समय रहेगा प्रातः 7:05 पर, और 7:40 पर कल प्रातः आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम नमस्ते हिसार का समय रहेगा प्रातः 10 बजे, और प्रातः 11 बजे आप सुनेंगे हमारे केंद्र से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। कार्यक्रम हेलो हिसार का समय रहेगा कल साय 5 बजे, और 6:20 पर समय रहेगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का। कार्यक्रम युवा उमंग का समय रहेगा कल साय 6:30 पर, और कल साय 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसाना से थी। कार्यक्रम हमारे गांव कल आप सुन सकेंगे साय 7:30 पर। कल रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे पंजाबी गीत, और 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खुला आकाश के अंतर्गत एक फिल्म के गीत। और कल रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संदेश आपके गीत हमारे, और ये कार्यक्रम आधारित रहेगा आपके व्हाट्सएप मैसेजेस पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 102.3 MHz पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: आज भी उस कालखंड के काले अध्याय की याद दिलाती हैं। रोहतक में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आपातकाल नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या की याद दिलाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है और फ्रांस में भारतीय दूतावास के दखल के बाद पेरिस में चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रोकी गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
0: प्रधानमंत्री ने कविता साझा करते हुए लोगों से भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की संवेदनाओं से जन्मी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया, जो आज भी आपातकाल के उस काले अध्याय को बयां करती हैं। देश में 25 जून 1975 को लागू हुए आपातकाल के विरोध में रोहतक में भी संविधान हत्या दिवस मनाया गया। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस समारोह में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र के सेनानियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ अर्चना गुप्ता, हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मीडा सहित प्रदेश के मंत्री और भाजपा नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आलोचना करते हुए 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। उन्होंने इस घटना को कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत के लोकतंत्र का अपमान और संविधान की हत्या करार दिया।
3: आज का दिन देश के लोगों के लिए भी, हरियाणा और रोहतक के लोगों के लिए भी और लोकतांत्रिक भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। 1975 में आज के दिन जिस तरह से गला घोंट करके हत्या करने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र का जिसे हमने लाखों कुर्बानियों और बलिदानों के बाद में अर्जित किया, उसका गला घोंटने का जिस तरह से कुत्सित षड्यंत्र अपनी आप सत्ता पर बनाए रखने की अभीप्सा से किया, आज का ये दिन हमें उस कालरात्रि का स्मरण कराने के साथ साथ में उस लंबे प्रेरक संघर्ष अंततः सत्य विजयी होता है और अंधकार समाप्त होता है, उसके बारे में बोध कराने वाला दिन है।
0: गजेंद्र शेखावत ने एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब में आपातकाल से संबंधित विषय शामिल करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत व हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने अनुरोध किया कि रोहतक में आपातकाल ने संबंधित अनुभव केंद्र बनाया जाए। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले सोनीपत के राजेंद्र सिंह व जयपाल एडवोकेट ने अपने अनुभव साझा किए। आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्ष 1975 में नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या के उपलक्ष्य में संविधान हत्या दिवस मनाया गया। इस संबंध में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और आपातकाल के काले दिनों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि लगभग 21 महीने आपातकाल का दौर रहा, जिसमें लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गई।
4: 51 साल पहले 1975 में आज ही के दिन देश में एक काला व्यवस्था को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश किया था। देश की संवैधानिक अधिकार को हनन करना, लोगों की प्रजातांत्रिक अधिकार को हनन करना, ये नाकाम कोशिश किया था। इसको देश को भुलाना नहीं चाहिए, उस मानसिकता आज भी उन लोगों के मन में

0: मिलता है, देश की असंवैधानिक काम, देश के लोगों के अधिकार को छीनने के काम करते हैं।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
1: ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। फ्रांस में भारतीय दूतावास के दखल के बाद पेरिस में चंडीगढ़ के हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रोक दी गई है। मशहूर स्विस आर्किटेक्ट और फर्नीचर डिजाइनर पियर जेनरेट की डिजाइन की हुई 2 आर्मचेयर की नीलामी आज होनी थी। चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बयान में कहा कि विदेश मंत्रालय के दखल के बाद इन चीजों की नीलामी से हटा लिया गया। प्रशासन ने बताया कि यह कदम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया के निर्देशों के बाद उठाया गया। उन्होंने संस्कृति विभाग से कहा था कि वे इस मामले को मंत्रालय के सामने रखें और तुरंत कूटनीतिक दखल की मांग करें। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर की कीमती हेरिटेज संपत्तियों को बचाने में समय पर मदद के लिए विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करते हुए ऐसी चीजों की जांच पड़ताल, उन्हें वापस लाने और उनकी वापसी के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के अपने संकल्प को दोहराया है। आपातकाल के 91वें वर्ष पर कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर भाजपा की ओर से आपातकाल पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मीडिया से बातचीत में पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकार का हनन किया गया और आम लोगों पर अत्याचार किए गए।
4: किस प्रकार से कांग्रेस के नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई और उस इमरजेंसी के तहत किस प्रकार से लोगों को बहुत बड़ा हरासमेंट की गई। कांग्रेस के काले नामे आपने देख लिए होंगे, एग्जीबिशन लगाई, देख आंखों में आंसू आते हैं। किस प्रकार इमरजेंसी के समय पर धक्के से नसबंदी की गई, युवाओं पर अत्याचार किए गए, उनके ऊपर मोमबत्ती जलाई गई, किस प्रकार से युवाओं को बांधा गया, बहुत से हमारे जनसंघ के नेता और हमारे आरएसएस के नेताओं को जो भी कांग्रेस के अंगेश आवाज उठाता था उसको अंदर देते थे। उसमें बहुत से नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय वाजपेयी जी, बहुत से नेता गिरफ्तार हुए।
1: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में संविधान हत्या दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंचकुला स्थित भाजपा कार्यालय पंचकमल में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने 1975 के आपातकाल के काले दिनों को याद किया और लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों को सम्मानित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की पंक्तियों को पढ़ा और कहा कि ये आज भी उस कालखंड के काले अध्याय की याद दिलाती हैं। रोहतक में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1975 में लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आपातकाल नागरिकों के अधिकारों के हनन और लोकतंत्र की हत्या की याद दिलाता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा, ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। इन समाचारों का रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। एफएम 103.5

कार्यक्रम भक्ति संगीत सुन रहे सभी साथियों को आज के पावन पर्व निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है निर्जला एकादशी, जिसे सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा, संयम और भगवान विष्णु की भक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, यदि वह श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करे तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और मानव सेवा, दान, पुण्य तथा परोपकार के कार्यों में भाग लेते हैं। ये पर्व हमें आत्मसंयम, सदाचार और सेवा की प्रेरणा देता है। साथियों, संयम से आत्मबल बढ़ता है और सेवा से मानवता और भक्ति से जीवन में सुख और शांति आती है। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी भगवान विष्णु से सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि की कामना करें तथा समाज में प्रेम, सद्भाव और सेवा का संदेश फैलाएं।

FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर इंग्लैंड से सीधा प्रसारण। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: This is Akashvani. We now bring you ball-by-ball commentary of the T20 cricket match to be played between India and Bangladesh of the ICC Women's T20 World Cup 2026. Before that, listen to a special program, First Ball 20.
1: First Ball 20.
2: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बना था। 2026 में उसी इंग्लैंड की भूमि पर हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम T20 विश्व कप जीतने का ख्वाब देख रही है। लेकिन पिछले दिनों इस राह में मिला एक स्पीड बंप, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली हार। पर कहते हैं, हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो उठता है। आज फिर वही मैनचेस्टर का मैदान है, सामने बांग्लादेश है और अपनी गलतियों से सीख बाउंस बैक करने की चुनौती है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, मेरा नाम है दर्पण और मेरे साथ है मुदिता।
3: शुक्रिया दर्पण। हेलो एंड वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। दर्पण, आपने 1983 के वर्ल्ड कप का जिक्र किया, तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट्स में मौजूद हैं चेतन शर्मा, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, जो नाम हर भारतीय फैन के दिलो दिमाग पर आज भी है, क्योंकि 1987 के वर्ल्ड कप में वो पहले भारतीय क्रिकेटर थे जिन्होंने हैट्रिक ली थी। चेतन, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
3: इसके अलावा हमारे साथ है विजय दहिया, जो फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी होने के साथ ही अब एक बहुत सक्सेसफुल कोच की भूमिका में है। वेलकम विजय।
5: शुक्रिया।
3: और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शशांक शेखर। शशांक, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
6: थैंक यू सो मच।
2: तो एक्सपर्ट से पूछेंगे कि कैसी होने वाली है भारत के लिए आज चुनौती, लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलेंगे सीधा मैनचेस्टर, जहां पर टॉस होने जा रहा है।
7: Are in the hunt for one of those top two spots. I've got Trudy Anderson, match referee, alongside the captains. I think Harman, I think you've got the coin. Jolty, your call. It's fallen your way. You've won. What are you going to do today?
8: We wanted to bat first because in this sort of game, we really wanted to put some score in the board.
7: I'm just watching your team warming up, and they are up and about. There seems like a real energy about the group as well because of the two wins. How do you just let the players sort of run with that, or do you want to try and keep them nice and calm?
8: I think this is really important game for us, and I think it's a huge opportunity for all of us to being in the top side. So I think we just wanted to give our everything in this game, and we are so happy that we are in a moment where we are count.
7: You've played this team a lot. That hasn't always gone your way. How do you approach this with a game plan? Is it what's worked for you well so far in this tournament? Are you going to change things up a little bit?
8: I think our batters been in a bad patches, but I guess they will come back in this game, that we hope. But our bowlers been very consistent in the last three games, so we will definitely looking forward for that.
7: Okay, any changes to your side today?
8: No, we are going with the same 11.
7: Okay, all the best for this big clash.
8: Thank you so much.
7: Harman, I'll get you to come in. Bowling first. I just saw you rolling the arm over. Is that what we're going to expect to see?
8: Not really. I'm just warming up myself.
7: Okay. You're going to be bowling first here on this pitch. It's a run scoring. It's very, very flat. What's your thoughts on that?
8: Yeah, I think it's a good wicket to bat on. But if you keep yourself in the game and, you know, spend some time on the wicket, it's a really good wicket. But I think for bowling also, if you, you know, spin your fingers, there is something you can, you know, take from this pitch, and hopefully our bowling group will come up strong today.
7: A little bit in your favour is that you have played here. You've also played on this pitch against South Africa. What did you learn from that?
8: Yeah, I think that was a very good pitch to bat and ball. And I think, as I mentioned, you know, you just have to read the pitch and react accordingly.
7: Okay. Is it just about the win, or is a little bit of net run rate in there as well?
8: I think first to win, and then let's see how it goes.
7: Okay, let's see how it goes. Thanks a lot. All the best today.
8: Thank you.
7: Bangladesh have won the toss. They're going to be having a bat first.
2: तो टॉस बांग्लादेश ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश T20 क्रिकेट में, वुमेन्स क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, 23 बार आमने सामने हुई है। केवल 3 बार बांग्लादेश को जीत मिली है और तीनों बार चेज करते हुए मिली है, लेकिन यहां पर फैसला पहले बल्लेबाजी करने का किया है। चेतन, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को?
4: देखिए, जैसे अभी तक खबर आ रही है मैनचेस्टर से कि विकेट थोड़ा सा लो एंड स्लो विकेट रहेगा, और जब आपको ये अनुमान रहता है कि लो एंड स्लो रहेगा तो चेज करना विद स्पिनर्स आपकी टीम के अंदर, तो यकीनन कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि अगर जितना बैटिंग के लिए अभी

तक विकेट अच्छा है, उसके बाद थोड़ा डस्टी की संभावना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया यही साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था और हार का सामना करना पड़ा था, तो वो चीजें आप कैलकुलेट करते हैं एज ए टीम।

0: हम क्योंकि बोलिंग भारत करने जा रहा है तो पावर प्ले बोलिंग की अगर हम बात करें हमारी तो बहुत सारे इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पिछले मैच को अगर हम खास करके देखें तो पावर प्ले में बहुत सधी हुई बॉलिंग की थी भारतीय बोलर्स ने, केवल 25 रन और आखिरी ओवर तो चर्नी का मेडन विकेट, लेकिन उसके बाद भारत इस बढ़त को कैपिटलाइज नहीं कर पाया। विजय,
1: अगर आप देखें जिस तरीके से आप गेंदबाजी का जिक्र कर रहे हैं, एक जो चीज जो भारतीय टीम के साथ जानी चाहिए या कंडीशंस के बारे में आप बात करें तो जब आप अपने मीडियम पेसर्स की तरफ देखते हैं तो शायद उस तरीके का ये वर्ल्ड कप अब तक नहीं रहा है जहां गेंदबाजी के बारे में आप बात करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला जिसके बारे में हमने अभी जिक्र भी किया, साउथ अफ्रीका, उसमें अगर आप देखें तो आप बड़े मैचों के हिसाब से जितने रन आपको बोर्ड पर लगाने चाहिए तो वो थे वहां पर, वो गेंदबाजों के लिए था मैच जीत के वहां से मैच भारतीय टीम को जिताना। तो वो एक चीज है जो बहुत अहम रहेगा आपका इस टूर्नामेंट में आपको बनाए रखना या यहां से इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर जीत दिलाना।
2: आपने बात की कि अभी तक सीमर्स ने शायद उस तरह का प्रदर्शन नहीं किया और इसके चलते कुछ बदलाव भी हमें टीम में देखने को मिल रहे हैं। रेणुका सिंह ठाकुर जो कि सबसे अनुभवी सीमर है उनको प्रथम एकादश में आज शामिल कर दिया गया है, साथ के साथ राधा यादव इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। शशांक, लास्ट टाइम इंडिया वेंट टू बांग्लादेश दे डिड अ क्लीन स्वीप, राधा यादव वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, शी पिक्ड अप 10 विकेट्स, those happy memories must help her against Bangladesh?
3: Hopefully so. This is a match which India are supposed to win and I don't see any problems for India. I think it's going to be the spin department which will again do the needful for India. It's a very interesting stat that I would like to share. In the three matches that India have played, they have taken 24 wickets. 22 of them have been taken by the spinners.
2: Right.
3: Nandini Sharma has taken 2 wickets.
2: Right.
3: Kranti Gourde and Arundhati have not taken a single wicket. You know, so Manchester, this pitch, even Australia, for Australia, Sophie Molyneux, Wareham and all, their spinners took wickets against South Africa. So this is going to be a spinner's track. And as far as Radha is concerned, she's also a good left-arm spinner.
2: Mm-hmm.
3: She's a very good fielder and a competent batsman.
2: Mm-hmm.
3: But, it shouldn't be a problem for India today. The problem will be against Australia in the last game of the group stage.
2: विजय, आपको चैट करना चाह रहे हैं?
1: हाँ, मुझे लगता है कि अगर आप देखें किस तरीके से भारतीय टीम की थिंकिंग रही है, राधा की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय में हर एक लिहाज से अगर आप उनकी फिटनेस देखें, उनकी फिटनेस देखें, मैं मानता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फील्डर हैं इस समय वुमेन क्रिकेट में, अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट की बात करते हैं, उनका पहला मैच है और आपकी सोच कहीं ना कहीं ये चल रही थी कि जो हम स्पिनर्स खिला रहे हैं वो इनफ है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको ये लग रहा है कि एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और हमें चाहिए। शायद
2: श्रियंका पाटिल की इंजरी उसमें एक बड़ा
1: नहीं, बहुत बड़ा
2: जी,
1: क्योंकि जिस समय पे ये इंजरी उनको हुई है, सिर्फ गेंदबाजी नहीं, जिस नंबर पे वो बैटिंग करती हैं वो नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो एक ऐसी यंगस्टर इस टीम के अंदर रही है पिछले कुछ समय में, अगर आप देखें WPL के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली पिछले सीजन में इंजरी की वजह से पूरा सीजन बाहर हो गई थी, यहां पर आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, फ्रीक इंजरीज ज्यादा रही है उनको, तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो एक बड़ा लॉस जरूर है। लेकिन इतनी सक्षम है ये भारतीय टीम कि अगर आप किसी भी कंडीशन के बारे में बात करें, इस फॉर्मेट के बारे में बात करें, जो दो बचे हुए मैचों के बारे में बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए।
0: जी, सक्षम है भारतीय टीम जैसा विजय ने कहा, और दर्पण क्यों ना कुछ श्रोताओं को भी हम शामिल कर लें, तो अगर आपके पास हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कुछ सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर्स हैं 011-234-21083 और 011-234-21085। चेतन, रेणुका सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है आज प्लेइंग 11 में, सबसे अनुभवी बोलर्स में है वो भारत की, एंड शी हैज अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड हैज द एबिलिटी टू स्विंग द बॉल अर्ली एंड स्ट्राइक अगेंस्ट देयर टॉप ऑर्डर। क्या ये सबसे बड़ा कारण बना है उनको प्लेइंग 11 में शामिल करने का?
4: देखिए, जितना मैंने अभी तक पूरा देखा, एक महीना पहले भारतीय टीम वहां पहुंची
2: जी,
4: आपकी मिडिल ऑर्डर में अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं है, आप रीशफल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और हमारा एक स्पिनर की अगर हम बात करें, जो अभी आप बात करें श्रियंका पाटिल, वो इंजर्ड हुई, वहां से एक झटका लगा और अभी तक आप अपने तेज गेंदबाजों के साथ सेटल नहीं हो पाए। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप जितना शफल करते रहेंगे, जितना टीम में बदलाव करते रहेंगे, तो एक चीज है जो कंसिस्टेंसी हम कहते हैं ना,

0: क्रिकेट के अंदर एक भरोसा वो प्लेयर्स को आप नहीं दे पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सामने प्रॉब्लम्स होंगी। तो रेणुका को मौका मिला, तो जितना रेणुका को हमने गेंदबाजी करते देखा, इनको तो आपको शुरू में मौके दे देने चाहिए थे। देखिए, इस कंडीशंस के अंदर आप वो तेज गेंदबाज को लेकर आते हैं जिसके पास एबिलिटी है स्विंग कराने की। देखिए, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है, आप 120 पे गेंदबाजी कर रहे हैं ना, अगर आप में एबिलिटी है स्विंग कराने की, आप किसी को भी आउट कर देंगे, बड़े से बड़े प्लेयर को आउट कर देंगे। लेकिन आप गति आप जितनी मर्जी कर लीजिए, लेकिन स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी आपने कहा कि स्विंग बहुत अच्छा करती है, तो ऑब्वियसली आप इन कंडीशंस में उसी गेंदबाज को खिलाते हैं जिसके हाथ में अच्छा खासा स्विंग है।
1: लेकिन चेतन, इससे जुड़ा एक सवाल है, अभी हम देख रहे हैं जो वेदर फोरकास्ट है, हीट वेव की वार्निंग दी गई है, 31 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और हम देख रहे हैं मैदान में धूप खिली हुई है, ऐसे में आपको लगता है कि वो उस तरह का स्विंग प्राप्त होगा?
0: देखिए, उस कंडीशन में इंग्लैंड 45 डिग्री तो है नहीं, इंडिया जैसी हालत है नहीं, और दोनों ऐसी कंट्रीज है जिनको गर्मी की आदत है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल गर्मी है। बेशक इंग्लैंड के अकॉर्डिंग 30 डिग्री बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप में क्षमता है स्विंग कराने की, आप स्विंग करा सकते हैं। ये नहीं कि वहां के अकॉर्डिंग गर्मी है, अगर आप तो इंडिया में सारी उम्र क्रिकेट खेले, अगर आप यहां स्विंग कराते हैं तो वहां तो आपको ऑटोमेटिकली स्विंग कराना चाहिए।
2: फॉर मी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ शी इज बॉलिंग रियली वेल इन द नेट्स, हाउ कम शी डिडंट प्ले अर्लियर? सो देयर इज समथिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्विंग, इट्स अबाउट समथिंग दैट काइंड ऑफ रिदम, maybe she's not finding her rhythm there. Otherwise, when you went for a tour like this, and your most experienced bowler not finding her place in the playing 11 in all the games, there's something going on where the team management feel that she's not in that kind of rhythm, and come this game they feel if they qualify, get into the semi-finals, they'll be needing her, and that's the reason why they're introducing her in this game.
1: But tell you who is always in rhythm, it's our listeners. Mudita ek shrota hamare sath jud chuke hain, aaiye unse baat karte hain.
3: जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं?
4: हेलो मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग।
3: गुड इवनिंग,
4: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूं, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।
2: नमस्कार विपिन जी।
4: नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर 160 या 170 का स्कोर मिलता है तो क्या इंडिया चेस कर सकती है इजीली? और दूसरा सवाल ये था कि आज की जीत के बाद क्या क्वालिफाई तय हो जाएगा या फिर संडे का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो मैच तो बहुत बड़ा है, इसलिए उस पर अगर ना जाए तो क्या आज जीत जाए तो सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं?
1: चलिए शशांक, हम चाहेंगे कि आप ये सवाल लें और विपिन जी को इसका जवाब दें।
5: जी, तो जैसा आपने पूछा है विपिन जी, 160-170 का टोटल अगर होता है तो हम चेस कर पाएंगे कि नहीं, तो जहां तक मुझे लगता है इतना स्कोर शायद बांग्लादेश नहीं बना पाएगी। ये स्लो विकेट है जहां स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारी स्पिन अटैक अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारे स्पिनर्स ने ही संभाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 160-170 का टारगेट दे पाएगी। अगर 160-170 बना लेती है बांग्लादेश तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन देखते हैं क्या स्कोर बनता है। और जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, अगर हम आज का मैच जीत भी लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस फॉर्मेट में वर्ल्ड की बेस्ट टीम है, इस फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराना हमारे लिए मुश्किल है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, हमारी टीम भी बहुत अच्छी है। और साउथ अफ्रीका आज रात में 11 बजे से हॉलैंड के साथ खेल रही है, नेदरलैंड्स के साथ, और लास्ट मैच उनका बांग्लादेश के साथ है, तो ये वो दे आर एक्सपेक्टेड टू बीट बांग्लादेश एंड हॉलैंड। उस केस में अगर हम ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे और हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, तो स्थिति अभी गंभीर है हमारी टीम की, देखते हैं आगे क्या होता है।
1: सभी समीकरण आपके सामने पेश कर दिए गए हैं विपिन जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए होंगे आप हमारे इस आंसर से। लेकिन सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं विजय, बॉलिंग की हमने बात की, आप मौजूद हैं हमारे पैनल पर, विकेट कीपिंग पर बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। ऋचा घोष पहले मुकाबले में थोड़े से फंबल्स हमें देखने को मिले, उसके बाद लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, उनकी ग्लव वर्क को आप कैसे आंकते हैं?
2: ऋचा घोष, अगर मैं उनकी तरफ देखता हूं तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं अगर आप उनकी तरफ नजर डालेंगे तो आपको लगता है कि ये एक बनती हुई टीम है। हम अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें और कह रहे हैं कि वो प्रबल दावेदार है खिताब की, तो वो इस वजह से है कि उसका जो न्यूक्लियस है, उसके कुछ 7-8 खिलाड़ी हैं, वो पिछले कुछ समय से इस फॉर्मेट में लगातार खेलते हुए आए हैं। हम 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीते हैं, हमारे यहाँ पे जैसे ही जीतते हैं वो हर जगह की एक्सपेक्टेशंस आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, आपको कंडीशंस देखनी बहुत जरूरी है, आप किनके खिलाफ खेल खेल रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ये टीम इस फॉर्मेट के लिए अभी भी

0: आपकी एक सेटल टीम नहीं है, आपको मैचेस बल्लेबाज जिताते हैं, आपको टूर्नामेंट गेंदबाज जिताते हैं, आपने बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया, पिछले कुछ मैचेस में आपने हमेशा गेंदबाजी में बदलाव किया है, तो आपकी जब बोलिंग यूनिटी सेट नहीं है और आप ये नहीं कह सकते कि आप खिताब के दावेदार हैं। हम कह जरूर रहे हैं जब भी आप टूर्नामेंट में जाते हैं, लेकिन एक बनती हुई टीम है और धीरे धीरे समय लगता है बनते इस टीम को बनने के लिए। क्वालिफिकेशन का भी जो पिछला सवाल मैं आपसे पूछा था, बांग्लादेश भी तो 4 पॉइंट पे है,
1: बिल्कुल।
0: अगर हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं तो बांग्लादेश, और सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी आज क्या लगी है कि उनकी सोच, क्योंकि आप वही हैं जो आप सोचते हैं, रन ऑन द बोर्ड वो टीम सोचती है कि हम यहां से जीत सकते हैं, उनकी नेगेटिव सोच नहीं थी या डिफेंसिव सोच नहीं थी कि हम इंडिया पहले खेल ले, अगर उनका ठीक दिन नहीं रहा तो हम उनको पकड़ सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी काबिलियत पे खेलते हैं, हम रन बोर्ड पे लगाएंगे और वहां से फिर गेम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो सिर्फ भारतीय टीम के लिए नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, बांग्लादेश के लिए भी है।
2: जी बिल्कुल, और जैसा चेतन कह रहे हैं कि बांग्लादेश बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है, टुडेज मैच चेतन विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर इंडिया। कई अच्छे स्पिनर्स भी हैं बांग्लादेश के पास जो आपको पुश करेंगे, खास करके ऑन अ विकेट लाइक ओल्ड ट्रैफर्ड।
3: नहीं बिल्कुल, देखिए पीस ऑफ केक तो क्रिकेट में कुछ नहीं होता, आप जिस मर्जी टीम के, दिस इज इंटरनेशनल, दिस इज वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी आपकी सामने जो टीम है वो कमजोर आप नहीं हांक सकते उनको। देखिए जो विजय अभी बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा उसको और जोड़ने की कोशिश करूंगा। जब आपके बोलिंग कोच ये स्टेटमेंट देते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो उसका ये मतलब होता है कि आपका जो बोलिंग लाइनअप है वो सेटल नहीं है। तो वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप ये कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, क्योंकि सबको मालूम है कंडीशंस कैसी है इंग्लैंड में, आप अपना लाइन वन लाइन टू हर समय तैयार रखते हैं गेंदबाजी, और गेंदबाजी एक आपकी ऐसी है जो आपको टूर्नामेंट्स जिताएंगी, जो आपको ट्रॉफीज जिताएंगी, और आप बेशक 200 रन 220 रन कर देंगे, अगर आपकी गेंदबाजी में दम नहीं है तो ऑपोजिशन 220 रन चेस कर लेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप किसी को भी हरा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया को आराम से हरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अपने सेटअप को थोड़ा ठीक कीजिए। मिडल ऑर्डर में इतने शफल की जरूरत नहीं है, जमीमा पीछे जाएगी, 3 नंबर खेलती आई है, आप जमीमा को पीछे नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं विच द इंडियन मैनेजमेंट हैज टू कीप इन ऑर्डर। हमारे लिए बहुत इजी है यहां से बैठकर बोलना, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, बट वी आर जस्ट होपिंग कि इंडियन टीम डू वेल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई वर्ड नहीं होता क्रिकेट के अंदर, बांग्लादेश के लिए बात करें या इंडिया के बात करें, whoever plays the better cricket definitely win।
1: एक बात बहुत आपने ठीक कही कि कम नहीं आ सकते बांग्लादेश को, क्योंकि भारतीय वुमेन्स क्रिकेट को फॉलो करने वाले जानते हैं कि 2018 में ये गलती हम कर चुके हैं, एशिया कप के फाइनल में इसी बांग्लादेश की टीम से हमें हार मिली थी। खैर एक बड़ा रोचक विजुअल चेतन अभी हमने देखा, सू रेडफर्न जो कि रिजर्व अंपायर है वो एक बक्सा लेके आई और रेणुका ठाकुर को बोला उन्होंने कि आप गेंद का चयन कीजिए, किस गेंद से आप गेंदबाजी करना चाहेंगी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या देखता है गेंदबाज जब गेंद का चयन करता है, क्या क्या वो चीजें होती है, क्या वो फैक्टर्स होते हैं जिस पर वो ध्यान देता है।
2: इस सवाल पर हम आते हैं दर्पण, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अपना परिचय दीजिए और अपना सवाल पूछे।
4: आपको वेरी वेरी गुड इवनिंग, मैं वाई वेंकट रेड्डी गांव लखवाड़ा हूँ, जिला सूर्यापेट तेलंगाना से बोल रहा हूँ।
2: वेलकम बैक वेंकट रेड्डी जी, अपना सवाल पूछे।
4: थैंक यू। इस बार हमारे पेस बॉलिंग बहुत कमजोर लग रहे हैं, अरुंधति रेड्डी की बॉलिंग नहीं चल रहे हैं, नंदिनी शर्मा भी कमजोर पड़ गए हैं, तो इसके रिप्लेसमेंट क्या है, क्या रिप्लेसमेंट है या नहीं है?
0: सर इंडियन टीम बॉलिंग के बिना चल सकती है, लेकिन ये शो आपकी कॉल के बिना नहीं चल सकता है।
1: जी चेतन, मैं चाहूंगा आप दोनों सवाल को कंबाइन करके हमें एक जवाब दें, क्योंकि फास्ट बॉलिंग एक्सपर्ट आप ही हैं।
3: आज रेणुका यादव, रेणुका ठाकुर को मौका मिला है, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है जो अभी हमारे कॉलर कह रहे थे कि गेंदबाजी में कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लग रहा है कि वीक है। और जहां तक आपने गेंद का बात की ना, देखिए आप तेज गेंदबाजों के हाथ में वो बॉक्स दे देते हैं, वो अपने आइडिया से कि उनके हाथ का साइज क्या, मतलब मैं अपने जमाने में तो ऐसा करता था कि मेरे हाथ में ग्रिप मेरा ठीक आ रहा है, कभी कभी होती है कि बॉल थोड़ी बड़ी होती है आपके हाथ में, वो सेटल नहीं होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ रेणुका ठाकुर नहीं करेंगी, वो दूसरे जो तेज गेंदबाज होंगे उनको भी दिखाई जाएगी, बट उसकी सीम पोजीशन की आप बात करें, कितना कंफर्टेबल आप उसको फील कर रहे हैं, हर समय आपने आपने देखा उल्टा ऐसे करके ऊपर फेंकते हैं कि वो सीम से वापस आ रहा है, कि कभी कभी होता है कि नहीं सीम से अच्छा आ रहा, तो ये गेंदबाजों की अपनी अपनी सोच रहती है सब।
0: इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ूंगा आपको, इसमें एक खिलाड़ी टीम के अंदर रहता है, एक गेंदबाज रहता है जिसकी जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि आप जाके गेम देखेंगे, तभी आप देखिए ज्यादा लोग नजर नहीं आते, वो एक फील रहता है

0: और सिर्फ एक नहीं, आजकल अगर आप देखें तो थर्ड अंपायर फोर्थ अंपायर जो आता है वो एक और बॉल आपको हमेशा बोलता है कि दो बॉल होनी चाहिए रखने के लिए। कई बार डी शेप हो जाती है, कई बार गेंद जाके कहीं टकराती है, तो उसके लिए दो बॉल आपको बोलते हैं हमेशा रखने के लिए। तो ये भी होता है, लेकिन चूज एक ही खिलाड़ी करता है और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड ये करता है कि उसको किस तरीके से फील रहती है, और बाकी सारे उस पर विश्वास रखते हैं कि ये जो भी पिक करेगा ना वो हम सब उसके साथ चलेंगे।
1: तो मेरे समय में मैं कपिल पाजी को कभी बॉल उठाने नहीं देता था, क्योंकि मेरा हाथ और उनके हाथ में जमीन आसमान का फर्क था। और जब उनके हाथ की गेंद करते तो मेरे हाथ में फिट ही नहीं होती थी, तो मुझे बोला जाता था आप चूज करो। जैसे विजय बोल रहे हैं तो एक को ड्यूटी लगती है आपकी करने के लिए।
2: जी, और क्योंकि बॉलिंग की बात चल रही है, विजय, शेफाली वर्मा के रूप में भारत को एक नया ऑलराउंडर मिल गया है। ये जो सफलता मिल रही है शेफाली को बॉलिंग में, क्या वो इसलिए कि शेफाली को रीड करना बैटर्स के लिए उतना इजी नहीं हो रहा है? वुड यू लाइक टू डीकोड शेफाली'स बॉलिंग फॉर आवर लिसनर्स?
0: इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डीकोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी वाज नॉट बॉलिंग फोर ओवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस अर्ली ऑन। आई मीन, लाइक शी वाज यूज्ड एज अ पार्ट टाइमर एंड शी इज डन अ फिनोमिनल जॉब एज अ पार्ट टाइमर। शी इज अ विकेट टेकर, यू नॉर्मली सी दैट। व्हेन आई सी अ टॉप order batter bowling, I always feel you think like a batter and then you bowl. What I don't want to face, that's what you try and deliver, and I think that works in a favor when a top order batter is used as an all rounder.
3: चलिए, गेंदबाजी के विकल्पों की हमने बात की, बट देयर इज दिस थिंग कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शशांक, नंदिनी शर्मा बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल के लिए जानी जाती है, डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए जानी जाती है। पिछले मैच में हमने देखा डेथ ओवर्स में उनको गेंद नहीं थमाई गई, तो जिस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या आप उससे अभी तक सेटिस्फाइड है या इंडिया को उसमें अपना आउटलुक बदलने की जरूरत है?
4: यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इज ओके, यू नो, आई थिंक it's about the performance of your resources. You know, so the entire middle order has not performed. You know, the captain herself, she came into the tournament on the back of a very good form but hasn't been able to make her mark. Jemima has disappointed. Richa has not been her own self. So it's all the entire onus is now on Smriti and Shefali through the tournament to score runs, and on Sri Charani to take wickets. So these are the three players who have carried the team, but it's a game of 11 players, you know, so only three players performing. And Deepti Sharma of course took 5 for 10 against Pakistan, but she gave 44 runs of her in her 4 overs against South Africa. You know, as the leading all-rounder in world cricket, she's supposed to do her best against the top teams. There she couldn't deliver the goods. So it's all about how the resources perform, and there is the problem. And because of that, there has been tinkering with the team. And as Chetan Bhai said, in a big tournament, it is very important to have a settled team. You know, because of injury or because of unexpected slump in form, you may change one player here and there, but in a big tournament you need to have a settled army. So that has not been the case with India.
3: जी, और आज हम उम्मीद करते हैं कि उन सारी गलतियों को भारतीय टीम पीछे छोड़ाएगी। इस वक्त हम मैदान पर देख रहे हैं कि टीम्स लाइंड अप है नेशनल एंथम्स के लिए, और कोइंसिडेंटली दोनों ही देशों के नेशनल एंथम्स रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, तो इस वक्त नेशनल एंथम्स की प्रक्रिया जारी है। मुझे तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं।
2: जी बिल्कुल, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी बीच में आईसीसी ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है, रिटर्न टू प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस जो है, और वो साफ कह रहे हैं कि मदरहुड इज Not the end of the innings, it's just a pause. Pregnancy की वजह से अभी तक हम जो देखते थे कि महिला क्रिकेटर्स को करियर ब्रेक या रिटायरमेंट लेना पड़ता था, लेकिन अब आईसीसी ने फीमेल क्रिकेटर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने के लिए गाइडलाइंस बनाई है। 16 हफ्तों का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है जिससे मां बनने के बाद खिलाड़ियों पर डायरेक्ट प्रेशर नहीं हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप रिकवरी, मेडिकल सपोर्ट और ग्रेजुअल कमबैक हो सके। आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने कहा कि किसी भी प्लेयर को मां बनने और देश के लिए खेलने के बीच चुनाव न करना पड़े, इसलिए ये गाइडलाइंस लाई गई हैं। विजय, एक्सेप्शनल स्ट्रोक बाय द आईसीसी।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी आपने कहा कि मदरहुड स्टॉपेज नहीं है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए एक पॉज है। बिल्कुल, मुझे लगता है, और ये चीज ऐसी है जहां पर आप ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश करें कि किस तरीके से आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट की तरफ देखता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।
2: जी बिल्कुल, चेतन, मिडिल ऑर्डर की क्योंकि आप बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, वहां एक जो और हमने पहले भी बात की, स्ट्राइक रोटेशन जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हमको। पिछले मैच में साउथ अफ्रीका

0: का के अगेंस्ट पावर प्ले में 59 रन्स, डेथ ओवर्स में 36 जो कि साउथ अफ्रीका ने 39 जहां पर स्कोर किया था और पावर प्ले में 25 रन बनाए थे। असली फर्क जो बना जाकर के वो मिडल ओवर्स का था। भारत ने जहां पर 63 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर, वहीं साउथ अफ्रीका ने 97 रन बनाए बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
1: देखिए आपने विकेट्स गंवाए, आप सेट होकर आउट हुए। अगर आप जमीमा की बात करें, 36 रन बनाकर आप आउट हो रहे हैं, 47 रन बनाकर हरमनप्रीत कौर आउट हुई है। तो अगर आप यहां से दोनों में से एक भी आखिर तक अगर इंडियन टीम को ले जाता लास्ट ओवर्स तक, तो ऑब्वियसली आपके 15-20 रन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं। देखिए हर समय क्रिकेट के अंदर ये है, जैसे ही आप विकेट्स गंवाएंगे कहीं ना कहीं रनों पर अंकुश लगेगा, वो कहीं आपको आएगा, नया बैटर अंदर आएगा, आपको सेटल होने के लिए समय लगेगा। तो देयर कपल ऑफ थिंग्स विच आई थिंक, देखिए जो चीज गई उसके ऊपर ज्यादा सोचने का अब जरूरत नहीं है। आज जो है डिफरेंट ग्राउंड, डिफरेंट टीम, डिफरेंट एटमोसफेयर ऑल टुगेदर, आप अपनी जाकर नॉर्मल क्रिकेट खेलिए एंड कॉन्सेंट्रेट कि आगे क्या होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बहुत दूर है। आज आपके सामने क्या चीज है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, प्ले योर बेस्ट क्रिकेट एंड रेस्ट अच्छे क्रिकेट खेलेंगे, आप अपने आप जीतेंगे। जी
0: बिल्कुल, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और आप जीतेंगे। तो चलते चलते आप लोगों से हम प्रेडिक्शंस लेना चाहेंगे कि बांग्लादेश का क्या आपको लग रहा है, कि क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप?
1: आपको लगता है कि हम उस तरफ जाएंगे? इंडिया का मैच है तो ऑब्वियसली इंडिया ऑल द वे।
0: तो कहां पर रोकना चाहिए भारत को, बांग्लादेश की टीम को?
2: मुझे लगता है कि अगर बहुत अच्छा बांग्लादेश अगर खेलेगी तो कहीं शायद 100-110।
0: जी शशांक, आप भी इसके आसपास ही?
3: 120 उन्होंने 124 बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ।
0: जी
3: मुझे लगता है उससे कम में हिंदुस्तान को उन्हें रोक देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, उससे कम में रोक देना चाहिए। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स ब्रेक में और आप चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम की ओर।
4: फर्स्ट बॉल 20।

अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर से सीधा प्रसारण। FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 7 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। और आज का कार्यक्रम किसान वाणी का आकर्षण होगा फोन इन प्रोग्राम, जिसका विषय रहेगा कपास की फसल में कीट प्रबंधन। किसान भाइयों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में रहेंगे डॉक्टर राम कुमार सैनी।

0: संदीप भाई राम राम।
1: और सावित्री बण आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बण भाइया ने
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: और भाइयों आज है वीरवार, वीरवार ने अपना कार्यक्रम होया करे है फोन इन कार्यक्रम। और आज का हमारा जो फोन इन कार्यक्रम का विषय है कपास की फसल में कीट प्रबंधन। और इस बारे में हमने जानकारी देने खातर हमारे साथ आए हैं डॉक्टर राजकुमार सैनी जी। डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में
1: राम
0: स्वागत
1: कुमार,
0: है।
1: तो भाइयों आप फ़ोन नंबर 0-16-62-297-827 पर फ़ोन करके डॉक्टर साहब से कपास की फसल में कीट प्रबंधन के बारे में जानकारी ले सको हो।
0: और भाइया ने बता दिया कि हमारा जो फ़ोन नंबर है यू ज़रूर आप नोट कर लें और लड़का के हाथ में फ़ोन न पकड़ा हुआ, कम से कम आप भाइयों का

0: की बात करें, आधे घंटे का टाइम जो हमारा वो है बहुत उपयोगी हुआ है। फ़ोन नंबर दोबारा नोट कर लें, जो 0-16-62-297-827 है।
1: और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं पवन कुमार जी, और कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
0: और जो हमारे डॉक्टर साहब हैं राम कुमार सैनी जी, डॉक्टर साहब प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। और कार्यक्रम किसान वाणी के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो है कपास की फसल में कौन कौन से जो कीट हैं जिनका प्रकोप हो सके?
2: नमस्कार किसान भाइयों, इस समय जो कपास की फसल में दो तीन कीटों का प्रकोप है। एक तो जहाँ खास करके बारिश नहीं हुई है वहाँ पे चूर्णा थ्रिप्स का प्रकोप आपको मिलेगा। दूसरा, जहाँ अच्छी बारिश होगी वहाँ पे हरा तेला का प्रकोप मिलेगा। तो ये दो मुख्य कीट हैं इस समय तो। और जहाँ अगेती बिजाई हुई है, फूल वूल आ गया है, वहाँ पे आपको कहीं कहीं गुलाबी सुंडी का प्रकोप भी फूलों पे मिल सकता है।
1: जी रक्षा, एक फोन ले ले। हेलो।
2: हाँ जी,
1: हेलो
3: हेलो।
1: हाँ किसान भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम और अपना गांव का और अपना नाम बताओ किसान भाई।
3: और गांव के जगलाल आवाज तो बोल रही,
1: आपकी आवाज आने लग रही है किसान भाई, आप सवाल पूछिए।
3: वाल बाड़ी के पे जाऊं मुड़िया लगना जो से पहले।
2: हाँ ये किसान भाई, चूर्णे का, हाँ चूर्णे का प्रकोप हो सकता है। आप रोबोर
3: तो कोने अंदर वाप के को रोने तो कोने
2: चूर्णा होता है ना, जूं जैसा कीड़ा, चूर्णा जिसे कहते हैं थ्रिप्स।
3: भाई को समझ में अंबानी ना सुनता, ठीक है भाई, राम राम।
2: तो मैं जो कहना चाह रहा था कि इस समय जो कपास की फसल पे चूर्णा का प्रकोप है, जिसे किसान भाई जू कहते हैं, इसको थ्रिप्स कहते हैं इंग्लिश में, और ये बहुत ही आसानी से काबू आ सकता है। जैसे रोगोर का स्प्रे आप करें, 250 मिलीलीटर रोगोर प्रति एकड़ डालें 125-150 लीटर पानी में, तो आप इसका अच्छी तरह से रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा प्रकोप हो तो उसके लिए आप इसमें साइपर या डेसिस या फेनवाल मिला सकते हैं, तो बिल्कुल ये साफ हो जाएगा। और जहाँ अच्छी बारिश हुई है वहाँ तो इसका प्रकोप वैसे ही कम हो जाता है। तो ये तो चूरड़े की बात हुई। दूसरा, हरा मच्छर है जिसे हरा तेला कहते हैं, इसके लिए कई दवाई हैं, जैसे रोगोर है, मेलाथियोन है, आपके कॉन्फिडोर है, एकतारा है, मोनो है, इनमें से कोई भी दवाई आप करेंगे 8 घंटे में तेला काबू आ जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, तो आपने बताया कि इस समय चूड़ा और हरा तेला का जो प्रकोप है वो होने लग रहा है। तो डॉक्टर साहब, कैसे पहचान करें किसान भाई की ये चूड़ा है और ये हरा तेला है? हाँ, उनके लक्षण किस प्रकार से किसान भाई को पता चले?
2: इस तरह से है, जो चूड़ा है वो बिल्कुल उगती फसल पे ही आ जाता है, जब दो दो चार चार पत्ती आती है उसी समय ही आ जाता है, और पत्ते टप की तरह मुड़ जाते हैं, उबड़ खाबड़ हो जाते हैं पत्ते, और ऐसे पत्ते दूर से पहचान में आ जाते हैं। पत्ता पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, जैसे बुझ जाता है, सिकुड़ जाता है, और ये सीधा लक्षण है कि इसमें चूर्णा का प्रकोप है। और हरे मच्छर की ये पहचान है कि किनारे से पत्ते पहले पीले होंगे, हल्का पीलापन पत्तों में आएगा, लेकिन खास बात है किनारों से, और ज्यादा प्रकोप हो जाए तो पत्ते नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं, उल्टा कप बन जाता है नीचे की तरफ, और अगर पत्ते को पलट के देखें उस पर हरे हरे छोटे छोटे जीव आपको चलते हुए मिलेंगे, तो ये हरा तेला है।
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब, जो किसान भाई ने स्प्रे जब करना है तो किन चीजों का उन्हें ध्यान रखना है ताकि स्प्रे का पूरा लाभ किसान भाई ने मिल पाए और फसल को भी नुकसान ना हो?
2: जैसे चूरड़े के बारे में मैं कहूंगा कि अगर अच्छी बारिश हो जाए तो ये वैसे ही साफ हो जाता है, इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बहुत अगेता ही आ जाए, जब दो दो पत्ती होती है, कई बार पौधा मर भी सकता है चूरड़ा के प्रकोप से, तो उस समय आप उसके लिए जो दवाई बताई उनका स्प्रे करें, और हरे मच्छर के लिए जो दवाई बताई उनका स्प्रे करें। मेन जो बात ध्यान में रखनी है कि पौधे को अच्छी तरह से कवर करें, बारीक फुहारा बना के, हवा ना चले तेज उस समय।

0: और या तो सुबह सुबह करें 10-11 बजे तक, या शाम को 4-5 बजे के बाद करें। दिन में धूप में गर्मी में स्प्रे ना करें। तो ये बहुत जल्दी थोड़ी दवाई से ही ये काबू आ जाता है, हरा मच्छर और ये चूर्णा भी।
1: तो डॉक्टर साहब, कोई नोजल का भी हमने कोई विशेष ध्यान रखना है?
0: हाँ, नोजल ट्रिपल एक्शन नोजल है जो बीच में
1: जी डॉक्टर साहब, एक फोन
0: फारा
1: ले रहे हैं।
0: बनाती है।
1: हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ किसान भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम किसान वाणी में। अपना नाम और गांव का नाम और बताएं जी।
2: राम राम जी। गांव
1: राम राम किसान भाई, अपना नाम और गांव का नाम। हाँ
2: बादलपुर जिला हिसार से बोल रहे हैं
1: जी, पूछो जी सवाल जी।
2: जी, मुन्ना के बारे में बता सकते हैं डॉक्टर साहब?
0: बता तो सकते हैं, लेकिन आज नरमा के बारे में बात है। अब मूंग के बारे में क्या सवाल
2: पता
0: आप?
2: साल जी, मुन्ना
0: हाँ बोलो।
2: में पत्ते लंगड़ा
0: पीले हो जाते।
2: ये चंगला पत्ते है
0: अच्छा
2: और फलियां आ रही है उन्होंने।
0: हाँ, तो क्या क्या समस्या है फिर? अब
2: जी
0: समस्या क्या है मूंग में, यू तो बताओ।
2: पत्ते मुड़े हैं तरले साइड में।
0: अच्छा, तो आपने एक मेलाथियन का स्प्रे कर दो, आप ठीक हो जाएंगे बिल्कुल पत्ते, या मेलाथियन नहीं? क्या
2: 5 दिन पहले मार दिया जी,
0: कौन सी दवाई करी है?
2: एक एक तारा का जी, मेल ठेल का।
0: तो ठीक है, फिर काबू आ जाएगा बिल्कुल, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो पत्ते बिल्कुल बुच गए ना, सिकुड़ गए, वो ठीक नहीं होंगे। आगे जो नए पत्ते आएंगे उनमें ऐसा प्रकोप नहीं होगा, वो ठीक आ जाएंगे।
2: और जी फली आंगारी से खेल वाले का भी मारा है जो कोई? नहीं
0: सुंडी का प्रकोप है क्या?
2: जी,
0: तो अभी जरूरत नहीं है, जब कोई एकाध जो सुंडी आपको दिखाई दे उस समय आप स्प्रे करें, वैसे बिना काम ना करें, मैं तो ये कहूंगा आपको।
2: ठीक है जी, धन्यवाद जी।
0: ठीक,
1: जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब आप नोजल के बारे में बता रहे थे
0: नोजल के
1: कि
0: बारे में ये बता रहा था कि बारीक फुहारा बने और फसल से 1-1.5 फुट से ज्यादा ऊंची ना उठाएं, तेज हवा के दौरान स्प्रे ना करें, और जो अपनी पीठ है जिधर हवा आ रही है उस साइड में रखें ताकि स्प्रे आपके ऊपर ना गिरे, और प्रॉपर दवा की मात्रा और पानी की मात्रा का इस्तेमाल करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले।
1: तो डॉक्टर साहब, जो सफेद मक्खी है ये किस प्रकार से जो है अपने कपास के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
0: सफेद मक्खी एक ऐसा कीड़ा है जो जामती फसल पे आ जाता है, जैसे फसल उगी है 2-3 पत्ते उस समय ही आ जाता है। धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती है और इसके शिशु और प्रौढ़ दोनों ही रस चूसते हैं, और इतना ज्यादा रस चूसते हैं कि वो एक्सेस में जो रस चूसा है वो बाहर निकालते हैं चिपचिपे पदार्थ के रूप में। तो उस चिपचिपे पदार्थ पे फंगस उग जाती है, फफूंद, काली फंगस, जिससे पत्ते काले हो जाते हैं। तो इस तरह से, और बाद में सितंबर के महीने में खास करके इतना प्रकोप हो जाता है कि वो जो चिपचिपा पदार्थ है पत्तों से नीचे टपकता है, वो रुई पे पड़ता है, वो भी चिपचिपी हो जाती है। जहां भी पड़ेगा वहां पे वो चिपचिपा हो जाएगा, काली फंगस उग जाएगी। तो ये इस तरह से करती है, एक तो डायरेक्ट उसको पौधे को कमजोर करती है, पौधा बिल्कुल बीमार नजर आएगा, चिपचिपा सा, गीला गीला सा, जैसे तेल में उसको नहला दिया है
1: जी डॉक्टर साहब,
0: ज्यादा प्रकोप से। और दूसरा ये क्वालिटी को खराब करता है नरमा के कपास की, जो टिंडे खिल गए उनके ऊपर चिपचिपा पदार्थ पड़ गया, उन पर वो चिप जाएगी रुई और उस पर काली फंगस भी उग जाएगी, तो क्वालिटी भी खराब करता है। तो इस तरह से ये नुकसान करती है।
1: तो डॉक्टर साहब इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं?
0: रोकथाम के लिए सबसे जो अच्छे जो तरीका है वो ये है कि भाई आप हर स्प्रे में नीम की दवाई जरूर मिलाएं। नीम का बड़ा कारगर इस पे असर है। देखो, इसको हम 100% नहीं मार सकते, लेकिन उस लेवल तक नीचे ला सकते हैं ताकि हमारे पत्ते काले ना हो, उससे चिपचिपा पदार्थ ना टपके। थोड़ी बहुत तो रहेगी, वो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हम इसको एक तो नीम की दवाई, दूसरा जैसे रोगोर है, मेलाथियोन है, कॉन्फिडोर है, आपका एकतारा है, इनमें से कोई एक दवाई और नीम की दवाई ये मिला के करेंगे तो इसकी समस्या काफी हद तक काबू आ जाती है। इसके अलावा कई नई दवाई भी हैं, जैसे डाइफेंथिरोन है, पोलो, पेगासस, डर्बी आदि नाम से मिलती है, डायनोटिफेरोन है, बुप्रोफेजिन है, पायरीप्रोक्सीफेन है, ये सब दवाई भी कारगर है, नई पीढ़ी की दवाइयां, ये भी बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं। और अगर इसके प्रकोप से बचना है तो ये आपको अगेती बिजाई करनी पड़ेगी, पछेती जो फसल है उसमें बहुत ज्यादा ये सफेद मक्खी आती है, तो ये आपको ध्यान करना होगा। तो इस तरह से आप इसको काबू कर सकते हैं।

0: एक रक्षा जो कपास की फसल है इसमें जो चेपा है रक्षा मऊ जिसने किसान भाई बोले हैं एक फोन ले लें रक्षा।
1: हाँ
0: हेलो
1: हाँ जी
2: हाँ जी, मैं कर्ण सिंह चौरान गांव शिकारपुर से बोल रहा हूँ। संदीप भाई और डॉक्टर
1: हाँ जी हाँ जी
2: साहब और
1: हाँ
2: बहन को
1: जी
2: राम, सुनीता बहन को राम राम।
1: हाँ राम राम जी।
2: मेरा सवाल है जी, चुनिया रोग आ रहा है, इसमें अकेला नीम का स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल
1: किसमें
2: हो जाएगा जी?
1: किसमें चूर्णिया रोग, वो जो मिलीबग
2: चुनिया
1: है,
2: रोग आ रहा है, उसमें पत्ते मुड़मा से हो रहे हैं टोक्सी से। हाँ
1: चूर्णिया किसको बोलते हो, मिलीबग को बोलते हो क्या?
2: जी
1: मिलीबग जो वो जैसे
2: हाँ जी
1: वो होती है ना तीज, तीज टाइप से साइज का
2: हाँ जी
1: और सफेद रंग का,
2: हाँ, सफेद मच्छर से है जी वो।
1: मच्छर से वो फाका है, वो तो मच्छर से तो है, तो रोगोर्निंग
2: हाँ तो नीम के लिए दूसरी बताओ।
1: मिला के कर दो स्प्रे, आप बिल्कुल 2 स्प्रे 1 हफ्ते के अंतर पे कर दो, बिल्कुल काबू आ जाएगी।
2: और जी नरमा पानी दे सकते हैं क्या जी?
1: पानी देखो किसान भाई, अगर दोपहर को तो देखो गर्मी होती है, शाम को पत्ते मुरझा जाते हैं, उड़सा आ जाते हैं, अगर सवेरे पत्ते ठीक हो जाते हैं पानी नहीं देना आपने, अगर सवेरे
2: अच्छा,
1: भी
2: नहीं जरूरत
1: पत्ते,
2: है देने की जी?
1: हाँ बिल्कुल नहीं देना, अगर सवेरे पत्ते आपके उड़साए मिलते हैं मुरझाए मिलते हैं फिर आपने पानी देना है,
2: हाँ जी, नहीं
1: क्योंकि
2: तो बारिश
1: ज्यादा
2: के इंतजार करें जी। धन्यवाद
1: हाँ नहीं तो तब तक ना दो,
2: जी डॉक्टर
1: क्योंकि
2: साहब, और
1: बारिश
2: मौसम की जानकारी दी जी।
0: जी जरूर देंगे जी
1: हाँ
0: कर्ण सिंह जी,
1: जितना ज्यादा बारिश
2: धन्यवाद
1: होगी
2: जी।
1: ना, जितना पानी लगाओगे उसमें नुकसान होगा नर्मों में, इसको कम पानी चाहिए।
0: जी रक्षा, तो रक्षा हम बात करने लग रहे थे चेपा का जो प्रकोप है रक्षा, वो कपास की फसल में कब होता है?
1: ये जैसे बारिश के बाद होता है, पर ये इसका हमारे हरियाणा में ज्यादा प्रकोप होता नहीं, तेला हावी, तेला और सफेद मक्खी हावी होती हैं, किसी किसी साल चेपा का हो जाता है, जो दवाइयां मैंने तेला हरा तेला के लिए बताई हैं वही इस पे कारगर हो जाएंगी, बहुत आसानी से मर जाएगा।
0: तो रक्षा किसान भाई जो हैं, आपने बताया कि ज्यादा पानी देने से भी जो है
1: हाँ जी
0: कि पानी जो है आपने कपास के फसल में बड़ा कंजूसी से लगाना है,
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो कितनी अवस्था में रक्षा आपने कब कब पानी लगाना चाहिए ताकि कम से कम जो है कीटों का प्रकोप हो?
1: देखो, नर्मा में जो पानी है ये हमारे हरियाणा में कहते हैं आधा काल मांगती है, यानी कि ज्यादा पानी से नुकसान होगा, इसमें ज्यादा पानी से ज्यादा बढ़वार लेगी, ज्यादा बढ़वार से कीड़ों की समस्या पैदा होगी, हरा मच्छर भी ज्यादा आएगा, गुलाबी सुंडी भी बहुत ज्यादा आएगी, तो हमें नमी को कंट्रोल करके रखना है, और वो कब कर सकते हैं, पानी बिल्कुल तरसा के देना है, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर सवेरे भी पौधे मुरझाए या पत्ते उड़साए मिले तब आपने पानी देना है, इससे पहले अगर दोपहर बाद पत्ते उड़सा जाते हैं तो पानी नहीं देना है, अगर वो सवेरे ठीक हो जाते हैं तो, अगर सवेरे भी मुरझाए मिले तब पानी देना, तो मतलब फसल को तरसा के पानी देना है। और दूसरी बात ये रखनी है कि भाई खुली बिजाई करें, 20 अप्रैल तक बिजाई पूरी कर लें, अगेते हाइब्रिडों का प्रयोग करें, जिससे कि वो हमारी फसल गुलाबी सुंडी का प्रकोप जैसे बाद में बढ़ता जाएगा तो उसके प्रकोप से बच जाए, तो इन बातों का ध्यान करेंगे तो आप काफी कीड़ों से आप बच जाएंगे, खुली बिजाई करने जैसे, क्योंकि बीटी जीन अब उतना काम नहीं कर रहा जो पहले कर रहा था, तो बीटी जीन लगभग फेल है, हर जगह सुंडी आ रही है, तो इसके दृष्टिगत इसके नजर में रखते हुए हमें लाइन से लाइन की दूरी नरमा की कम से कम 5 फुट रखनी चाहिए, हमें नमी कम करनी है खेत में, जितनी नमी उतनी ज्यादा सुंडी आएगी, जितनी हाइट बढ़ेगी उतनी ज्यादा सुंडी आएगी, जितना पानी और यूरिया देंगे उतनी ज्यादा सुंडी आएगी, तो इन चीजों पर ध्यान करना है, इनमें सब कंजूसी करनी है, कम से कम यूरिया कि उसकी खुराक पूरी हो जाए, पौधे के पीड़ापन ना आए, लेकिन बफर में नहीं देना, अधिक नहीं देना, ऐसे पानी तरसा के देना है, खुले बिजाई करनी है, और ऐसे हाइब्रिड हमने लगाने हैं जो अगेते फाल उठाएं, जल्दी पकें, जल्दी तैयार हों, ताकि क्योंकि हर महीने सुंडी की जो संख्या है 15-20 गुना बढ़ के आती है, कि एक महीने में एक पीढ़ी आ जाती है, हर महीने 15-20 गुना बढ़ के आएगी, तो हमें लास्ट की पीढ़ी से बचाना है नरमा को, ताकि हमारी अच्छी फसल हो सके।
0: डॉक्टर साहब आपने गुलाबी सुंडी की बात करी, तो डॉक्टर साहब एक फोन और ले लें।
1: हाँ
0: हेलो
2: हेलो
0: हेलो, किसान भाई आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम और गांव का नाम बताएं जी। आपका
2: आवाज तो कौन नहीं आ रही फोन पर तो जी, आपकी
0: आप थोड़ा दूर हटके बात करें किसान भाई रेडियो से जी।
2: और चर्ड चर्ड करने लायक गया
0: हमें आपकी
2: आवाज
0: आवाज आ पा
2: बिल्कुल
0: रही है
2: नहीं आ रही
0: किसान भाई,
2: थी।
0: आप सवाल पूछिए।
2: सवाल तो पूछू, मैंने सुना तो कौन रेडियो लो लागूंगा तो फिर सवाल पूछा, फायदा क्या होया?
0: देखो आप सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दे पा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे वो आपको एक बात हम दो बार बता के ना आपका

0: जो है पूरा कर पाए।
1: जी आवाज बहुत कमाओ सब है, लेकिन मैं रेडियो मड़ा मड़ा संपर्क माऊं यूं दा बाड़ी है जी अप्रैल की बोईडी।
0: अच्छा जी, अपना नाम और बता दें किसान भाई एक बार।
1: मोलू नाम है जी पनियाता है।
0: हाँ जी मोलू जी, पूछो जी।
1: हाँ जी, तो उसमें पानी लगा दिया एतवार में।
2: अच्छा
1: हेलो।
2: हाँ बोलो।
1: हाँ आवाज को नहीं आ डॉक्टर साहब।
2: हाँ आप बोलो, आपके बात सुन रही है।
1: वो पानी तो लगा दिया जी।
2: हाँ जी,
1: इको खाद खूत उसमें बिजाई की में करनी पड़ेगी के को खाद खून सी गेरा गेरा तो और तागड़ी तागड़ी हो रही है बाड़ी नरमा।
2: अच्छा, पहले आपने यूरिया कितनी डाली है?
1: कुछ है कौन डाल दी सुखी बोईडी बोईडी।
2: अच्छा अच्छा, पहले क्या थी फसल इसमें?
1: फसल गेहूं।
2: अच्छा, गेहूं में डाला होगा खाद आपने, डीएपी वगैरह?
1: हाँ वो तो डाल था जी।
2: तो इसमें आप थोड़ा बहुत यूरिया दे दे, 10-15 किलो किले का, बस ज्यादा नहीं।
1: 10-15 किलो?
2: हाँ, ज्यादा यूरिया मत दे।
1: छिड़का
2: ना, यूरिया कभी भी बिजाई नहीं करते, छिड़कना होता है क्योंकि बिजाई करके घुलके तो नीचे चला जाएगा ना, फिर बिजाई कर दी तो जड़ से भी नीचे चला जाएगा, मिलेगा नहीं पौधे को। अगर फसल में पूरी हरा हरियाली है, हरापन है, तो अभी रुक सकते हो, अभी कोई जरूरत नहीं है। फसल हल्का सा पीलापन दिखाए तब आप दे। हाँ तो अब मांगे खुराक तो फिर तो थोड़ा बहुत देना पड़ेगा आपको।
1: टिंडे भी छोटे छोटे टिंडे लाग रहे हैं गणे, वो भी कौन बटे।
2: हाँ तो खुराक तो मांगेंगे ना, टिंडे पकेंगे। आप थोड़ा बहुत, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 10-15 किलो दे दे आप, पानी लगा दिया तो।
1: डीएपी बोन की जरूरत कौन दे?
2: डीएपी तो शुरू में हम कहते हैं, वो अब ज्यादा फायदा नहीं होगा डीएपी का।
1: आप दोनों पूछे हुए नहीं, सारी चिंता असर करेगी।
2: नहीं नहीं, ऐसा है, वो जो डीएपी में यूरिया होती है ना, नाइट्रोजन, उसका असर दिख जाता है, आपको लगता है डीएपी काम कर रही है, लेकिन फास्फोरस वाली तो घुलेगी नहीं, ऊपर ही पड़ी रहेगी, जड़ तो नीचे चलेगी।
1: हाँ जी,
2: तो इसलिए आप है ना उसके स्प्रे कर देना बाद में, जैसे पूरा फाल उठ जाए के एनपीके का 13-45 का, ये स्प्रे कर देना एक बार, ठीक है? स्प्रे के बाद
1: डॉक्टर साहब पानी तो कौन लगाया है तुम्हारी है तो मई की है।
2: हाँ कोई नहीं, बारिश का सीजन है, हो जाएगा, आ जाएगी बारिश, आ जाएगी
1: बारिश की। कौन जी छिट्टी बारिश है, मान ले श्याम हुआ को नहीं,
2: वो बहुत बढ़िया बनेगी, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया
1: होगा जी उसमें।
2: हाँ वो तो खरपतवार तो निकालना पड़ेगा आपको, अड़ा दो उसको।
1: हाँ तो दो बार दिन जी
2: बस, फिर तो बनेगी आपकी, फिर तो ऊपर उभर आएगी, फिर बनेगी बाड़ी आपकी, बहुत अच्छी बनेगी।
1: उसमें खाद खुद सुकम बोवा तो जी डीएपी को?
2: डीएपी का तो बोई जाती है, लेकिन वो फसल आपकी बड़ी होगी, आपको फायदा नहीं है डीएपी का। देखो एक तिहाई मिलेगी आपको, बो दो बेशक, ज्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि ये फास्फोरस वाली खाद है, ये मूव नहीं करती, चलती नहीं है, जड़ को ही जाना पड़ेगा इसके पास लेने के लिए, ये घुलके नहीं जाएगी, मामूली घुलती है बस, इसलिए अब फायदा नहीं है डीएपी को बोने का। आप ऊपर से स्प्रे के माध्यम से दे दो, इनके खुराक के स्प्रे कर दो, आपका पूरा काम चल जाएगा। हर 10 दिन में स्प्रे कर दो एनपीके का 13-45 का।
1: वो स्प्रे इप भी कर सका कि जो बड़ी बड़ी बताऊं मैं डीएपी बोन की हूँ उसमें टिंडे लग रहे?
2: हाँ टिंडे लग रहे, उसमें खुराक की जरूरत पड़ेगी, कर सकते हो बिल्कुल।
1: एनपी का कर दिया?
2: हाँ एनपीके का कर दो, फिर 10 दिन बाद 13-45 का कर दियो, ठीक है इसका अब टिंडे में।
1: ओके
0: धन्यवाद मोलू जी फोन करने के लिए जी। रक्षा तो हम बात करने रहे थे, रक्षा गुलाबी सुंडी का जो है आपने बताया कि प्रकोप जो है अंतिम समय में जा, तो किस प्रकार से जो किसान भाई हैं अपनी सावधानी बरते हैं कि गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है वो कम से कम।
2: ये गुलाबी सुंडी का 50% जो कंट्रोल है वो बिना दवाई के लिया जा सकता है
0: जी रक्षा,
2: और 35% कंट्रोल मिलता है दवाइयों के स्प्रे से, और 15% लास्ट के उसका कंट्रोल मिलता नहीं है, क्योंकि स्प्रे बंद हो जाती है, कपास खिलनी शुरू हो जाती है, तो बिना स्प्रे तो सुंडी की मौज होती है, लास्ट के जो टिंडे फूल बोकी है वो खाएगी, तो 15% का तो लालच छोड़ ही दें लास्ट का, 50% तो बिना स्प्रे के आप काबू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताई कई बातें, 20 अप्रैल से पहले बिजाई, लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट, अगेती पकड़ने वाले हाइब्रिड जैसे यूएसी कामन है, टाटा दिग्गज है, टाटा धाकड़ है, और भी कई हैं जो अगेते फसल हैं, अगेते पकते हैं जो, और यूरिया और पानी कंजूसी से दें, और नीम की दवाई हर स्प्रे में डालें, और लास्ट के

0: जो दो सप्रे हैं वो पायराथायराइड ग्रुप से करें, जैसे फेनवाल है, साइपर है, डेसिस है, अल्फा मेथ्रिन है, इस ग्रुप से करें, क्योंकि ये 10-15 दिन पहले पकाएंगे फसल को और गुलाबी सुंडी के प्रति कारगर भी बहुत है। बीच में जो आप सप्रे 2-3 प्रोफेनाफोस या एमामेक्टिन बेंजोएट या थायडीकार्ब या कोराजन, इनके आप कर सकते हो 2-3 स्प्रे बीच में। लास्ट के 2 स्प्रे फेनवाल, साइपर, डेसिस या एल्फामेथ्रिन के आप कर सकते हैं। ये लास्ट के 2 स्प्रे इनके करें, ताकि जो ये बढ़वार को रोकती हैं दवाइयां, लास्ट के हमारे जो टिंडे बनेंगे काम तो आने नहीं, तो हम नहीं चाहते कि पौधा और टिंडे निकालता रहे।
1: जी, डॉक्टर साहब एक का फोन हो ले लें। हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार किसान भाई, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम और गांव का नाम बताएं जी। हाँ
2: जी, मेरा नाम है जोगिंदर।
1: जी, गांव और बताएं जी।
2: हेलो, गांव
1: हाँ जी, गांव और बताएं जोगिंदर जी।
2: जी बियाना खेड़ा, आपकी आवाज कम आ रही जमाई जी।
1: हाँ जी, पूछो जी सवाल जी, डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं।
2: ये कह रहा था मैं, नरमा में है नहीं है।
0: हाँ जी,
2: हेलो
0: हाँ जी, बोलो।
2: हेलो,
0: हाँ बोलो जी, आपकी आवाज आ रही है।
2: मेरी तो आ रही थी, मैं तो रेडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत आवा आपकी।
0: हाँ बोलो, लो मैं और नजदीक आ जाता हूँ माइक के।
1: आप
0: तो
1: सवाल पूछिए जी, रेडियो के माध्यम से आप जवाब सुन
2: ये
1: लीजिएगा।
2: कह रहे थे जी, जुकराम हम ना 3-4 साल हो गए ट्रेसर दुआई का स्प्रे मारा कराए, नरमाम गुलाबी सुंडी तो रहती है कोनी
0: हाँ ठीक है, अच्छी है वो भी।
2: इसका, बल्कि 25 दिन के बाद स्प्रे करते हैं।
0: हाँ ये अच्छी है, कोराजन है, स्पाइनोसेड, ये ट्रेसर है, एमामेक्टिन बेंजोट, ये बहुत बढ़िया दवाई है, कारगर है।
2: हाँ जी, हाँ
0: हाँ किया करो, ठीक, अच्छी बात है, कंट्रोल है, तो हम तो कंट्रोल के लिए बात बता रहे हैं।
2: नहीं जी, पूर्ण रूप से है, 4-5 साल हो गए लगातार रेगुलर मारते हैं 2 स्प्रे बस,
0: हाँ ठीक है, अच्छी बात है।
2: वो भी लगना चालू है जिन्हें, उसके बाद 2 स्प्रे करते हैं फिर बढ़िया।
0: ठीक है जी, अच्छी बात है।
2: तो ये यानी सफेद मक्खी ये गैट कंट्रोल होगा जी।
0: ये कंट्रोल कम होती है, तो इसके लिए आप है ना
2: हाँ
0: नीम की
2: जी,
0: दवाई हर स्प्रे में डाल लें, जो भी स्प्रे करें नीम की दवाई जरूर डाल लें, फिर ये काबू आ जाएगी। बिल्कुल
2: प्रेशर के साथ भी डालें जी।
0: डाल सकते हो नीम की दवाई।
2: नहीं, और दवाई में तो रिजल्ट को नहीं आता जी उसका।
0: हाँ रिमोन में आएगा वैसे तो, रिमोन एक दवाई है,
2: हाँ जी,
0: रिमोन
2: रिमोन।
0: रिमोन एक दवाई है, वो 200 लीटर पानी में 150 मिलीलीटर काफी है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके
2: हाँ,
0: अलावा
2: रिमोन का गुलाबी सुंडी पे कम आ जी।
0: न गुलाबी सुंडी पे नहीं है, व्हाइट फ्लाई पे, सफेद मक्खी
2: हाँ
0: पे,
2: जी, इसका तो है।
0: और डाइनोटिफेरॉन है
2: हाँ जी,
0: इसका भी अच्छा है, डाइफेंथिरोन है इसका भी अच्छा है, व्हाइट फ्लाई पे, सफेद मक्खी पे, बुप्रोफेजिन है इसका भी अच्छा रिजल्ट है, अपलॉड के नाम से आती है,
2: हाँ जी,
0: तो इसके लिए ये करें। लेकिन सस्ता तो ये है कि भाई रोगोर और नीम की दवाई मिला के, या कॉन्फिडोरिया नीम की दवाई मिला के, या एकतारा नीम की दवाई मिला के, ये सस्ती पड़ेंगी,
2: ठीक है।
0: बाकी ये महंगी दवाई है, कंट्रोल इनका भी अच्छा मिलेगा। ठीक है जी,
1: जी डॉक्टर साहब,
0: हाँ जी,
1: तो डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि गुलाबी सुंडी का जो है आपने किस प्रकार से नियंत्रण कर लिया, तो इसके अलावा डॉक्टर साहब और कौन कौन सी जो सुंडी हैं वो अपनी कपास की फसल में नुकसान पहुंचा सके।
0: देखो अभी तो और कोई सुंडी का प्रकोप ज्यादा नहीं है, गुलाबी सुंडी ने ही बीटी का तोड़ निकाला है, इसमें बीटी जीन के प्रति सहन शक्ति आ गई है, तो अभी तो और किसी सुंडी का प्रकोप नहीं है। लेकिन चेतावनी है कि आने वाले समय में अगर कोई नया बीटी जीन आ जाता तो ठीक है, अगर कोई बीटी के नए हाइब्रिड नहीं आते हैं तो ये दूसरी सुंडी भी धीरे धीरे अपना रास्ता बनाएंगी इसमें, जैसे चीतीदार सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, लेकिन अभी तक ये बीटी को ये रौंद नहीं पाई है, बीटी काम कर रही है इनके प्रति, गुलाबी सुंडी में सहन शक्ति आई है, अभी तो इतना खतरे की बात नहीं है इनकी, धीरे धीरे ही इनका असर खत्म होगा बीटी जीन का।
1: जी डॉक्टर साहब, अपने बात करिए डॉक्टर साहब चित्तीदार सुंडी की, तो डॉक्टर साहब चित्तीदार जो सुंडी है इसका जो प्रकोप है कपास की फसल में किस समय हुआ है।
0: हाँ ये इस समय जो नॉन बीटी फसल है ना उनमें तो आएगी, क्योंकि पहले भी आती रही है ये, खास करके जो देसी कपास है उसमें बहुत ज्यादा ये चित्तीदार सुंडी आती है। ये जैसे अपने फूल बो की पापड़ी उठती है ना उसी समय इसका प्रकोप हो जाता है, और इसका तरीका यही है कि जैसे फूल शुरू हो आप है ना सुंडी के प्रति जो दवाइयां हैं, खास करके ये जो मैं बताऊंगा देसी कपास में, तो सिंथेटिक पायराथायराइड जैसे डेसिस है, साइपर है, फेनवाल है, एल्फामेथ्रिन है, ये स्प्रे आप 1 जुलाई से शुरू कर दें, जैसे फूल

0: कोई दिखाई दे, क्योंकि इसमें फूल का जो उफान है 3 बार आता है देसी कपास में, तो कई बार ये है कि जैसे फूल आया भूखी आई या डोडी आई, वो सुंडी उसको चट कर देती है, किसान को फूल दिखाई नहीं देता, वो सोचता कि अभी फूल आया नहीं है, लेकिन ये चित्तीदार सुंडी साथ साथ उसको खाती रहती है, नीचे गिराती रहती है। तो इसका तो जुलाई के शुरू में ही आप स्प्रे शुरू कर दें चित्तीदार सुंडी का, फिर फूल रुकेगा और पौधा बढ़वार भी ज्यादा नहीं लेगा तो फल आपको दिखाई देगा, नहीं तो साथ साथ ये फूल बोकियों को खाती रहती है, किसान सोचता भी फूल आएंगे, आए नहीं आए नहीं, तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते। जो दवाई मैंने बताई पायराथायराइड ग्रुप की, फेनवाल, साइपर, डेसिस, एल्फामेथन, ये तो बहुत ही कारगर है। इसके अलावा भी जो दवाई नरमा के लिए मैंने बताई है, जैसे एमामेक्टिन बेंजोट है, प्रोफेनोफोस है, थायडीकार्ब है, कोराजन है, ट्रेसर है, ये सारी सुंडी के लिए बहुत ही कारगर दवाइयां हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें दवा की मात्रा किसान भाई ने प्रति एकड़ कितनी रखनी पड़ेगी, चित्तीदार सुंडी की अगर हम बात करें तो?
0: हाँ, चित्तीदार सुंडी के लिए जैसे 600 मिलीलीटर प्रोफेनोफोस, 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोएट, 250 ग्राम थायोडीकार्ब, 60 मिलीलीटर कोराजन, 75 मिलीलीटर ट्रेसर यानी कि स्पाइनोसेड, ये बहुत सी दवाइयां हैं। इनमें से कोई एक दवाई करें, दूसरी दवाई से करें दूसरा स्प्रे, तो आपकी बहुत अच्छी काबू आ जाएंगी। और एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के बीच में 10 से 12 दिन का से ज्यादा का अंतर ना रखें, 10 दिन के बाद कर दें दूसरा सफर, तीसरा सफर, ऐसे।
1: और डॉक्टर साहब, कहीं पर यदि दीमक की समस्या है तो वहां पर किसान भाई ने किन चीजों का ध्यान रखना है?
0: दीमक के लिए एक तो ये गोबर की जो खाद है वो कच्ची ना डालें,
1: जी
0: पूरी गली सड़ी खाद डालनी चाहिए, क्योंकि ये दीमक का घर है तो ये दीमक को बुलाएगी जो कच्ची खाद है। दूसरा है कि भाई क्लोर पायरीफोस एक दवाई है, वो 2 लीटर प्रति एकड़ डलेगी, या तो सिंचाई के पानी के साथ डाल दें या मिट्टी में मिला के बुरक दें, ऊपर से पानी लगा दें, यानी कि दवाई जड़ में या जमीन में जानी चाहिए, तो दीमक काफी रोकथाम हो जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, तो किसान भाई जो हैं डॉक्टर साहब, अपनी भरपूर कपास की फसल ले सकें और कीट जो हैं कम से कम नुकसान पहुंचा सकें, तो उसके लिए किसान भाई को मुख्य तौर पर आप किन किन बातों की सिफारिश करना चाहेंगे?
0: सबसे पहले होता है बीज का चुनाव, तो ऐसे बीज आप सेलेक्ट करें जो अगेत्य फाल उठाएं, अगेत्य पकड़ने वाले हैं। फिर दूसरी बात होती है समय, किस समय बोएं। गुलाबी सुंडी से अगर बचना है तो 20 अप्रैल तक बिजाई आप करें, और यह संभव है तो आपकी फसल भदवाड़ पड़ी है खेत उसमें बोएं, या सरसों कट गया उसके बाद बोएं, गेहूं के बाद जो आप बोते हैं अक्सर लेट हो जाती है, तो गुलाबी सुंडी उन खेतों में ज्यादा आएगी। तो 20 अप्रैल तक बिजाई करें। खादों का डीएपी हमेशा बिजाई करनी होती है, यूरिया का हमेशा छिट्टा मारना होता है, तो इसका ध्यान करें। खुराक का पानी बिल्कुल तरसा के दें, और लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट रखें कम से कम सुंडी के प्रकोप के मद्देनजर, नहीं तो 3.5 फुट की हमारी पहले सिफारिश है लाइन से लाइन की दूरी। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे तो आप काफी काबू कर लेंगे।
1: जी डॉक्टर साहब, इतनी ज्ञान लाभ की जानकारी आपने किसान बड़ भाइयों को दी भी, किस तरह कपास में सुंडी का या दूसरे कीटों का प्रकोप रोक सके है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो भाइयों, हिसार मंडी के बाजार भाव आगे बता दें। सरसों का भाव है 6,674 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार भी क्या 5,500 है 5,200 रुपये प्रति क्विंटल, चना भी क्या 5,300 है 5,650 रुपये, गेहूं का भाव रहा 2,450 से 2,650 रुपये प्रति क्विंटल, जो भी क्या 1,900 से 2,350 रुपये प्रति क्विंटल, और बाजरा भी क्या 1,900 से 2,100 रुपये प्रति क्विंटल।
2: और इसके साथ ही भाइयों को दे दे हैं मौसम की जानकारी। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार 27 और 28 जून के दौरान राज्य में जो मौसम है आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है, और इस दौरान जो राज्य में दिन के तापमान में ज्यादा बदलाव न होने की आशंका है।
1: और इसी के साथ कार्यक्रम किसान वाणी का समय समाप्त होया। अपनी बहन सावित्री बुगालिया ने
2: और अपने भाई संदीप ने दे इजाजत।
1: सारे बन भैया ने राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी के अंतर्गत फोन इन कार्यक्रम FM बैंड 102.3 MHz पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर से सीधा प्रसारण।

अख्तर का गंवाया जो 8 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुई थी। नए ओवर की शुरुआत नंदिनी की पहली गेंद पैट पर टकराई, एक हल्की सी अपील, थोड़ी सी बातचीत इस समय कप्तान

0: that was going on to hit leg stump, but it would have started around middle in leg and was also shaping down the leg side. So at best, it might have stayed marginal because the on-field decision was not out. At best, it probably would have been an umpire's call. So maybe it was just okay that they didn't go for it eventually. And the umpire, Kim Cotton, now just having a word with Harmanpreet Kaur about something, maybe about follow through, perhaps just running onto the danger area or something, because she was also pointing towards Nandini Sharma in the process. But it's a dot ball to begin with.
1: Nandini Sharma ka ye over aage badhta hua dusri gend is over ki karne ke liye taiyar, over the wicket gendbazi kar rahi hai is samay, aur is baar gend ko khelna chahti thi, on side mein balle ka kinara liya aur gend 4 run ke liye.
2: Ye laga aabha ka chauka.
1: यह आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक था नहीं, खेलना चाहती थी लॉन्ग ऑन की तरफ, बल्ले का मुंह उसी तरफ था लेकिन बल्ले का किनारा लिया इस गेंद ने, थर्ड मैन पर गई ये गेंद, फील्डर थी वहां पर लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर थी, और चार रन उपयोगी इस समय आता हुआ बांग्लादेश के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन, एक विकेट के नुकसान पर चिंता की लकीरें भारतीय खेमे में गहरी होती हुई. सातवां चौका था बांग्लादेश की इस पारी का, 55 एक विकेट के नुकसान पर. नंदिनी शर्मा इस ओवर की अगली गेंद के साथ इस बार ऑप्शन के बाहर की गेंद को हवा में खेला है, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, खाली जगह में, नो मैंस लैंड में ये गेंद गिरी है और इस पर एक रन आया है बांग्लादेश के लिए. बढ़ता हुआ स्कोर 56 एक विकेट के नुकसान पर. आसमान पूरी तरह से साफ, बादलों का कहीं नामो निशान नहीं, और इस बीच में अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, यानी फ्री हिट बांग्लादेश के लिए तोहफा.
0: एब्सोल्युटली, द इंडियन इनडिसिप्लिन नाउ एक्सटेंडिंग टू द बॉलिंग एज वेल. इट्स अ वेरी मार्जिनल कॉल बट इट्स अ कॉल नॉनदलेस. इट इज अ नो बॉल. इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दैट्स वेयर नंदिनी'स फुट, नॉट इनफ ऑफ इट, वॉज जस्ट बिहाइंड द क्रीज, द लाइन ऑल्सो बिलोंगिंग टू द अंपायर. सो नाउ दिस पुट्स प्रेशर ऑन मुस्तारी, because she was not on strike but she has the license to really go for it and just rub some salt into the Indian wounds.
1: Bangladesh ki pari ka ye atirikt 5va run zarur tha lekin free hit hi bhi ab mila hai aur us par kya kuch hoga Mustari ki pratikriya. Aur is baar bahut zyada bahar off stump ki ye gend, wide ball ka ishara umpire ka, ek aur atirikt run aur jo wo free hit hai wo jari rahega. To atirikt run तोहफे में जरूर आया है, और जिस गेंद की हम चर्चा कर रहे थे कि लेग स्टंप को गेंद छोड़ सकती थी, जहां पर बातचीत हुई थी थोड़ी सी कप्तान और गेंदबाज के बीच में, निश्चित रूप से वो गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी. 41 गेंदों में 50 रन की ये साझेदारी हो चुकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी है बांग्लादेश के लिए. भारत का आक्रमण इस समय उतना प्रभावी साबित नहीं हो रहा है, और इसकी वजह वो कैचेस भी हैं जो भारत की तरफ से छूटे हैं. 4 कैच इस मुकाबले में अब तक छूट चुके हैं. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेलना चाहती थी विकेट कीपर के सिर के ऊपर से, धीमी रफ्तार की गेंद थी, चकमा खा गई, उछाल थी इस गेंद में, और इस गेंद पर जो फ्री हिट था उसका कोई फायदा हुआ नहीं बांग्लादेश को.
0: Yeah, very close to actually being a wide, and the batter will feel a little hard done by. It was a short bouncer. It was one for the over, called one for the over, but seemed to have gone over the head height even as the batter was trying to get up and get up to it. So, just a little unlucky on that occasion.
1: 58 एक विकेट के नुकसान पर इस बार फिर से धीमी रफ्तार की गेंद लेग और मिडिल स्टंप पर, जिसको हल्के हाथों से खेला, गेंदबाज खुद गेंद के पीछे भागी, लेकिन एक रन लेने का पूरा मौका था. अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, और उस एक रन से स्कोर बढ़ता हुआ 59 एक विकेट के नुकसान पर. हालांकि रन रेट की बात करें तो थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है उसमें, जिस रफ्तार से 7 के आसपास रन रेट था उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है. बातचीत इस समय एक बार फिर से अंपायर, कप्तान और गेंदबाज के बीच में कुछ बताया है, और जो वो डेंजर जोन है वहां पर बार बार गेंदबाज जा रही है, वार्निंग अभी तक दी गई है.
0: Second verbal warning, perhaps official effectively, because that is definitely a source of concern. If it continues, then Nandini will not be able to bowl at all in this innings.
1: Nandini ke liye thodi chinta ki baat, dhyan rakhna hoga Nandini ko. Agli gend karne ke liye taiyar, is over ki 5vi gend, aur is bar is gend ko follow through mein khela, seedhe gendbaz ki taraf, out! Badhiya catch lapka hai Nandini ne.
0: Yes, and she's made up for her own lapses, because a couple of those lifelines were given by her as a fielder, and this time she holds on. So that's the breaking news, that Firdaus finally has had to go back to the dugout after the catch was

0: will be time for a drinks break.
1: आधा ओवर इस इनिंग का समाप्त हो चुका है. 20 ओवर का यह मुकाबला, 10 ओवरों की समाप्ति, 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश का स्कोर. पिछले 5 ओवर्स की बात करें तो भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है. कुल मिलाकर 31 रन खर्च किए हैं अंतिम 5 ओवरों में और एक विकेट भी झटकने में कामयाबी मिली है. रन रेट में भी गिरावट आई है. पिछले 5 ओवर्स में 6.20 का रन रेट रहा है. तो अच्छी वापसी और यह दबाव भारत को बनाए रखना होगा. कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में कम से कम स्कोर पर रोकना होगा ताकि भारत न सिर्फ इस मुकाबले को जीतने की बेहतर स्थिति में रहे बल्कि नेट रन रेट भी भारत का और ज्यादा बेहतर हो सके, इसकी भी गुंजाइश बनाए रखनी होगी. 11वें ओवर की शुरुआत, राधा आई है नई गेंदबाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, कट करने का प्रयास और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो राधा ने शुरुआत की है वाइड गेंद के साथ. अतिरिक्त रन बांग्लादेश के खाते में जाता हुआ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पर. राधा यादव आज के मैच में शामिल की गई, इस बार थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, क्रीज से बाहर निकली और इस गेंद को आत्मविश्वास के साथ धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर की तरफ. फील्डर भागी उसके पीछे लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरे हुए और इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 66, 2 विकेट के नुकसान पर. रेणुका सिंह ठाकुर थी फील्डर, अच्छी दौड़ उन्होंने लगाई थी और निश्चित रूप से 1 रन तो बचाए ही थे. इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को अपने सामने की तरफ खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद जा रही है, फील्ड किया गया इस गेंद को, 1 रन और आता हुआ. राधा यादव अभी तक को कुछ खास प्रभाव नहीं डाल सकी है इस ओवर में, सीधी सीधी गेंद स्टंप्स पर डालती हुई, हालांकि पहली गेंद उनकी ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर थी. इस बार फुल टॉस गेंद, गेंद की लाइन को मिस किया बल्लेबाज ने पूरी तरह से, एक मौका चुका है मुस्तारी ने, क्योंकि इस गेंद को वो चाहती तो आराम से कहीं भी खेल सकती थी.
2: Yeah, just got surprised. I almost got yorked by the length of it, playing from the crease, and that's been the problem when playing against spinners.
1: Agli gend, is baar fir se flight thi gend mein, crease se bahar nikal kar is gend ko khelne ka prayas, lekin fir se short extra cover ki taraf is gend ko khela, fir se koi run nahi milega. Achha over. Pehla gend wide dalne ke baad thoda sa dabav tha Radha ke upar, lekin wapsi ki hai unhone is over mein. और इस ओवर की उनकी ये 5वीं गेंद, इसको हवा में उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर वहां पर पहुंच पाएंगे. जी हां, शेफाली वर्मा पहुंची हैं, सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन से स्कोर हो गया अब 68, 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छा ओवर चलता हुआ राधा यादव का, कुल मिलाकर अभी तक उन्होंने 5 रन खर्च किए हैं और 1 गेंद अभी आनी बाकी है. अंतिम गेंद इस ओवर की राधा यादव की, इस बार फिर से फ्लाइट थी गेंद में, इसको सामने खेला है फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन मिलेगा. इस रन के साथ ओवर की समाप्ति, 11 ओवरों के बाद बांग्लादेश का स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पर.
2: Yeah, those middle overs, that phase where teams often look to consolidate, just look to milk the bowling, try and work around the pitch for those ones and twos and the odd boundaries if available. And that's where the Indians have to be careful. They cannot let that big partnership prosper because these two batters are perhaps the most senior batters, the two players in this 11 in any case who have more than 1,000 runs in this format. And that's why if they get set, then they can push on and punish those final few overs. India need to consistently keep looking for wickets in that sense. And that's why Radha Yadav will be a little bit disappointed with that first over, while she was able to put some of those Yorkers in. But apart from that, she was also slightly wavered with her line on a couple of occasions. However, 6 runs conceded of that first over. She's also not had too much exposure in the 11 in this World Cup. As Renuka now comes back for a third over, 2 overs, one of which produced a wicket. Very first ball outside off stump. Nagar plays it with the outside edge of the bat and it runs away for 4 towards third.
3: ये लगा आभा का चौका.
2: Both these batters, Dharmendra, they have shown that they know how to use the pace, specially off seam, and work it behind the wicket.
1: जी बिल्कुल, इस बार जानबूझकर एक तरह से खेला गया स्ट्रोक था क्योंकि पता था बल्लेबाज को कि खाली जगह है थर्ड मैन पर और उसका पूरा फायदा उठाकर 4 रन जुटाने में कामयाब रही.
2: Bangladesh moving along to 73 for 2 and Nigar Sultana Jyoti very quickly has moved into double figures, 10 of 9 balls. Mustari is also batting well, 19 of 20 balls. This partnership at the moment, 15 or 14 runs, in fact, they came together at 59 for 2. Just outside off stump, opening the face of the blade, playing it away towards Deepthi Sharma, who's fielding at point. No possibility of a run, as Deepthi rifles that throw in straight into the gloves of Richa Ghosh. India also looking around the field for some kind of inspiration. Bangladesh still consistently scoring at more than 6 runs per over, which is a positive for them. If they can keep that going,

0: towards at least the 14th or 15th over, we know that they have the firepower to go possibly at 10 or even 12 runs per over in those phases. The next ball just jags in, and she didn't know a lot about that, goes up the inside edge, and they think about coming in for a second, but that's exceptional fielding from Radha Yadav. Comes in from deep square leg and fields it in front of mid-wicket and is able to keep the run scoring down to just that single. So Nigar Sultana Jyoti moves along to 11 of 11 balls. Bangladesh at 74 for 2 as it brings Shubhana Mustari back on strike. The senior pros out in the middle for Bangladesh, desperately looking to forge some partnership from where, which will put them into a position from where they can dictate terms, especially considering the fact that they won the toss and elected to bat. Outside off stump yet again, looking for that cut, but cannot beat Yastika Bhatia, who's fielding at short third this time around. It goes straight to her. It was a good shot, but not placed well enough. Two dot balls already in this over, in addition to 1-4 and a single. And that has meant that Bangladesh are at 74 for 2, continue to be at 74 for 2 after 11.4 overs. Two balls left in the 12th over, if there are no wides or no balls. We've seen a few wides from Renuka. Richa Ghosh is standing up to the stumps, almost on cue, almost a wide, but played away on the onside, but straight towards Sri Charani, who's fielding at short fine, and it's gone so quickly that there's no possibility of a run. Mustari now just standing with a half teapot, one hand on her waist, the other alongside her bat, just looking away, thinking about where she needs to get the runs away from. Because in the last couple of balls, she's played a couple of good shots, but straight to the fielders. And that has meant that Renuka Singh has bowled dot balls. This time a slower ball, just outside off stump, cutting it away towards Deepthi Sharma. But as she dives, they have enough time to cut through for a single. 12 overs completed. Bangladesh at 6.25 runs per over have gone up to 75 for 2.
1: Renuka ka ek aur badhiya over samapt hua, halanki pehli gend par jab unko chauka laga tha to thoda sa dabav tha unke upar, lekin achhi wapsi ki unhone us dabav ke bawajood, aur is over mein zyada azadi di nahi Bangladesh ki ballebazon ko. Shobhna Mustari 23 gendon mein 20 run banakar khel rahi hai, do chauke abhi tak unke is pari mein, aur Nigar Sultana ne 11 gendon mein 11 run banaye hain. Naye over ki shuruaat ho gayi. Aaj Bangladesh ne टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. कोई परिवर्तन बांग्लादेश की टीम में पिछले मैच की जो टीम थी उसमें नहीं किया गया, वही टीम उन्होंने उतारी है इस मुकाबले में भी. और हम बार बार बात कर रहे हैं कि भारतीय टीम ने किस तरह से इस बीच के ओवरों में वापसी की है. अभी तक अगर पिछले 5 ओवर के आंकड़ों को देखें तो 28 रन सिर्फ खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित की है. 5.80 की औसत से रन बने. अगली गेंद, नए ओवर की शुरुआत, राधा यादव की तरफ से पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. एक रन और मिलेगा, इस एक रन से स्कोर में इजाफा और होता हुआ बांग्लादेश के 76 हो गया स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर. खास बात दिबायन ये भी है कि अभी तक जो 2 सफलता मिली है भारत को, दोनों 30 गेंदबाजों की तरफ से मिली है. जबकि हम बार बार चर्चा कर रही हैं कि स्पिनर्स के लिए ये पिच काफी मददगार है, उस लिहाज से अभी तो कुछ कामयाबी आई नहीं है. अगली गेंद इस बार खेला है ऑन साइड में डीप मिड विकेट से, जब तक फील्डर आगे की तरफ आए उठाकर गेंद को वापस करें, एक रन और आता हुआ.
0: Yes, and it's also a function of how well Bangladesh, in a sense, have played against the spinners. Not too many risks taken, played from the crease, allowed the ball to turn, but things could be different in the second innings.
1: अगली गेंद इस बार सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, गेंद को रन को चुरा लिया फील्डर के सामने से, थोड़ी सी धीमी रफ्तार से फील्डर तक गेंद पहुंच रही थी, और उसका पूरा अनुमान लगाते हुए इस मौके पर रन को चुराया. एक रन और जुड़ता हुआ इस समय बांग्लादेश के लिए 78 2 विकेट के नुकसान पर. कैच जो आज भारत ने छोड़े हैं 4, उसका क्या नुकसान होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन दबाव निश्चित रूप से भारतीय गेंदबाजों के ऊपर था, वापसी की है भारतीय गेंदबाजों ने. एक रन और इस बीच में आया है, स्कोर हुआ 79 2 विकेट के नुकसान पर. रन रेट 6.24 का. 13वां ओवर चल रहा है, राधा यादव गेंदबाजी कर रही हैं, जिन्हें आज खास तौर पर टीम में शामिल किया गया. 4 गेंदों में 4 रन अभी तक उन्होंने दिए हैं, और इस गेंद को क्रीज से बाहर निकलकर लाभ किया है सीधे फील्डर के हाथों में. एक कैच आसान सा मिड पर, और दीप्ति शर्मा ने यह कैच लपकाया, भारत की अनुभवी फील्डर, बहुत आसान सा कैच.
0: Yes, very well taken and well bowled by Radha, just changing the length of it. For a change, we saw Mustari using her feet, trying to be positive, just skipping down the wicket and almost pulling it off. But I suspect that's what made Radha just change, alter the length a little bit, and that's forced her to almost yawk herself and not quite get the right kind of elevation. The idea was right, the execution not quite so. Wanted to clear mid-off, but ended up chipping it straight to Deepthi Sharma. Big wicket because she was looking dangerous and she was dropped on one. So that will make Nandini Sharma feel a lot better now that Shobhna Mustari

0: for a two, then two singles and a wide as well, which has meant that Nandini is a little under pressure. In her third over, 2.4 overs bowled, 1 for 24. Comes an outside off stump, yet again guided through that gap between backward point and short third. This will also run away for four more for Nigar Sultana Jyoti.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Really exceptional at this shot, Dharmendra.
2: Bilkul khali jagah hai, bilkul talashi, aur bahut badhiya timing ke saath, bahut badhiya placement ke saath lagaya gaya ye stroke. Char run aaye hain is over mein ek aur dabav Nandini ke upar.
0: And just the way that particularly Yastika Bhatia has been running after the ball, she has just recovered not too long ago from a knee injury. It's quite obvious that she's not 100% fit, which begs the question, why are India continually investing on her this time? It's a full toss on the pads and it's been whipped away towards deep square leg for yet another four.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Massive over the 17 of it. It's 96 for 3 after the 14th.
2: बहुत महंगा ओवर ये भारत के लिहाज से नंदिनी का. हालांकि नंदिनी ने एक सफलता जरूर दिलाई थी, लेकिन ये ओवर एक तरह से वापसी कराने में बांग्लादेश को कामयाब रहा है. इस मैच में एक दबाव बढ़ रहा था, बन रहा था बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन नंदिनी के इस ओवर से जो 17 रन का ओवर रहा है वो दबाव काफी हद तक हटता हुआ और स्कोर बांग्लादेश का बढ़ता हुआ 96 रन 3 विकेट के नुकसान पर. हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस मुकाबले में अगर 140 के आसपास स्कोर हो गया तो इतना आसान होगा नहीं भारतीय टीम के लिए भी. हालांकि स्पिनर्स को अभी तक कुछ खास मदद भारतीय स्पिनर्स को खासतौर पर नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दूसरी पारी में ज्यादा गेंदबाजों के लिए मदद होगी इस पिच में.
0: Absolutely. And the other concern, Dharmendra, is that India shouldn't start thinking about the net run rate. First aim should be whatever Bangladesh make, the first aim should be to try and get past that, irrespective of how many overs it takes. Because if they start obsessing over trying to get there in a specific number of overs, then there's every likelihood that they'll bring some of the Bangladesh bowlers into this particular equation. And on this pitch, I suspect the Bangladesh attack, which is quite spin heavy, will also enjoy themselves. There's a lot of experience in their spinners. And just the one experienced off-spinner which they didn't pick today, Sultana Khatun, who has a very good record against India. I was expecting them to perhaps pick her, but they've gone with the combination which won or did the trick against Pakistan in the previous match.
2: जहां तक इस मुकाबले की बात है, टॉस बांग्लादेश ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. दिलारा अख्तर और जुआरिया फिरदौस ने पारी की शुरुआत की. जल्दी आउट हो गई अख्तर, जिन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और रेणुका सिंह की शिकार हुई. शिचरणी ने उनका कैच लपका था. उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई 50 से अधिक रनों की फिरदौस और शोभना मुस्तारी के बीच में. दूसरा विकेट बांग्लादेश ने जब गंवाया तो वो विकेट था फिरदौस का, जो 33 रन बनाकर आउट हुई. अच्छी पारी उन्होंने खेली, 31 गेंदों में 5 चौके उन्होंने लगाए थे, 106.45 की स्ट्राइक से रन रेट बनाए. और उसके बाद शोभना मुस्तारी तीसरा शिकार भारत के लिए हुई और भारत की तरफ से उनको राधा यादव ने आउट किया. दीप्ति शर्मा ने उनका कैच लपका था. 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, 2 चौके लगाए थे. इस समय क्रीज पर कप्तान निगार सुल्ताना और उनके साथ शर्मिन अख्तर दोनों इस समय बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं और इस पहली गेंद का नए ओवर की शुरुआत कर रही हैं श्रीचरणी के शर्मिन, और इस गेंद को स्वीप किया है स्क्वायर लगन पार के पीछे की तरफ. एक रन और जोड़ने में कामयाब रही है इस नए ओवर की पहली गेंद पर. स्कोर बढ़ता हुआ 97, 3 विकेट के नुकसान पर. 15वां ओवर शुरू हुआ है. अभी भी बहुत सारे ओवर बचे हुए हैं बांग्लादेश के लिए, और इस अंदाज में अगर बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करती रही, विकेट सुरक्षित रहे, तो 150 तक बेस स्कोर जा सकता है. दूसरी गेंद इस बार धीमी रफ्तार की गेंद, हवा में थोड़ी सी ज्यादा गेंद को छोड़ा था इस मौके पर श्रीचरणी ने, और अंत में सिर्फ आगे आकर बल्ले को दिखाते हुए मुंह उसका खोलते हुए सामने की तरफ खेला. कोई रन इस मौके पर नहीं बनेगा. अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को खेला है सामने की तरफ सुरक्षात्मक तरीके से फॉलो थ्रू में. 7 से 14 ओवरों के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 56 रन बनाए बांग्लादेश की टीम ने और 2 विकेट गवाए थे. धन्यवाद स्कोरर हमारे वेंकट बाला रेड्डी इस जानकारी के लिए. अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से गेंद की पिच तक नहीं पहुंच सकी. अंत में बल्ला भर अड़ाया, अंदरूनी निगी किनारा लिया इस गेंद ने बल्ले का,

0: तक भारत ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। शिफाली वर्मा, रेणुका सिंह, श्रीचरणी, नंदिनी शर्मा, दीप्ति शर्मा और राधा यादव। नए ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पर ही भारत को सफलता मिली है। राधा यादव ने बल्लेबाज को निमंत्रण दिया आगे निकलने का। इस मौके पर कप्तान निगार सुल्ताना क्रीज से बाहर निकली बड़े स्ट्रोक के लिए, पूरी तरह से लाइन को चूकी और विकेट के पीछे ऋचा घोष ने कोई गलती नहीं की। स्टंप बिखेर दिया, गिल्लियां बिखेर दी, फ्लाइट से पूरी तरह से इस मौके पर चकमा खा गई और भारत के लिए चौथी सफलता एक अहम मौके पर।
1: या दिस वाज दैट इंटेंट, दैट अग्रेसिव इंटेंट शोन बाय द स्किपर लुकिंग टू स्किप डाउन द विकेट, बट राधा मे हैव स्पॉटेड दैट, जस्ट फायर्ड इट इन अ लिटिल क्विकर, लिटिल वाइडर, एंड दैट्स व्हाट मेड द डिफरेंस। शी मिस्ड इट ऑल टुगेदर, sweeping it under the bat, and she goes for 32 from 27. It's been quality innings, but the first mistake has led to her wicket, and it's a smart bit of keeping and stumping as well from Richa Ghosh. And now that she is gone, a lot of responsibility now on the remaining batters to try and get them to somewhere in the vicinity of 140, even a 135 from here looks like it could be a good total. But this has probably meant the difference between 140 and 150. Had Nigar Sultana Jyoti been out there, the chances of that extra 15 or 20 runs would always have loomed over the Indians.
0: निश्चित रूप से यहाँ पर एक मौका जरूर इस विकेट के बाद बांग्लादेश ने गंवाया है। कप्तान का आउट होना परेशानी का कारण बन सकता है और वो जो रन है 10 से 15 रन पीछे रह सकती है बांग्लादेश की टीम। और अगली गेंद को इस बार नई बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेला एक रन के लिए। शोरना अख्तर नई बल्लेबाज आई और इस एक रन से अपना खाता खोला। स्कोर बढ़ता हुआ 107 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शर्मिन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी अब आन पड़ी है। इस बार उन्होंने लेग स्टंप की तरफ हटकर थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाई थी, खेला इस गेंद को स्वीपर कवर की तरफ, एक रन इस मौके पर उनको मिला है और इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 108 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव की अच्छी गेंदबाजी अभी तक भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज, हालांकि एक कैच आज भी उनसे छूटा था, लेकिन उस दबाव से बाहर निकलते हुए दो सफलताएं अब तक अर्जित की। अगली गेंद को इस बार लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, एक रन दूसरे रन के लिए पलटना चाहती थी, लेकिन फील्डर तेजी के साथ इस गेंद पर हावी हुई, दूसरे रन की संभावना को तत्काल समाप्त किया। इस एक रन से स्कोर हो गया 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राधा यादव को थोड़ी सी मदद मिली है, जब गेंद को उन्होंने हवा में छोड़ा है, फ्लाइट दी है, तो टर्न भी थोड़ी बहुत उनको हासिल हुई है। इस बार लगभग फुल टॉस गेंद, ड्राइव किया, एक रन और आता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर 110 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सफलता अर्जित की थी और अभी तक स्कोर 110 हुआ है। एक गेंद अभी भी इस ओवर की आनी बाकी है। इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से खेला, एक रन के लिए भागी गेंदबाज, खुद पहुंची गेंद तक, थ्रो किया स्टंप की तरफ, लेकिन स्टंप पर गेंद टकराई नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में दोनों बल्लेबाज। इसके साथ ही 17वें ओवर की समाप्ति, स्कोर 111 है 4 विकेट के नुकसान पर। रन रेट इस समय बांग्लादेश का 6.53 का, और ये जो विकेट गंवाया बांग्लादेश ने पिछले ओवर में कप्तान का, ये कुछ रनों में कटौती कर सकता है बांग्लादेश के लिए।
1: इट सर्टनली कुड एब्सोल्युटली, बट लेट्स नॉट फॉरगेट शोरना अख्तर इज द प्लेयर इन फॉर्म इन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। स्कोर 39 नॉट आउट फ्रॉम 22 बॉल्स, जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज, प्राइमरीली प्लेज एज अ लेग स्पिनर बट हैज द एबिलिटी टू हिट इट लॉन्ग एंड वाइड, एंड दैट्स व्हाट द इंडियंस मस्ट बी वेरी ऑफ। एंड हु न्यू, राधा यादव रिस्टोर्ड टू द टीम टुडे, इज करंटली द बेस्ट बोलर विथ 2 विकेट्स अगेंस्ट हर नेम। Those wickets coming of Shobana Mustari for 22 and Nigar Sultana Jyoti, the skipper, for 32. One of them caught by Deepti Sharma and the other stumped by Richa Ghosh. So India, in spite of some lapses in the field, now seem to have got their house in order as Deepti Sharma now comes in for her third, or for, rather for her fourth and final over the 18th of the innings. Perhaps we'll be looking to finish with seam then, with one over each left for Renuka as well as Nandini after this. This one was played in towards deep mid-wicket, which picks up another single and takes the score with that particular single along to 112. Now for those loss of 4 wickets that they have lost in the past. 112 for 4, 17.1 overs bowled. The maximum that they've ever managed against India was 142, but that was chasing one of those 2 victories, or one of those 3 victories that they have had against the Indians in this format. That was in the 2018 Women's Asia Cup. Next ball played away on the onside, picks up a single. The boundaries certainly have dried up, almost 4 overs since the last boundary was scored, and that's meant that the Indian discipline has been in evidence, especially from the bowlers, and the spinners in particular doing a very good job. Deepti Sharma into her fourth and final over, none

0: for 16 from her. Radha Yadav 2 for 15 from her 3 overs. And N. Sricharani 3 tidy overs for 18 runs. No wickets taken. Next ball played away on the onside, but Deepthi is very quick across the turf. Very good fielder as it is, but especially of her own bowling. Gets across to it and makes sure that there's no possibility of any runs. If there are no wides or no balls, there are still 15 balls to come. And how well can Bangladesh maximize this? Oh no, in the meantime, another no ball signaled, which will mean that despite a dot ball, it is a free hit now for Shorna Akhtar. And she needs no second invitation, but this will probably just help her free herself up a little bit more. The youngster, the teenager, 19 years of age, takes strike. Skips down the wicket, plays it away on the offside, and it's just got in through the infield, and this is running away for a four after a long time. India have bowled a few no balls, and this is the first one perhaps which has been properly punished.
1: बिल्कुल, और खास तौर पर दीपी शर्मा का ये दूसरा नो बॉल था, और इस मौके पर जरूर फायदा उठाने में बांग्लादेश की बल्लेबाज कामयाब रही हैं.
0: Shorna Akhtar is a danger woman in this situation because she can wield the long handle effectively, as she showed. She was able to access the offside with a strong ring of fielders. This time looking to go leg side with the turn and plays it away on the onside. Wants to, but very quick fielding yet again from the Indians. N. Sricharani was very quick to get across from square leg. And that single takes the score along to 119 in the process. 119 for 4 at the moment. And thanks to that no ball, this is turning out to be a remarkably good over from the Bangladeshi perspective, because they've already picked up 8 runs and there are still 2 balls, legal balls to come. Deepthi round the wicket, worked away on the onside, almost returning to her on the bounce. And then she whips in a throw at the striker's end, almost as if to tell Sharmeen Akhtar that there's no getting away from me. Let's not think about pinching a single of that one. Last ball of the spell from Deepthi. Remember, poised on 355 international wickets, needs that one wicket to move ahead of Jhulan Goswami, but looks like the legend will hold on to that record, joint record, for the moment, unless something happens of this last ball. Deepthi comes down the wicket, just past Deepthi, and this has been struck nicely enough, but it won't run away for four, because Jemima Rodriguez is very good to clean up and restrict the scoring to just one. 120 for four, 18 overs bowled, just 2 overs to come.
1: तो 2 ओवरों की बल्लेबाजी और बांग्लादेश की टीम को करनी है, और इस समय बांग्लादेश की टीम अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है. रनों के लिहाज से अगर बात करें, 120 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर. दीप्ति शर्मा को इस मैच में कोई भी विकेट नहीं मिला. 4 ओवरों की गेंदबाजी उन्होंने कर ली है, जो अधिकतम गेंदबाजी की जा सकती है. 23 रन खर्च किए, कोई सफलता उनके खाते में आई नहीं. इकॉनमी उनकी 5.75 की रही. राधा यादव सबसे सफल गेंदबाज, 3 ओवरों में 15 रन देकर उन्होंने 2 विकेट लिए हैं. लेकिन अब जो ये नया ओवर होगा, 19वां ओवर बांग्लादेश की पारी का, ये जिम्मेदारी किसके कंधे पर होगी? क्या राधा यादव पर दाव लगाएंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर? ये देखना दिलचस्प होगा इस समय, क्योंकि अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो उसमें रेणुका सिंह ठाकुर का ओवर भी बचा हुआ है और नंदिनी शर्मा का भी ओवर बचा हुआ है. तो इंतजार इस बात का कि गेंदबाजी किसके हाथों में सौंपी जाती है. शर्मीन अख्तर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर खेल रही हैं, और शोरना अख्तर ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं. कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता इस समय बांग्लादेश के लिए, अगर उनको स्कोर को 230 से 240 के बीच में कहीं पहुंचाना है. 250 का लक्ष्य अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां से 2 ओवरों में 30 रन बनाने होंगे अगर 250 तक पहुंचना है, और 15 रन प्रति ओवर थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर लग रहा है.
0: एब्सोल्युटली, इट लुक्स लाइक इट विल प्रोबब्ली बी इन द विसिनिटी ऑफ 130-135 एट द मोमेंट, एंड दैट विल बी अ गुड टोटल कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बांग्लादेश लाइज इन स्पिनर्स. हाउएवर, इंडिया हैज अ पावर पैक्ड बैटिंग लाइनअप एज वेल, मेक नो मिस्टेक. इन दैट टॉप 6 और टॉप 7 देयर आर एटलीस्ट 6 प्लेयर्स हु हैव मोर देन 1000 रन्स इन दिस फॉर्मेट.
1: और नए ओवर की शुरुआत, और पहली गेंद पर ही भारत को क्या यहां पर कामयाबी मिली है. अगली गेंद की तैयारी, और इस गेंद को खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए. 122, 5 विकेट के नुकसान पर. 3 के साथ ये रन पूरा किया. थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर हुई थी, लेकिन तेजी के साथ रन के लिए भागी। 122 सातवीं विकेट के नुकसान पर 19वें ओवर की यह दूसरी गेंद, हवा में इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर वहां पर थी।

0: लेकिन अनुमान उतना सही था नहीं। एक रन और फिर दूसरे रन के लिए भी तेजी के साथ पलटी, दो रन और इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 124, पांच विकेट के नुकसान पर। राधा यादव के हाथ में ही गेंदबाजी है, राधा की अगली गेंद को इस बार खेला है ऑन साइड में, फील्डर पहुंच पाएंगी क्या? नहीं, जी नहीं, इस मौके पर नहीं पहुंच पाए, चार रन आता हुआ।
1: ये लगा आभा का चौका।
2: It looks like an interesting decision because from the look of things, Sharmeen Akhtar has been retired out. So that has meant that Ritu Moni has come in and she's been more than effective. 8 of 3 balls. So perfect start for this little cameo from Ritu.
0: जी हाँ, तो एक विकेट हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश ने गेंदबाज के जरिए नहीं गंवाया बल्कि रिटायर्ड आउट हुई हैं बल्लेबाज। अगली गेंद और इस बार स्टंप्स पर जाकर सीधी टकराई है गेंद। एक और सफलता इस समय राधा यादव के लिए, भारत के लिए एक और कामयाबी और बांग्लादेश ने इस बीच अपना छठा विकेट गंवाया।
2: Radha firing it in. She's done this well. She's actually stuck to this fuller length, almost a block hole delivery. And Ritu Moni was just looking to make some room and access the offside. But as a result of the accuracy of the ball, it's the old dictum, you miss, I hit. And that's exactly what happened. A little bit of turn and that put paid to all hopes of Ritu. But she's done a good job. She's scored 8 of 4. And it's just the kind of finishing kick which this Bangladesh innings needed as the 6th wicket falls eventually for 128.
0: तो रितु मुनि इस गेंद को यॉर्क करा बैठी और अपना विकेट उन्होंने गंवाया है। बहुत जोरदार वापसी भारत की कुल मिलाकर। हालांकि रन पिछले 5 ओवर में बांग्लादेश ने तेज गति के साथ बनाए हैं, 42 रन बनाए हैं, 3 विकेट भी गंवाए हैं। इस वजह से थोड़ा सा दबाव बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर। क्या लक्ष्य होगा भारत के लिए इस मुकाबले में, ये देखना दिलचस्प होगा। शोरना अख्तर अभी भी मैदान पर मौजूद हैं, 7 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। नई बल्लेबाज राबिया आई है मैदान पर, राधा यादव की गेंदबाजी का सामना करेंगी। 3 विकेट ले चुकी है राधा यादव। अगली गेंद इस बार स्वीप किया है इस गेंद को बैकआउट स्कारले की तरफ, फील्डर पीछे मौजूद हैं, एक रन जरूर मिलेगा। और इस एक रन से खाता खोला नई बल्लेबाज राबिया ने और स्कोर बढ़ता हुआ 129, 6 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी जो एक लक्ष्य माना जा रहा था कि हो सकता है इस मैदान पर कठिन 130 135 के आसपास का, उस तरफ तो बांग्लादेश की टीम पहुंच गई है। उनकी गेंदबाज कितनी प्रभावी रहेंगी भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी के खिलाफ, यह देखना होगा। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को हवा में खेला था, मिस फील्डिंग या कहें कि गेंद तक पहुंच नहीं सकी, 4 रन।
1: ये लगा आभा का चौका।
0: मिड ऑफ पर जो खिलाड़ी मौजूद थी, लगभग उनके हाथों में गेंद पहुंच गई थी, डाइव जरूर लगाई इस गेंद के पीछे लेकिन पहुंच नहीं सकी, लगभग उनकी उंगलियों को छूते हुए गेंद पहुंची 4 रन के लिए।
2: And this is why somebody like a Shorna Akhtar is so useful for these particular situations because she can be unpredictable as a batter. We have seen 2 of those boundaries in that similar position, just coming down the wicket and then making sure that she pierces the offside field with a lot of power. And it was that power and the placement which completely foxed Deepti Sharma, who was fielding at that mid-off position, diving away to her left but in vain. So Radha Yadav finishes her 4 overs, outstanding effort from her, 3 for 28 from her 4 overs. The other bowlers to have bowled out Deepti, none for 23 from 4. And apart from that, Nandini, N. Sricharani, Renuka, all with 3 overs against their name, and Shefali Verma with 2. So the big question will be who comes back for that final over. Maybe Sricharani, considering she has been the form bowler. And indeed, the ball has been handed to her, but it also hands the opportunity to the Bangladeshis to perhaps go for a few big shots against spin. It's Rabia, who herself is a leg spinner, now goes for the sweep of the very first ball, nails it straight towards Radha Yadav, fielding at deep backward square leg. 1 of the first over, first ball of the last over. 134 for 6, Rabia on to 2 from 2 balls and brings Shorna Akhtar back on strike, 13 from 8 inclusive of those 2 outstanding boundaries that we saw right through the offside. 6.99 the current run rate, they'll be quite pleased with it, Bangladesh. It sees them on course to reach that 140 mark, which we have mentioned a few times on this commentary. Whether that is enough or not, time will tell. But as a fielding side or as a captain, Nigar Sultana Jyoti will be very happy with the kind of start that they've made after winning the toss and batting. Sricharani comes in again, looks for the Yorker, but it's very well bowled. Shorna Akhtar was making room away on the offside, on the onside rather, and because of that, she almost accessed too much room and ended up playing it straight towards point.

0: कप्तान निगार सुल्ताना के 32 रन और ओपनिंग बैटर फिरदौस के 33 रन की बदौलत बांग्लादेश ने भारत को लक्ष्य दिया है 137 रनों का। नमस्कार, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरी को होस्ट दर्पण तिखिया
1: और हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा मौजूद है। चेतन, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका।
2: धन्यवाद।
1: विजय भैया हमारे साथ मौजूद है जो एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और आजकल आपको कोचिंग के रूप में एक बतौर एक कोच T20 सर्किट में बड़े सक्रिय नजर आते हैं, कॉमेंटेटर है, ब्रॉडकास्टर है और आज हमारे एक्सपर्ट पैनल में मौजूद है। विजय बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: शुक्रिया।
1: और साथ साथ जाने माने खेल पत्रकार शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है। शशांक बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद।
1: सो 136/8 इज व्हाट बांग्लादेश हैव मैनेज्ड। चेतन, सबसे पहले आपके तरफ, योर फर्स्ट रिएक्शंस टू दिस स्कोर एंड हाउ द इनिंग्स पैंड आउट।
3: देखिए, अगर आप बात करें, बीच में एक आधा बॉलर तो ऐसा होता है जो रन ज्यादा लौटाता है। अगर आप बात करें, नंदनी काफी एक्सपेंसिव आज रही, लेकिन जैसी फील्डिंग भारतीय टीम की थी, अगर आप 136 की बात करें, 137 का टारगेट है, ये कम से कम 115-120 के आसपास का टारगेट होता है अगर सारे कैचेस पकड़े जाते हैं। देखिए, कैचेस विन मैचेस, ये हर समय कहा जाता है, कैचेस ही हैं, विकेट्स गिरेंगी, रनों पे अंकुश लगेगा। तो आज मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी फील्डिंग से बिल्कुल नाखुश होगी। न्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी भारतीय टीम ने कैचेस छोड़े थे, हमने देखा नतीजा क्या हुआ और आज हमने कैचेस छोड़े हैं और कोई एक दो कैचेस नहीं, मैं कहता हूं पूरा बैग भर के आज कैचेस छोड़े हैं। एक हो मतलब चार गेंदों में आपने तीन कैचेस छोड़ दिए, तो वो कहीं ना ड्रेसिंग रूम में चीजें जाती हैं, वो आपको आपके बैक ऑफ योर माइंड रहती है। जिसने कैच छोड़ा वो अगर बल्लेबाज है तो उसको वो चीजें अफेक्ट करती है। लक्ष्य 136 रन, 137 का टारगेट, भारतीय टीम आराम से इसको पूरा कर ले।
0: जी बिल्कुल, ड्रॉप कैचेस भारतीय टीम के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय है। लेकिन विजय, एक जो पॉजिटिव आज देखने को मिला है वो है राधा यादव की वापसी। अपने पहले ही मैच में उन्होंने तीन विकेट, वो भी तीन इंपॉर्टेंट विकेट, पहला शोभना मस्तारी का, उसके बाद कप्तान निगार सुल्तानी का विकेट और फिर बाद में रितु मोनी का विकेट। शानदार कमबैक,
4: बहुत ही बढ़िया कमबैक। और आई थिंक ये एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उनका प्रदर्शन हमेशा बहुत बढ़िया रहता है और इसी वजह से शायद जो भारतीय थिंक टैंक है उन्होंने ये सोचा होगा कि आप एक उस खिलाड़ी को जिसका कॉन्फिडेंस एक पोजीशन के खिलाफ बढ़िया रहता है उनको आप ये मौका दें। लेकिन एक और चीज की फिर से यहाँ पे पुष्टि हुई है कि एक स्पिनर को खिलाया गया इस मैच में, जो इस टूर्नामेंट में उनका पहला मैच है, वो आके अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप बोलिंग कार्ड की तरफ नजर डालेंगे तो दो मीडियम पेसर्स आपके आपको वहां दिखेंगे जिन्होंने अपने चार ओवर पूरे नहीं किए, तो जो चिंता का सबब आपके लिए बना हुआ है आज, वो प्रेशर जो आप हम बात कर रहे हैं, वो पहले 6 ओवरों में बहुत बढ़िया बैटर्स ने जो थे बांग्लादेश के, उन्होंने भारतीय टीम के ऊपर डाला। मुझे लगता है कि अगर आप मैच शुरू होने से पहले उन्हें इतने रन देते तो शायद वो ले लेते, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी थी जहां पर वो ये डिसअपॉइंटेड होंगे कि उन्होंने 150 का आंकड़ा पार नहीं किया।
1: और इसी चीज की हम चर्चा पहले प्रोग्राम में भी कर रहे थे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि 16 खिलाड़ियों का इस्तेमाल भारतीय टीम अभी तक इस टूर्नामेंट में कर चुकी है, 15 का स्क्वाड होता है, श्रियंका पाटिल चोट के चलते बाहर हो गई, 16 खिलाड़ियों का प्रयोग भारतीय टीम कर चुकी है। और शशांक, हमने देखा कि कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने अपने 15 के 15 खिलाड़ी अभी तक इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल किए हों, कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि शायद अभी भी हम खोज कर रहे हैं उस परफेक्ट कॉम्बिनेशन की।
3: डेफिनेटली बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। इससे ये भी पता चलता है कि प्रिपरेशन के लेवल पे कुछ कमियां रह गई थी, सिलेक्शन और प्रिपरेशन और एक वेल इंटीग्रेटेड विजन के साथ इस टूर्नामेंट में हम शायद नहीं आ पाए।

या पहले मैचेस में खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो था उम्मीद से नीचे रह गया, तो ये तय बात है कि आप इतने सारे खिलाड़ियों को खिला रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, मिक्स एंड मैच कर रहे हैं, तो एक तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी घटता है, दूसरा

0: कई बार वो ब्रेक होता है। तो कुल मिलाकर के ये कहीं से भी आदर्श स्थिति नहीं है और चैंपियन टीम्स इस तरह से तो डेफिनेटली नहीं उतरती है मैदान में।
1: जी चेतन, आपने बात करी क्योंकि ड्रॉप कैचेस हमारी फील्डिंग की, लेकिन तारीफ करनी होगी बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना की भी। कई सारे रिकॉर्ड्स हैं T20 में उनके नाम, बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड उनके नाम है, सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, और T20 में शतक जड़ने वाली पहली बांग्लादेशी खिलाड़ी भी हैं वो।
2: देखिए, आज 32 रन बनाए और अगर हम उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो 118 के स्ट्राइक रेट से जब आप रन बनाते हैं वहां से आप अनुमान लगा सकते हैं मिडिल ऑर्डर की तरफ से रन बने हैं। देखिए, हर समय कहते हैं कि अगर ऊपर से अगर आपको रन ना मिले, जैसे पहली विकेट 8 रन पर गिर गई थी, उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी की जरूरत थी, साझेदारियों की जरूरत थी। साझेदारियों को आप बुनेंगे तभी आप मैच में आगे जा पाएंगे। और आप बांग्लादेश की बैटिंग देखें, नंबर 2, 3, 4 सबने आके रन बनाए हैं, बेशक 33, 22, 32। तो अगर आप उस स्थिति में टीम को लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे विजय ने भी कहा कि 15 रन 14 और 15 रन, 150 साइकोलॉजिकल आपके मतलब जहन में चीज चलती रहती है कि 150 का टारगेट है, बट 137 जो चेज करना है वो भी चीजें इतनी आसान होगी नहीं। देखिए, बनाना पड़ेगा, उन्होंने रन ऑन बोर्ड लगा दिए हैं, आपको करने पड़ेंगे, और चेज हर समय प्रेशर में चीजें आसान नहीं होती। तो लेट्स होप एक अच्छी साझेदारी ऊपर से पन पे अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे मिडिल ऑर्डर के लिए, यू विल डेफिनेटली विन दिस गेम।
3: मैं एक बार जी चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बांग्लादेशी कप्तान के बारे में बात करी, कुछ लोग कप्तान होते हैं और कुछ लोग नायक होते हैं, ये उनमें से है। इनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो इनका रोल सिर्फ वही नहीं है जो फील्ड में नजर आता है, इनका रोल फील्ड के बाहर भी है। कुछ ऐसे खिलाड़ी रहते हैं जो आप जिनको आप आदर्श मानकर वो इंस्पायर करते हैं। तो अगर बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट के बारे में आप बात करेंगे तो ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी यंग लड़कियों को वहां पर इंस्पायर किया है इस गेम को खेलने के लिए। तो इनका जो कद है वो और ज्यादा बड़ा है उनके ड्रेसिंग रूम के अंदर, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर भी जब आप बात करते हैं कुछ नायकों की तो उनका वहां जिक्र होता है, ये उस तरीके की खिलाड़ी है।
1: जी, नायकों पर हम फिर से आएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अपना नाम बताएं और आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
4: जी नमस्कार, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ, अभिलाष टोली।
1: जी, अपना सवाल पूछे।
4: जी, मेरा सवाल है कि भारत की फील्डिंग में और सुधार की जरूरत, मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखिए फील्डिंग आज के जिस तरह से ड्रॉप करें तो बैलेंस को और भी आगे ड्रॉप करना संभव होता, लेकिन और इस मैच के बाद जो भारत का 2.5 जो मैच है रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो मैच कितना इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे साउथ अफ्रीका भी अपनी तरफ से सेमी फाइनल की जगह बनाने की कोशिश करेगी, वहीं पर भारत को भी अगर ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए तो भारत के लिए आगे जाना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस मैच से क्या मतलब कि रन रेट से कुछ अंतर पड़ सकता है, इसमें फर्क पड़ेगा।
5: जी, तो भारत ने कैच ड्रॉप किए लगातार ये चर्चा का विषय है, और शशांक आपकी तरफ आऊंगा मैं। पहले 6 ओवर में हमने देखा 4 कैच ड्रॉप हुए, पाकिस्तान के खिलाफ भी 3 कैच ड्रॉप हुए थे। कैसे देखते हैं आप इसको, और ऐसे में फील्डिंग कोच की भूमिका को कैसे देखते हैं?
0: ये बड़ा दिस इज रियली ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक भारत की टीम डेफिनेटली 3-4 जो बड़ी टीम्स हैं महिला क्रिकेट में वर्ल्ड में, उनमें से एक टीम है, इस प्रकार की फील्डिंग का प्रदर्शन जो है, मुझे लगता है कि पहले भी कैचेस छूटते हैं मैचेस में और मिस फील्डिंग्स होती है, लेकिन कंसिस्टेंटली इतना ज़्यादा खराब प्रदर्शन, साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी राघव यादव जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं उन्होंने 2 कैच छोड़े थे, और आज भी उन्होंने एक आसान सा कैच छोड़ा, तो और बहुत सारी मिसफील्डिंग्स हुई। तो इससे ये क्यों हो रहा है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगता ही है फील्डिंग कोच पे, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर्स हैं, अनुभवी खिलाड़ी हैं, बड़े मैचेस का इनको अनुभव है, तो ये और ये एक ऐसी टीम से खेल रही हैं जहां पे इनके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं है, दे आर बिग फेवरेट्स टू विन दिस मैच, और बांग्लादेश को 23 में 20 मैचेस में हराया हुआ है इंडिया ने इसके पहले। तो इससे मुझे लगता है कि जिसको डिस्पिरिटेड टीम बोलते हैं ना, डिस्पिरिटेड और ये हारी हुई टीम, जैसे कि इनको लगता है कि अब ये टूर्नामेंट में इनका कोई भविष्य नहीं है, और जो फील्डिंग प्रदर्शन है इस मैच में उनकी बैटिंग पे शायद असर पड़ सकता है, और ये 137 रन जो है वो उतने आसान नहीं होंगे, और यही अगर ऐसा ही प्रदर्शन भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रहा तब तो कोई मतलब क्या कहें, आप समझ सकते हैं।

0: है सबसे अच्छी टीम है
1: जी। तो अपने श्रोताओं को बता दें कि बांग्लादेश के द्वारा बनाया गया भारतीय टीम के खिलाफ ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है टी ट्वेंटी आईज में। तो 137 की चुनौती है, कुछ पॉजिटिव भी हैं डिस्कस करने लायक विजय, फटाफट उन पर नजर डालेंगे। श्री चरणी ने आज एक बार फिर इंप्रेस किया, फिर दो विकेटें ली है और इसी के साथ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के एक संस्करण में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली वो खिलाड़ी बन गई है।
2: पहला वर्ल्ड कप खेल रही है अपने, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप है उनकी तरफ अगर नजर डालेंगे तो वो कौन सी ओवर डालती है, सबसे मुश्किल ओवर आपको डालते हुए नजर आती है,
1: पावर
2: पहले 6 ओवर में डालती है और उसके बाद बहुत कम है वर्ल्ड क्रिकेट में आप देखें कि आखिरी ओवरों में टी ट्वेंटी क्रिकेट के अंदर आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी करते हुए देखें, और वो भी एक ऐसी खिलाड़ी जो अभी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आई है, नंबर वन बॉलर है इस समय टी ट्वेंटी क्रिकेट में। जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें, ये सिर्फ स्किल के बारे में नहीं बताता है, ये इस यंगस्टर के माइंड सेट के बारे में भी बताता है कि वो मानसिक रूप से भी कितने मजबूत है।
3: जी चेतन, अभी बात की विजय ने नायकों की, जैसे आज निगार सुल्ताना की परफॉर्मेंस रही है और पिछले कुछ मैचेस में हम और खिलाड़ियों को देख चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए मारिजान काप ने वो काम किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिस पेरी ने वो काम किया पाकिस्तान के विरुद्ध अपने मैच में। अगर हम बात करें भारतीय टीम की तो भारत की सबसे अनुभवी प्लेयर हरमनप्रीत कौर, 201वां टी20 उनका ये होगा, उनको स्टार्ट हर बार मिल रहा है हम देख रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं एंड शी इज नॉट प्लेइंग हर नेचुरल गेम, एक शेल में दिख रही हैं।
4: देखिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोशिश करते हैं, कोशिशें आपकी कामयाब होती नहीं है। हरमनप्रीत मतलब
5: अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर इंग्लैंड से सीधा प्रसारण। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 8:45 होने को है, आपसे थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.

0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन के शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्से रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्से रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और वाश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागा, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
0: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ

0: किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड 19 आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय हिंदी समाचार। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। आइए अब सुनते हैं ICC महिला T20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का प्रसारण।
3: ऑपरेशंस FIR registered in Ram Mandir donation embezzlement case after recommendation of Uttar Pradesh.
4: 37 रन का लक्ष्य भारत की बल्लेबाजी के लिहाज से बहुत बड़ा नहीं है। वैसे में कप्तान की मौजूदगी अगर मैदान पर नहीं रहती है तो फिर बांग्लादेश की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि वो कैच लपकने की एक कोशिश उन्होंने जरूर की थी, पूरी तरह से हाफ चांस था वो, पूरी तरह से वो कैच नहीं था क्योंकि जो अनुमान लगा रही थी ऑफ साइड में वो जा रही थी, लेकिन वो गेंद बल्ले के अंदरूनी हिस्से पर टकराने के बाद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लेग स्टंप की तरफ जाने लगी और वहां पर जो पूर्वानुमान था उनका उतना सटीक नहीं हो सका। कैच लपकने की उन्होंने कोशिश की, उनका ग्लव्स जमीन पर टकराया और उंगलियां कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशान हुई उनकी, उसमें थोड़ी सी चोट आई है। हालांकि अभी उपचार चल रहा है, कितनी फिट है ये देखना होगा।
5: या 31 विदाउट लॉस, दिस इज स्टिल द थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, अ लिटिल फॉर्टियस विद दैट लास्ट बाउंड्री एंड वन आल्सो फेल्ट दैट परहैप्स देयर वाज एब्सोल्युटली नो बैट, मे बी जस्ट हिटिंग सम फुट मार्क्स एंड जस्ट स्किडिंग थ्रू। Eventually, everything's ready. The next ball driven on the up, and this time the catch has been taken. India suffered their first blow. Smriti Mandana will have to go back. There might be a boundary check for this, but Rabia Khan, from the look of things, has pulled off an absolute blinder for Maruf Akhtar.
4: बहुत बड़ा नुकसान ये भारत के लिए। स्मृति मानधना चल पड़ी हैं पवेलियन की तरफ और भारत को ये संभवतः पहला झटका लगा है। हालांकि अभी अंपायर उस पर निगाह जरूर डालेंगी, कि कैच पूरी तरह से सफाई से पकड़ा गया है या नहीं।

0: लेकिन स्मृति मानधना चल पड़ी हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। अंपायर ने उन्हें रुकने का इशारा किया है, वो अब रुकी हैं और अब तीसरे अंपायर द्वारा यह फैसला दिया जाएगा कि कैच सफाई से पकड़ा गया है या नहीं। स्मृति मानधना ने इस गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किया था, हवा में थी थोड़ी देर के लिए गेंद और बहुत अच्छी फील्डिंग इस मौके पर।
1: एब्सोल्युटली दैट बाउंड्री आल्सो रमेश परब अ स्टैटिस्टिशियन इन्फॉर्म्स अस ब्रिंग्स अप 4500 रन्स फॉर स्मृति मानधना बट द क्वेश्चन इज विल शी ऐड 4502 बिकॉज शी इज गॉन अक्रॉस टू 4501 इन द प्रोसेस। Just outside off, it was driven on the up and Rabia Khan did ever so well. And most importantly, it does look like she's clung on. Absolutely no problems with it. She was at cover. It was traveling fast, but she was very decisive in moving across to it and making sure that she got her fingers right underneath the ball. And that's why Smriti Mandana, you know as a batter often, when you see something being pulled off, you are aware of exactly what has happened. And that's why Smriti Mandana's first instinct was actually to walk off towards the dugout. But just as a formality, the on-field umpire Kim Cotton went across to Anna Harris, who's in the TV umpire's chair, and Anna Harris is about to adjudicate on this soon. But India, from the look of things, have lost their first wicket. Is it a glimmer of hope? Because whatever happens, the only way that Bangladesh can come back into this contest is by picking wickets. Ideally, they would have wanted the wicket of Shefali, but for the moment, if they are able to get Smriti Mandana out as well, that will do their cause a world of good. Just looking over those replays, the first point of contact seems absolutely fine. And to give the fielder some benefit of doubt, it does look like from every angle that she has gotten her fingers across. Whether that's also hit the grass at some stage or not is probably just a small point of contention. But then the TV umpire has to go by whatever is the visual evidence. And we will wait for that evidence, and that evidence is OUT. So the third over concludes. Maroofa Akhtar, who was unlucky in the first over, but this time, thanks to an outstanding catch by Rabia, she has struck, and Smriti Mandana has to go. India's top scorer in this tournament, 159 runs before this, but only 8 today.
0: जी हाँ, आज स्मृति मानधना का बल्ला उतना चला नहीं, उम्मीद थी उनसे बड़ी पारी की, अच्छी लय में लग रही थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच लपका गया। एक बार ये ऐसा लगा था कि कहीं कैच लपकने के बाद जब वो जमीन से उठने की कोशिश कर रही थी, उस गेंद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही थी, क्या वो गेंद जमीन को छू रही थी। लेकिन तीसरे अंपायर ने इस बात की वहां पर तस्दीक कर दी, इस बात की पुष्टि कर दी कि वो गेंद बिल्कुल सफाई से पकड़ी गई थी। और पहले विकेट का पतन भारत के लिए बहुत बड़ा झटका भारतीय टीम को, स्मृति मानधना के रूप में इनफॉर्म बल्लेबाज, और आज उनको 8 रन बनाकर वापस पवेलियन में लौटना पड़ा है। लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है भारत के लिए, अगर वो कैच शेफाली का लपका गया होता तो और भी मुश्किलें भारत की बढ़ सकती थी इस मुकाबले में। इस ओवर की ये पहली गेंद, और इस गेंद को खेला है 4 रन के लिए।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: इस बार इसको लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला, बड़ा और करारा प्रहार इस मौके पर। हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि गेंद में उतनी ज्यादा रफ्तार है नहीं, फील्डर पीछे कोई ज्यादा थी नहीं, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट और बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक 4 रन के लिए। पारी बहुत अच्छी अभी तक रही है शेफाली की, और इस ओवर की शुरुआत उन्होंने 4 रन से की है। इस ओवर की दूसरी गेंद, इस बार बल्ले का मुंह खोलना चाहती थी, धीमी रफ्तार की गेंद थी, रफ्तार से चकमा खा गई, बल्ला अड़ाना चाह रही थी, लेकिन रफ्तार से चकमा खाने के बाद बीट हुई पूरी तरह से इस गेम पर।
1: ऑल्सो धर्मेंद्र, द न्यू बैटर इन इज यास्तिका भाटिया। वी हैव सीन हर जस्ट स्ट्रगल अ लिटिल बिट विद सम ऑफ हर आउटफील्डिंग, एंड इवन हर रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैन बी अ लिटिल डॉजी। आई होप इट डजंट लीड टू अ रन आउट बिटवीन दीज टू, दे शुड जस्ट डील इन बाउंड्रीज।
0: रितु की अगली गेंद इस ओवर की, और इस बार सीधे बल्ले से खेला बॉलर की तरफ वापस, निराश अपने इस स्ट्रोक से इस मौके पर शेफाली वर्मा। उन्हें लग रहा था कि इस गेंद पर कुछ रन आने चाहिए थे, उनको लगा कि अगर और ज्यादा थोड़ा पावर लगाती इस स्ट्रोक के पीछे तो 4 रन भी निकल सकता था, लेकिन कोई रन नहीं इस तीसरी गेंद पर। चौथी गेंद के साथ तैयार रितु मुनि, और इस बार यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको खेला है खूबसूरत तरीके से पॉइंट बाउंड्री की तरफ, फील्डर वहां पर भाग रही, गेंद की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई है, 1 रन और फिर दूसरे रन के लिए पलटी है। 2 रन के साथ शेफाली वर्मा पहुंच गई 28 पर, भारत के स्कोर में और 2 रनों का इजाफा। बढ़िया कैच पकड़ा था उस मौके पर, बहुत ही पूर्वानुमान सही था। हालांकि एक बार ये ऐसा लगा कि शायद

0: running around because she's absolutely bossing the opposition at the moment with the bat. Outside of stump, the first dot ball that she's faced, and it's driven towards cover. So Marufa again going for a few runs in this over, 9 runs of this, 1 for 28 her figures, 2.5 overs. And India coasting along quite nicely, 51 for 1, well ahead of where comparatively Bangladesh were, having registered 40 for 1 from their first 6 overs themselves. So a much more rapid start for the Indians. They've gotten across to that 50 in just 28 balls, says Venkat Bal Reddy. 46 balls were taken by the Bangladeshis. The next ball driven back. Was it a chance? Did Marufa grasp yet another attempt? Only time will tell, but it finishes with a dot ball. 5 overs bowled, 51 for 1. And judging by her body language, Dharmendra, that does look like that's another chance which has gone.
1: Yeah, luck to aisa hi raha hai ki shayad wahan par follow-through mein ek mauka tha. गेंदबाज के लिए मारूफा के लिए, लेकिन गेंद तक वो पहुंच नहीं सकी. और अगर ये विकेट भारत का गिरता तो जिस गति से रन बन रहे हैं, रनों की रफ्तार है, उस पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर लगता. क्योंकि बांग्लादेश ने जहां 44 गेंदों में 50 रन बनाए थे, वहीं भारत ने उसके मुकाबले सिर्फ 28 गेंदों में 50 रन बना लिए हैं. बहुत तेज रफ्तार से इस समय भारत की तरफ से रन बन रहा है. खास बात यह है कि शेफाली वर्मा मैदान पर है, जो बहुत तेज बल्लेबाजी करती है. और पूरे मैच के दौरान जो एकमात्र छक्का लगा है वो शेफाली वर्मा के बल्ले से आया है. और बहुत बड़ा छक्का उन्होंने लगाया था, करीब 70 मीटर के आसपास का वो छक्का था. तो वो जब तक मैदान पर रहेंगी, तेज गति से रन आते रहेंगे. 5 ओवरों के बाद 51 है भारत का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर. और नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल किया है और डीप मिड विकेट पर इस गेंद को फील्ड किया जा रहा है. तब तक शेफाली ने 1 रन लेकर अपना छोर बदल लिया, 35 पर पहुंच गई और भारत का स्कोर हो गया 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर. शांजिदा इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और जो सफलता मिली है बांग्लादेश को वो स्मृति मानधना का विकेट मिला है. बहुत बड़ा विकेट निश्चित रूप से. यष्टिका इस समय स्ट्राइक पर 4 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रही हैं. एक चौका अब तक उनकी इस पारी में आया है. इस गेंद को इस बार क्रीज से बाहर निकलकर उन्होंने खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ. 1 रन उनको भी मिलेगा और इस तरह से स्कोर अब बढ़कर 53 1 विकेट के नुकसान पर. बांग्लादेश और भारत की अंक तालिका की स्थिति को अगर देखते हैं तो अभी दोनों टीमें बराबरी पर हैं. दोनों के कुल मिलाकर 4-4 अंक हैं. दोनों ने 1-1 मैच गंवाया है. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना मुकाबला गंवाया, जबकि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच गंवाया था. इस बीच में एक और गेंद जिस पर कोई रन नहीं आया. भारत ने पाकिस्तान को हराया था 64 रन से, नीदरलैंड्स को हराया था 95 रन से. दक्षिण अफ्रीका से 6 विकेट से हार मिली थी. अगली गेंद को इस बार लॉब किया है लॉन्ग ऑफ की तरफ और गेंद 4 या 6 रन अंपायर के इशारे का इंतजार और अब इशारा आता हुआ 4 रन का.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: बहुत बढ़िया स्ट्रोक इस मौके पर. पूर्वानुमान बिल्कुल सही था शेफाली वर्मा का. क्रीज से बाहर थोड़ा सा अपने कदमों को निकाला, गेंद की फ्लाइट तक पहुंची और फिर खेल दिया अपने सीधे बल्ले से ठीक सामने की तरफ. शेफाली वर्मा का एक और शानदार चौका. ये उनकी पारी का 6 चौका और भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 4 गेंदें अभी तक इस ओवर में हुई हैं शांजिदा के, 2 गेंदें अभी भी बची हुई हैं. कुल मिलाकर 6 रन उन्होंने खर्च किए हैं. अगली गेंद ओवर द विकेट, फिर से लॉब किया इस गेंद को उसी दिशा में, फिर से 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: 2 लगातार चौके दबाए.
0: Absolutely, and taking Shanjiva Akhtar Meghla especially to the cleaners. Even her first over was quite expensive, 12 of it, and now 2 successive boundaries, making this a good over as well. Maximizing the power play, and yet again, Dharmendra, if you notice, straight bat shots. She's not going for anything fancy, just playing with the turn and playing with the angles.
1: बिल्कुल सीधे बल्ले से लगातार वो स्ट्रोक खेल रही हैं. और 62 हो गया भारत का स्कोर इस अंतिम गेंद पर 1 रन के साथ. ओवर की समाप्ति भी, कुल मिलाकर 6 ओवरों की समाप्ति और अभी तक भारत ने 1 विकेट गंवाया और ये दूसरे रन के लिए भी पलटी है. जी हां, 2 रन इस अंतिम गेंद पर. 63 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवरों के बाद.
0: Yeah, what a proper batting masterclass this is from Shefali Verma, and she has been in runs in this tournament. Began with 6 against Pakistan.

0: restricts the run scoring to just one. 65 for one, 6.4 overs bowled. Two singles of this over after two dot balls. Much better pickings from Ritu Moni, who's come back for her second over, the first over producing 11 runs. Still remains to be seen what are the other bowling options and how do they use them. This time it's a lot fuller, straighter, driven down the ground, but good bit of fielding by Maruf Akhtar. Keeps the scoring down to just one. Exceptional, because when she hit it, Yastika Bhatia may have been forgiven for thinking that here are four runs for the taking. It was a crisp drive right down the wicket, but just not able to beat the fielder at long on, diving away to her right, Marufa Akhtar. Three singles of this over, 66 for one, seventh over in progress, one ball left to come as Ritu Moni comes in yet again. Shefali backs away, whacks it towards sweeper cover, picks up a single, four singles of this over, four runs of it, 67 for one, India after seven.
1: 137 रन का लक्ष्य और 67 रन उसके जवाब में भारत ने बना लिए हैं. कुल मिलाकर अभी तक सात ओवरों की समाप्ति के बाद लक्ष्य बिल्कुल आसान सा भारत के लिए दिखाई दे रहा है. लय में दिखाई दे रही हैं समय शेफाली वर्मा, जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है अब तक, और शेफाली 47 रन बनाकर खेल रही हैं. अर्धशतक से सिर्फ 3 रन दूर हैं और दूसरी तरफ उनकी साथी खिलाड़ी यस्तिका भाटिया भी उनका पूरा साथ निभा रही हैं. यस्तिका की कोशिश यही है कि स्ट्राइक रोटेट किया जाए और शेफाली को ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक दी जाए. बहुत ही अच्छी लय में दिखाई दे रही हैं इस समय शेफाली. 27 गेंदों में 47 रन बनाए हैं, 7 चौके, 1 छक्का लगाया है. 174.07 की स्ट्राइक रेट से उनके बल्ले से अभी तक रन आए. दूसरी तरफ यस्तिका भाटिया, जिन्होंने 9 गेंदों में 11 रन बनाए हैं, 2 चौके उनकी भी पारी में हैं. पिछले 5 ओवर्स में भारत ने 45 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत और इस पहली गेंद पर 1 रन आता हुआ, इससे स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अब 69 रन चाहिए भारत को 77 गेंदों में ये मैच जीतने के लिए, यानी 6 रन प्रति ओवर से भी कम की औसत से भारत को रन बनाने हैं. यस्तिका भाटिया इस समय स्ट्राइक पर 48 पर हैं. शेफाली वर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर अगली गेंद को इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ यस्तिका ने. 1 रन के लिए 69 हुआ भारत का स्कोर 1 विकेट पर. और अब स्ट्राइक पर आ गई एक बार फिर से शेफाली वर्मा, अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर हैं. 76 गेंदों में भारत को चाहिए 68 रन. धीरे धीरे भारत लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ. राबिया इस समय गेंदबाजी कर रही हैं और उनके सामने शेफाली. इस बार कट किया बल्कि कवर की तरफ खेला इस गेंद को. फील्डर भाग रही है, कोई फायदा नहीं, 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: एक बार ये ऐसा लगा कि वो कट करने जा रही है गेंद को, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने बल्ले का पूरा मुंह खोला और कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए. इसके साथ ही अर्धशतक पूरा हुआ. 29 गेंदों में 52 रन उन्होंने पूरे कर लिए शेफाली वर्मा ने, और शानदार अर्धशतक दिवायन शेफाली के बल्ले से.
0: एब्सोल्युटली, एंड द वन हु विल बी फीलिंग द पिंच रियली टू प्लेयर्स इन पर्टिकुलर, मारूफ अख्तर एंड मोर इम्पोर्टेंटली निगार सुल्ताना ज्योति, बिकॉज शी वॉज ऑन 4 व्हेन शी वॉज ड्रॉप्ड. इट कुड हैव बीन अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम.
1: इस बार बिट हुई है पूरी तरह से शेफाली. कट करना चाह रही थी अंतिम समय, लेट कट करने का प्रयास था उनका, लेकिन पूरी तरह से बीट हुई. और शेफाली के बल्ले से निकलने वाला ये 50 से अधिक का 18वां स्कोर, अगर अभी तक T20 इंटरनेशनल में उनके प्रदर्शन की बात करती हैं. अगली गेंद को इस बार खेला कवर में, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा. 8वां ओवर चल रहा है भारत का और 73 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर. कुल मिलाकर इस ओवर में 6 रन आए, 1 गेंद अभी भी बची हुई है. और राबिया के सामने शेफाली वर्मा, बार हल्के हाथों से खेला, मिड ऑफ की तरफ, कोई रन नहीं, ओवर की समाप्ति. 8 ओवर के बाद भारत का स्कोर 73, 1 विकेट के नुकसान पर. शेफाली वर्मा 52 पर और दूसरी तरफ यास्तिका भाटिया 12 रन बनाकर खेल रही हैं.
0: A measure of how comfortably India are doing this at the moment at 73 after 8 overs, and Bangladesh had reached 63 for 2 after 10 overs. So India were at that point for 1 wicket less when the power play had ended. So really doing it easy at the moment, and much of it, the credit must go to the way that Shefali Verma has batted. 29 ball 50 and her second 50 of this World Cup after that 55 that she had scored against Netherlands. But the entire dugout, I'm sure, will unanimously say that for this particular innings, keep

0: नीचे आया है विकेट गंवाने के बाद। यस्तिका भाटिया और ऋचा घोष की जोड़ी मैदान पर है। ऋचा घोष को जैसा देवायन ने बताया कि संभवतः इसी सोच के साथ मैदान पर भेजा गया है कि भारत जल्दी से जल्दी इस मुकाबले को समाप्त करना चाहता है ताकि नेट रन रेट और बेहतर हो सके। भारत का नेट रन रेट के मामले में अभी भारतीय टीम दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के बाद, दक्षिण अफ्रीका उससे नीचे तीसरे स्थान पर है। इसी वजह से अंक तालिका में अंक बराबर होने के बाद भी जो है वो भारतीय टीम आगे है।
1: One more catch drop because this was played straight back at Rabia but just not able to hold on. Yastika Bhatia living dangerously.
0: जी हाँ, एक और मौका भारत के विकेट का था। बांग्लादेश की गेंदबाज राबिया के पास फॉलो थ्रू में एक आसान सा मौका आया था। यास्तिका ने सीधे सामने की तरफ सीधे बल्ले से खेला था, आसान सा कैच हो सकता था लेकिन ये मौका हाथ से जाता हुआ। दो कैचेस तो अभी तक बांग्लादेश ने भी कम से कम टपकाए इस बार। इस गेंद को पैडल स्वीप कर दिया है विकेट के पीछे की तरफ और ये 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका।
0: बिल्कुल आसान सी ये गेंद थी यास्तिका के लिए, दिशा से भटकी हुई गेंदबाजी, बढ़िया ओवर की शुरुआत की थी, फॉलो थ्रू में एक मौका आया था और इस बार लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर गेंद। आसानी से इस गेंद को देखा, छोटी गेंद भी थी और पूरा फायदा उठाया, खेल दिया इस गेंद को 4 रन के लिए। इस चौके के साथ अब भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 80 दो विकेट के नुकसान पर। दो विकेट भारत ने दोनों सलामी बल्लेबाजों के गंवाए हैं। पहले स्मृति मानधना का विकेट गंवाया और उसके बाद शेफाली वर्मा आउट होने वाली बल्लेबाज थी। ऋचा घोष ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया है, दो गेंदों का सामना किया जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा वो समय दूर नहीं है जब उनके बल्ले से बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिल सकते हैं। 57 रन अब चाहिए भारत को, 64 गेंदों का सामना करना है। 10वां ओवर चल रहा है भारतीय पारी का। अगली गेंद इस बार कट किया इस गेंद को और तेज गति से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, पीछे भाग रही है तो फील्डर क्या रोक पाएंगी। गेंद की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई है और डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका गया है। 2 रन और फिर क्या ये 30 रन के लिए पलटेंगे? जी हाँ, 30रा रन भी पूरा कर लिया आसानी के साथ। 1 रन जरूर इस मौके पर बचाया फील्डर ने, 3 रन और आता हुआ यास्तिका के बल्ले से। 83 हो गया भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। यास्तिका भाटिया पहुंच गई 15 गेंदों में 21 रन पर। उनकी पारी में अभी तक 3 चौके आए हैं। आज फील्डिंग दोनों ही तरफ से उतनी अच्छी हुई नहीं है, भारत को भी सोचना होगा अपनी फील्डिंग पर ऑस्ट्रेलिया जैसे महत्वपूर्ण मैच से पहले, क्योंकि उस मैच में एक भी मौका गंवाना यानी पूरे मैच का परिणाम बदलने के समान हो सकता है। अगली गेंद इस ओवर की 4थी गेंद और इस गेंद को इस बार खेला है पॉइंट की तरफ, टाइम लगाकर रोकने का प्रयास और गेंद को रोक लिया गया। रन इस मौके पर कोई भी नहीं बनेगा। इस ओवर में अभी तक 7 रन आए हैं, 4 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदें अभी भी राबिया की बची हुई हैं। ऋचा घोष स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदें खेल चुकी हैं, ऋचा के बल्ले से अभी तक कोई रन नहीं आया है। यास्तिका दूसरे छोर से वो काम कर रही है जिस भूमिका के लिए ऋचा को मैदान पर बुलाया गया है। 15 गेंदों में 21 रन बनाए हैं यास्तिका ने। रिक्वायर्ड रन रेट भारत के लिए 5.22 का और वर्तमान रन रेट 8.58 का। अंतिम गेंद इस ओवर की और इसको खेला है ऑन साइड में 1 रन के लिए और फिर दूसरे रन के लिए पलटने का प्रयास लेकिन दूसरा रन यहां पर है नहीं। इसके साथ ही 1 रन और जोड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 84 2 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 8 रन। जिस गति से भारत रन बनाता चला जा रहा है उसको अभी तक लगातार कायम रखने में कामयाबी। इस बार क्रीज से बाहर निकलकर खेलने का प्रयास, खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन और आता हुआ ओवर की समाप्ति। राबिया के इस ओवर में कुल मिलाकर 9 रन आए और भारत का स्कोर हो गया 10 ओवर के बाद 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
1: Much more comfortably placed than what Bangladesh were at this stage. 52 now required from 60. It does look like a mere formality, but they are still offering chances. And you never know, Bangladesh, if they can convert some of those, something could still give for them. But not a surprise to see Richa Ghosh in at number 4, because when she was 16 years of age, she made her T20I debut in February 2020 against Australia in Australia. And in her very first match, the Indian team management thought it fit to send her in at number 3. She played as a specialist batter in that match, only made 17, but showed signs of the kind of courage and the kind of ability that she had. And also came on as an impact sub, or rather a concussion sub, in fact, in that World T20 final that year.

0: offering her any space to work with, because they know that much like Shefali Verma, her fellow 22-year-old, Richa Ghosh also loves feeding off that pace. Both these young superstars making their impression at 16 in that World T20 back in 2020, which was played in Australia. And Shefali Verma's bat throughout made a lot of runs. This time, outside out stump cut away fiercely, all the way for 4 to backward point.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: Just a bit of room on offer, and that's all it takes. Richa Ghosh has very strong wrists, and those came into action and just made sure that she flayed it away. And once she did that, once she found the gap, there was absolutely no way that deep point was catching up with it. Naheed Akhtar was a little unhappy, but she really should be more unhappy about the fact that she was offering width to Richa Ghosh. So that boundary takes India along to 90 for the loss of that those two wickets. The two openers dismissed, Smriti Mandana for 8, and Shefali Verma, after scoring a fantastic 53 from 34 runs, her second half century of this ICC World T20 2026. Outside of some cutaway yet again, finds the gap, threads the needle, 4 more.
1: Ye laga, abha ka choka.
0: And now that Richa Ghosh, Dharmendra, has come to terms with the pace of this wicket, she's figuring out what Naheeda is doing and responding accordingly, playing it very late.
2: बस वक्त की ही तो बात थी, इस बात का पूर्वानुमान था कि जैसे उनको मौका मिलेगा वो मौका गंवाएंगी नहीं, और लगातार दो चौके इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अब उन्होंने पिच के मिजाज को भांप लिया है और इस तरह के स्ट्रोक्स उनके बल्ले से आते रहेंगे.
0: Just 43 runs required now as India move along to 94 for 2, and from 1 from 5 balls she's on 9 from 7. The next ball looks for the sweep. It's a big LBW appeal. It's been given. India immediately review. It did look interesting, but well, it might stay umpire's call. That is the only concern. Otherwise, it seemed like it straightened, but may have been just about impacting somewhere around off stump, if not outside. What do you think, Dharmendra? That was close.
2: Ji, bahut nazdiki ye mamla hai, aur chuki umpire ka ishara aaya hai Bangladesh ke paksh mein, to ye thodi si pareshani ki baat ho sakti hai. Balle ka kinara kya liya hai is gend ne, ye bhi dekhna hoga. बहुत करीब, बहुत नजदीक से बल्ले की गई है गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर भी ऐसा लग रहा है एक बार की कि ये गेंद जा रही थी, ऊंचाई भी थी इस गेंद में. Yeah. अभी तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा.
0: या डेफिनेटली नॉट टेकिंग एनी ऑफ द बैट. इनफैक्ट द बैट मूविंग क्वाइट क्विकली एंड बीटन बाय द पेस ऑफ दैट लैक ऑफ पेस. Richa Ghosh was completely committed to that sweep shot, but the question is, where is that impact and is it actually going on to hit the stumps? The one factor in her favor, as we mentioned before, is that it has already been given out. So if it even as much as just glances a little bit of the off stump, then that will remain out. But there was a shuffle across. For the moment, it does look like the impact is outside off, so it would have gone on and missed the off stump in any case, perhaps. But yeah, impact outside off. India earn a reprieve, and Richa Ghosh given out. LBW at 9. Is spared because of the timely review that she took.
2: जी हाँ, बहुत सही समय पर उन्होंने वक्त गंवाए बिना रिव्यू लिया और उनके पक्ष में गया ये रिव्यू, और इस तरह से जो भारत के ऊपर खतरा मंडरा रहा था वो टल चुका है.
0: नहीं डॉक्टर, इन अ सेकंड ओवर, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम दैट शी हैज ऑलमोस्ट पिक्ड अप अ विकेट, एंड अगेन इट बेग्स द क्वेश्चन, व्हाट वाज शी डूइंग कमिंग इन एज द फिफ्थ बोलर. सो सम स्ट्रेंज डिसीजंस फ्रॉम बांग्लादेश, परहैप्स अ लिटिल बिट टू डिफेंसिव इन देयर ओवरऑल अप्रोच, स्पेशली व्हाइल डिफेंडिंग 137. लास्ट बॉल played back towards the bowler, and she does a great job diving away to her right and making sure that there's no runs on offer. 11 overs bowled, 94 for 2 India.
2: तो ये ओवर काफी कुछ घटनाओं भरा रहा. एक ऐसा मौका भी आया जब रिचा घोष को अंपायर ने आउट करार दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, और उस रिव्यू में ये साफ तौर पर सामने आया कि इंपैक्ट जो था गेंद का वो ऑफ स्टंप के बाहर था, और रिचा घोष बच गई. हालांकि अंपायर का फैसला बांग्लादेश के पक्ष में जरूर गया था, लेकिन इंपैक्ट की वजह से रिचा घोष मैदान पर अभी भी मौजूद है, और भारत का स्कोर 94 रन 2 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स के बाद. रन रेट अभी भी भारत का 8.54 का, रिक्वायर्ड रन रेट 5 से भी नीचे आता हुआ 4.77 का, और अंतिम जो 5 ओवर रहे हैं भारत के लिए उसमें 31 रन आए हैं, 1 विकेट का नुकसान हुआ है, और वो विकेट था शेफाली वर्मा का. 2 विकेट पर 94 रन बनाए हैं. नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस गेंद को लॉब किया है सीधे फील्डर के हाथों में, ये गेंद जाकर समाई है. ये

0: नुकसान भारत के लिए बहुत बड़ा। यस्तिका भाटिया का विकेट भारत ने इस मौके पर गंवाया है। क्रीज से बाहर निकलकर इस गेंद को मिडऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास था। रितु मोनी ने चतुराई भांप ली थी बल्लेबाज की, गेंद की लंबाई को थोड़ा छोटा कर दिया, गेंद तक पहुंच नहीं पाई बल्लेबाज और सीधे एक आसान सा कैच पकड़ा गया मिडऑफ पर। इस तरह से भारत के लिए तीसरे विकेट का नुकसान 94 पर और यस्तिका भाटिया इस समय मैदान से बाहर जा रही हैं। 18 गेंदों में 23 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, लेकिन भारत के लिए एक बढ़िया पारी खेल रही थी। उनके विकेट के पतन से निश्चित रूप से जो रनों की गति है उस पर असर पड़ सकता है और भारत का जो लक्ष्य है इस समय कि न सिर्फ मैच को जीता जाए बल्कि रन रेट, नेट रन रेट जो है उसको और बेहतर किया जाए, उस पर थोड़ा सा विराम लग सकता है।
1: एब्सोल्युटली, यस्तिका भाटिया अगेन जस्ट प्रॉमिसिंग अ लॉट बट डिलीवरिंग नॉट इनफ, 8 of 2 एट वन स्टेज, सो कॉन्सिक्वेंटली शी फेस्ड अनदर 16 बॉल्स एंड शी वाज ओनली एबल टू ऐड 15 रन्स टू दैट, एंड दैट सम्स अप सम ऑफ द इश्यूज दैट शी हैज हैड इन हर करियर इन T20 क्रिकेट। इट ब्रिंग्स इन जेमिमा रॉड्रिग्स दो, and I just think even though she's coming at number 5, she's probably best suited to bat at number 3. If you recall in the 50 over World Cup as well, India played its best cricket when Jemmy Rodrigues came in at number 3.
0: aur uski wajah shayad ye ho sakti hai piche bhejne ki ki is tournament mein unki form utni achhi rahi nahi hai, is baar gend ko drive kiya unhone long off boundary ki taraf, ek run ke liye khata khola जेमिमा रॉड्रिग्स ने और इस एक रन से भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सफलता निश्चित रूप से बांग्लादेश की उम्मीदों को बढ़ा रही है, 3 विकेट उन्होंने लिया है। इस मैच में संभावनाएं उनके लिए तभी बनती हैं जब वो लगातार विकेट लेते रहें और आश्चर्यजनक कोई परिणाम उनके पक्ष में। गेंद को कट करने का प्रयास किया था रिचा ने लेकिन गेंद बल्ले से काफी ज्यादा दूर थी, थोड़ी सी नीचे भी रही और पूरी तरह से चकमा खा गई ऋचा घोष। 10 गेंदों में 9 रन बनाकर खेल रही हैं, एक बार फिर से अंपायर से स्टांस ले रही हैं अपना और अब खेलने के लिए तैयार हो रही हैं। लेग स्टंप का स्टांस उन्होंने लिया है, जगह चाहती हैं ऑफ स्टंप के बाहर कि मिले उनको और कोई बड़ा स्ट्रोक वो लगा सकें। उनकी बल्लेबाजी की शैली भी यही है, बड़े स्ट्रोक्स लगाती हैं, तेजी से रन बनाती हैं और अब अगली गेंद का सामना करेंगी रितु मोनी की अगली गेंद और इस बार इस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 1 रन आसानी से फील्डर पीछे मौजूद है। इस 1 रन से स्कोर अब भारत का हो गया है 96 3 विकेट के नुकसान पर, जो भारत ने 3 विकेट गंवाए। दोनों सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना, शेफाली वर्मा और अभी अभी यस्तिका भाटिया का विकेट भी भारत ने गंवाया। एक आसान सा कैच लपका गया था मिड ऑन पर यस्तिका का। अगली गेंद और इस बार इस गेंद को कट किया है खूबसूरत तरीके से लेकिन पॉइंट पर मुस्तैद फील्डर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका, निश्चित रूप से कुछ रन बचाने में कामयाबी मिली है इस बार। 96 अभी भी भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। भारतीय खेमा थोड़ा सा निश्चिंत क्योंकि उनको ये तो लग रहा है कि जीत तो उनके पाले में आने वाली है लेकिन कितनी जल्दी आएगी इसकी भी एक संभावना भारतीय टीम तलाश रही है। अंतिम गेंद इस ओवर की, 49 गेंदों में भारत को चाहिए 41 रन। रितु मोनी की ये गेंद और इसको ऑन साइड में खेला है मिड विकेट पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 12वां ओवर समाप्त हुआ और स्कोर भारत का 97 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
1: 42 विन फ्रॉम 8 ओवर्स, सो एक्जैक्टली 5 रन्स पर ओवर रिक्वायर्ड, बट क्वाइट ओवर्स विल परहैप्स जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन। वी सॉ दैट हैपन इन द प्रीवियस ओवर वेयर रितु मोनी गेव जस्ट 3 रन्स एंड पिक्ड अप दैट 1 विकेट, and that kind of impact will help. If another bowler or two can deliver another couple of such overs, then we can suddenly see India staring at a situation where they need somewhere in the vicinity of 6 runs per over in the last 5 overs or so. But for the moment they seem to have this chase well under control with 2 explosive batters out there in the middle, Richa Ghosh and Jemima Rodrigues, and still some batting firepower to come. They've got the skipper Harmanpreet Kaur, they've got Deepti Sharma, and after that it's basically the bowlers. So Bangladesh need wickets. Rabia has been a little inconsistent with her line and length. The leg spinner begins her 3rd over and the very first ball outside off stump punched away by Jemima towards sweeper cover where Fahima Khatun is fielding as the substitute fielder. Rabia's 2nd over particularly was rather expensive, 9 runs of it, which began with a shot which was played by Yastika Bhatia behind the stumps, and from there on she gave another 3 to Yastika and then another couple of singles, but otherwise it's been good tidy stuff this time.

0: याद होगा कि जो पिछला विश्व कप खेला गया था उसमें कई भारत को मैच जिताने वाली पारियां खेली थी। फिलहाल स्ट्राइक पर हरमनप्रीत कौर, 42 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता भारत को इस मुकाबले को जीतकर 2 अंक अर्जित करने के लिए। और इस नए ओवर की पहली गेंद जिसको कट किया, लेकिन पॉइंट पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग के बावजूद 1 रन जरूर लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन 4 विकेट के नुकसान पर 14वें ओवर की शुरुआत हुई है। बांग्लादेश को अपना अंतिम मैच लॉर्ड्स में खेलना है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 जून को, और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को अपना मुकाबला खेलना है। अगली गेंद इस बार इस गेंद को कलाइयों के सहारे मोड़ दिया है ऑन साइड में, जब तक मिड विकेट की फील्डर आ गया है गेंद को उठाकर वापस करें, 1 रन और जुड़ता हुआ भारत के खाते में, बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन 4 विकेट के नुकसान पर। भारत ने पिछला विकेट 98 के स्कोर पर ऋचा घोष का गंवाया था, और उसके बाद से यह साझेदारी भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बार स्वीप करने का प्रयास, बल्ले पर पूरी तरह से गेंद आई नहीं, जड़ पर टकराई, 1 रन आउट का मौका, लेकिन मौका हाथ से जाता हुआ बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर खड़ी हो गई थी और वापसी की कोई संभावना दूर दूर तक दिख नहीं रही थी। थ्रो आया और थ्रो पकड़ा नहीं जा सका, गेंदबाज ने उस थ्रो को पकड़ा नहीं और फिर वापस जेमिमा लौट आई अपनी क्रीज में। ये किस्मत यहां पर जेमिमा के साथ,
1: कॉमेडी ऑफ एरर्स एवरीवेयर। फर्स्ट हरमनप्रीत लुकिंग फॉर द स्वीप, जेमिमा वाज वेरी क्विक टू रिस्पॉन्ड, ऑलमोस्ट रीच द अदर एंड, देन हैड टू पुट द स्किड्स ऑन एंड कम ऑल द वे बैक, एंड इट वाज अ पुअर थ्रो टू बी फेयर, एंड नाहिदा जस्ट कुडंट गेट इनफ कंट्रोल ओवर दैट। हैड इट बीन ऑन द स्टंप्स दैट वुड हैव बीन अ फिफ्थ विकेट फॉर बांग्लादेश।
0: अगली गेंद इस ओवर की चौथी गेंद, और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से सामने खेला लॉन्ग ऑन की तरफ, 1 रन के लिए कप्तान हरमनप्रीत ने। यह विकेट अगर भारत ने रन आउट के रूप में गवाया होता तो निश्चित रूप से बांग्लादेश की वापसी जोरदार तरीके से इस मुकाबले में हो सकती थी, लेकिन ये एक आसान सा मौका बांग्लादेश के हाथों से फिसला है। भारत के लिए राहत की बात कि अभी भी जेमिमा मैदान पर है और स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रही है। इस बार फुल टॉस गेंद, इसको खेलना चाहती थी ऑफ साइड में, हालांकि चढ़ में गेंद थी बिल्कुल ब्लॉक होल में, यॉर्कर गेंद एक तरह से हो गई थी जेमिमा के लिए। किसी तरह से अपने विकेटों से दूर ढकेला इस गेंद को, रन कोई नहीं मिलेगा, 104 अभी भी स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर, रिक्वायर्ड रन रेट 5.35 का। अगली गेंद इस बार रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, गेंद की लाइन को चुकी है, एक अपील हुई है विकेट कीपर की तरफ से, और क्या ये तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया जाएगा इस बात का इंतजार। हालांकि जेमिमा के शारीरिक भाषा से ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि क्रीज में अपने मौजूद थी।
1: यस, बट अनदर टाइडी ओवर धर्मेंद्र, सो एग्जैक्टली व्हाट वी वर डिस्कसिंग अबाउट 3-4 ओवर्स अगो, दैट यू हैव अ फ्यू टाइडी ओवर्स एंड यू सडनली पुश दैट रिक्वायर्ड रन रेट अप टू द विसिनिटी ऑफ 6, एंड नाउ फ्रॉम 6 ओवर्स इंडिया नीड 33, एंड यू हैव टू प्लेयर्स हु आर हाई क्वालिटी हाई पेडिग्री बट जस्ट शॉर्ट ऑन रन्स इन दिस वर्ल्ड कप कैंपेन, and it's being reflected in the way that they are batting. Harmanpreet Kaur, her batting ability or her batting form has been a topic of discussion. 36, 12 and 4, 24 thus far in this World Cup. Jemima Rodrigues 1, 19 and 12, and they are batting like they are under pressure. That run out chance also created because they were so desperate to switch ends, and it's just the moment that Bangladesh were probably looking for in this successful defense if they are to get there, to get a couple of out-of-form batters in there and put the squeeze on them, and that's begun happening. This partnership has just about come into form the last few overs or so. Just 6 runs. How many balls faced between the two of them? If we can get those numbers in as well. But yes, just a tight squeeze coming in. 10 balls faced. So that just tells you that they are feeling that pinch, and India not being able to maintain the momentum which was provided early on, especially by Shefali Verma. So since her wicket, it's been a pretty different story. Yastika Bhatia losing a wicket, then Richa Ghosh also falling. And in that last over, we nearly saw a rather tragicomic moment, but it turned out well for India. But it could so easily have led to the dismissal of Jemima Rodrigues, Dharmendra.
0: Yeah, ye wicket भारत के लिए कहा जा सकता है कि तोसवे की तरह आया, क्योंकि एक ही छोर पर लगभग

0: लाइन इज डेफिनेटली इनसाइड धर्मेंद्र।
1: जी हाँ, अब तो बिल्कुल आसान सा दिख रहा है लक्ष्य भारत के लिए, खासतौर पर पिछले ओवर में जो 15 रन आए इससे भारतीय टीम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है। और जेमिमा रॉड्रिग्स, जिनको फॉर्म की तलाश थी, उन्होंने एक तरह से वापसी की, आत्मविश्वास को अपने वापस संजोया है और भारत का स्कोर पहुंचा दिया 119 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब 30 गेंदों में भारत को चाहिए 18 रन, अभी भी 6 विकेट सुरक्षित है। रिक्वायर्ड रन रेट 3.60 का। और स्ट्राइक पर अब कप्तान हरमनप्रीत कौर, रितु मोनी गेंदबाज के तौर पर आई है एक बार फिर से आक्रमण के लिए। बांग्लादेश की टीम चाह रही है कि साझेदारी को तोड़कर थोड़ा सा वापस लौटा जा सके इस मैच में। उम्मीदें लगभग समाप्त होती हुई थी बांग्लादेश के लिए, ये पहली गेंद और इसको एक रन के लिए खेल दिया। फिर से एक बार विकेटों के बीच में खराब दौड़ दोनों खिलाड़ियों के बीच में, आपस में टकराते टकराते दोनों बची हैं, निगाह बिल्कुल एक दूसरे पर नहीं गेंद पर दोनों की निगाह, और वहां पर टक्कर होते होते बची है। ये तीसरा मौका है जब रन लेने के दौरान दोनों के बीच तालमेल की काफी कमी दिखाई है देवायन।
0: एब्सोल्युटली, एंड टू सीनियर प्लेयर्स एंड हरमनप्रीत इन पर्टिकुलर जस्ट लुकिंग सो ऑफ कलर, शी इज गोइंग फॉर रिस्की सिंगल्स, शी इज रनिंग अ लिटल ऑल ओवर द प्लेस, बट इट्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स फॉर हर। इफ शी स्टेज नॉट आउट देन इट विल डू हर कॉन्फिडेंस अ लॉट ऑफ गुड।
1: अगली गेंद और इस बार सीधे बल्ले से सामने की तरफ, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला है गेंद को, मिसफील्डिंग चौरन।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: सीधे बल्ले से खेला था इस मौके पर जेमिमा ने, और जेमिमा ने यह ठान लिया है कि अब कुछ भी हो बड़े स्ट्रोक्स लगाने ही है, जल्दी से जल्दी मैच को समाप्त करना है। इस बार लगभग ओवर पिच गेंद थी, गेंदबाज के सिर के ऊपर से उठाकर खेला, रोका जा सकता था इस गेंद को, लेकिन थोड़ी सी गेंद घूम गई पड़ने के बाद और गेंदबाज काफी निराश थी। इस चौके के साथ भारत का स्कोर बढ़ता हुआ 128, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास और इस गेंद को फिर से 4 रन के लिए खेला है।
2: ये लगा आभा का चौका,
1: फिर से सीधे बल्ले से खेला गया स्ट्रोक सामने की तरफ लगभग उसी दिशा में, और यह चौका एक और आता हुआ जेमिमा के बल्ले से। स्कोर भारत का बढ़ता हुआ 128, 4 विकेट के नुकसान पर। अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 27 गेंदें बची हुई हैं। महंगा ओवर एक और चलता हुआ इस समय रितु मोनी का। रितु मोनी को एक सफलता जरूर मिली है, लेकिन इस ओवर में अभी तक 2 शानदार चौके जेमिमा ने जड़ने में कामयाबी हासिल की है। दबाव गेंदबाज के ऊपर, कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 9 रन आ चुके हैं और अब अगली गेंद खेलने के लिए तैयार जेमिमा। बहुत लाजवाब बल्लेबाजी इस समय जेमिमा की तरफ से। दोनों के बीच अभी तक 19 गेंदों में 30 रन की साझेदारी, बहुत तेज तर्रार साझेदारी।
0: एब्सोल्युटली, 24 ऑफ द लास्ट 9 बॉल्स, बट दैट फर्स्ट रन ऑफ दैट 9 बॉल्स कुड हैव रिजल्टेड इन अ रन आउट।
1: अगली गेंद को इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हवा में गेंद और ये कैच लपका गया। जेमिमा का विकेट आखिरकार भारत ने गंवाया है, खेलना चाहती थी ऑन साइड में, बल्ले का बाहरी किनारा लिया गेंद ने, पॉइंट पर गई गेंद और एक आसान सा कैच। इस तरह से जेमिमा की एक तेज तर्रार पारी का समापन हुआ है। जेमिमा रॉड्रिग्स कुल मिलाकर 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए हैं, 3 चौके और 1 छक्का उनकी इस पारी में। लग रहा था कि उन्होंने जो निराशा का दौर था उससे पार पा लिया है, लेकिन उनकी कोशिश थी कि जल्दी से जल्दी मैच जीत कर भारत को नेट रन रेट में और बेहतर स्थिति में लाया जा सके, उसी कोशिश में उन्होंने अपना विकेट गंवाया है। हालांकि भारत के सामने अभी भी कोई खास परेशानी नहीं, 26 गेंदों में अब सिर्फ 9 रन चाहिए, 128 पर भारत ने 5वां विकेट गंवाया है।
0: एब्सोल्युटली, अनसेल्फिश बैटिंग फ्रॉम जेमिमा, गोइंग फॉर द बिग हिट, एंड इट लुक्ड इनिशियली दैट शी हैड एब्सोल्युटली मिडल्ड इट, बट वेंट ऑफ द लीडिंग एज एंड वाज ग्लीफुली एक्सेप्टेड एट बैकवर्ड पॉइंट इनसाइड द सर्कल बाय मारूफ अख्तर, and that brings the all rounder Deepthi. Didn't quite get that 356th international wicket today with the ball. It was more than handy, 4 overs, none for 23, and now has a chance to put the finishing touches. But what Jemima, especially in that last short burst across the last 2 overs, has done is made this a much, much more favorable equation. Had Harmanpreet's wicket fallen when she went for that almost suicidal looking single, then things would have been completely different, but Bangladesh have missed a lot of opportunities today.
1: अगली गेंद दीप्ति शर्मा के लिए, दीप्ति ने इसको हल्के हाथों से खेला है 1 रन के लिए, और फिर दूसरे रन को तलाश रही थी लेकिन उसकी संभावना थी नहीं। एक रन से और बढ़ता हुआ स्कोर भारत का 129, 5 विकेट के नुकसान पर अब 8 रन।

0: Nigar Sultana Jyoti. Yastika Bhatia was caught by Rabe off the bowling of Ritu Moni for 23. That was 94 for 3. Richa Ghosh was LBW to Rabea Khan for 10. And the score then was 98 for 4. And Jemima Rodrigues was the fifth out after an explosive little innings, 26 from 15 balls. And of course, Harmanpreet Kaur and Deepti Sharma, the two not out batters at the end. So two wickets for Ritu and one wicket for Nahida, one wicket for Maroofa Akhtar and one wicket for the leg spinner Rabea Khan. India win this match by 5 wickets and move along to 6 points in this World T20 as well. And now we'll take you through to the post-match show. Kaun Banega Player of the Match?
1: महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है।
1: यहां होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबकी मन की।
2: मेरे लिए मन की बात ये कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है।
1: तभी तो रहता है इंतजार अगले महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुनो मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर।
3: प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा के 53 रनों की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराकर
4: मैच जीता है और शफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच से भी नवाजा गया है। सीधा चलेंगे मैनचेस्टर, जहां पर सुनेंगे कि क्या कह रही है प्लेयर ऑफ द मैच शफाली वर्मा।
5: 3 of 34, टॉप स्कोर्ड इन द लास्ट गेम एंड इन दिस वन, हाउ प्लीज्ड आर यू विद योर बैटिंग दिस टूर्नामेंट?
6: या ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी द वे आई बैटेड टुडे, बट इफ आई विल बी नो डाउट दैट विल बी सो हैप्पी फॉर मी, बट या गुड कॉन्फिडेंस टुडे एंड सो हैप्पी आई कैन ग्रैब सम रन्स।
5: 136, आई थिंक इट्स फेयर टू से यू माइट हैव थॉट यू'd बी चेसिंग अ लिटिल लेस। व्हाट वाज द चैट व्हेन यू वेंट आउट टू चेस एंड व्हाट वाज द प्लान इन द पावर प्ले?
6: Nothing much, just backing our batting, just whatever loose ball will come, we'll just go for the 4 or maybe 6, or otherwise we'll go for 1 run. So it's just a normal talks, not the different thing.
5: Any particular shots that you've been working on that you feel are now coming out very nicely?
6: Well, just try to, you know, choose the right ball, whatever come in my in my zone, just go for that. Otherwise, take single. It's just a very simple thing, but sometimes it's complicate a lot. But I just talk to myself a lot this time, and yeah, it's going good. I'm so happy for that.
5: What did you feel about when you got out and how you got out?
6: Of course, sad. The way I got out, as I said earlier, if I will be the not out, and that will be more happier for me.
5: I want to ask you one quick question on your bowling. You're now India's opening bowler as well. How much are you working on your bowling? At what point did this become a regular plan that yes, Shifu's going to play a big role with the ball?
6: Well, of course, in the nets I used to bowl with the new ball and with the old ball. Sometimes I laugh a lot, but in the end, whatever team need, I'm there for that. And thanks to Harmandeep, she always, you know.

0: give me a lot of confidence when I bowl, give me a very good field set. So just thanks to her.
1: You ready for Australia?
0: Yeah, of course. So we'll go to London and see them.
1: All right. Well done today. Good luck for that, Shefali.
0: Thank you.
2: ये थी प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा और हम हाजिर हैं इसी कार्यक्रम में इसी नाम से प्लेयर ऑफ द मैच जो अब आप सबको पता है कि कौन है। मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट दर्पण तिखिया।
3: बहुत बहुत शुक्रिया मुदिता। और हमारे साथ है एक्सपर्ट्स का एक पैनल जिसमें हमारे साथ आज जुड़े हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय सेलेक्टर चेतन शर्मा। बहुत बहुत स्वागत चेतन एक बार फिर आपका।
4: धन्यवाद।
3: साथ में साथ के साथ हमारे साथ जुड़े हैं विजय धैया फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर। विजय वेलकम टू द शो वंस अगेन।
5: थैंक यू सो मच।
3: और उसके साथ साथ क्रिकेट जगत पर अपनी पैनी नगाह दशकों से रखने वाले शशांक शेखर भी हमारे साथ मौजूद है जाने माने खेल पत्रकार। शशांक बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
4: धन्यवाद।
3: चेतन जी आपके साथ शुरुआत करेंगे और वहीं से उठाएंगे जहां पर शेफाली ने छोड़ा। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा बड़े हरफन मौला अंदाज में कि विल गो टू लंदन एंड देन वी विल सी देम। ये जो एटीट्यूड है ये कितना जरूरी है।
4: मैं कॉन्फिडेंस कहूंगा इसको। देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। जब जीत देखिए हर समय इंपॉर्टेंट है कि आप जीतते हैं, जीत से सीखते हैं। क्या भारतीय टीम ने सीखा ये तो हमें नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि ये ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो बाहर आएंगी नहीं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस देख के मुझे बहुत अच्छी बात लगी। मतलब शेफाली मैं पहले से बात कर रहा था जब हम मिड शो में बात कर रहे थे, ऊपर से स्टार्ट मिलेगा आप इस मैच को जल्दी खत्म कर देंगे। नेट रन रेट क्या है मुझे चिंता ज्यादा नहीं है। देखिए आप मैच जीतते चले जाएंगे नेट रन रेट तो आएगा ही नहीं सामने। तो अब आपने बांग्लादेश को मात दी, अब आपकी ऑस्ट्रेलिया की बारी। आपको रणनीति प्लान करना है। अच्छी बात है कुछ जो मुझे समझ आई है जमीमा का मेला चला आज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेफाली ने ऊपर से रन बनाए। स्मृति की कोई टेंशन नहीं है। देखिए वो अपना रन बना देती है। वन ऑफ आप आउट हो गए आज। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो रन बने हैं आपके। तो जब रन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें जो बीच में हुई है रनआउट्स मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप तालमेल आपका नहीं है वो थोड़ा सा बना के रखिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके नहीं देगा जो बांग्लादेश ने आपको मौके दिए। ऐसे रनआउट्स कभी वो छोड़ेगा नहीं। तो कुछ चीजें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट है। हर समय क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आप करते हैं। देखिए कभी आप परफेक्ट नहीं है। आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। इंप्रूव करते जाइए जीतते चले जाइए।
2: जी बिल्कुल। शेफाली खुश नहीं थी आउट होने से और उन्होंने कहा कि मैं तो चाहती हूं मैच फिनिश करके जाऊं। शायद ये हम सब भी देखना चाहते हैं। विजय चेतन ने बात की शेफाली के कॉन्फिडेंस की। इसके अलावा मैच्योरिटी और इंटेंट भी दिखता है अब उनकी इनिंग में।
6: आई थिंक इंटेंट आपको हमेशा नजर आएगा पर जिस तरीके से ये जो स्ट्रोक प्लेयर होते हैं ना जब ये खेलते हैं तो मिलियन डॉलर लगते हैं। जब आउट होते हैं तो कई बार आपको लगता है कि इस नादानी की जरूरत थी क्या पर वो खेलते हैं इसी तरीके से। आप किस इस फॉर्मेट में किसी भी तरीके को खिलाड़ी के देखेंगे जो इस इंटेंट से खेलेगा जो आपको पारी की इस तरीके की शुरुआत देगा उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम नजर आएगी क्योंकि वो ज्यादा रिस्क उठाते हुए आपको नजर आते हैं। वो इस तरीके की क्रिकेट ज्यादा खेलते हुए नजर आते हैं। आप जब इस स्टेज पर लगातार रन बनाने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। उनको कॉन्फिडेंस शायद इस बात से भी अब देखने को लग रहा है कि जिस तरीके से उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलिंग में भी दी जा रही है। सिर्फ यही है कि प्लेयर सारे बढ़िया ही होते हैं उनको किस तरीके से आप महसूस कराते हैं और उनसे बेस्ट कैसे ले सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फिर वो अपने आप को एक प्रमुख अंग उस टीम का मानने लगते हैं जो मुझे लगता है धीरे धीरे शेफाली को वो महसूस हो रहा है कि मैं सिर्फ इस टीम में खेल नहीं रही हूँ मैं एक प्रमुख उस तरीके की खिलाड़ी हूँ कि जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है और मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
3: और नजर हो भी क्यों ना नौवा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है उनका और वुमेन्स टी ट्वेंटी आईज में सिर्फ हरमनप्रीत कौर मिथाली राज और स्मृति मांधना के पास उनसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड है। लिव बाय द स्वॉर्ड डाई बाय द स्वॉर्ड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ अ प्लेयर शी इज। बट अनदर गुड पॉइंट दैट चेतन रेज्ड शशांक वॉज जेमिमा स्कोरिंग दोज रन्स बिकॉज अर्लियर वी सॉ in the last three matches she looked a little bit scratchy but the boundary started flowing towards the end.
7: Yes, that bodes well for India as they take on Australia come Sunday. Jemima, you know, she looked as if she wants to finish the match as early as possible, also keeping in mind probably the run rate. But she took on the spinners and hit some lusty blows and she was trying another which got her out. So this is not a typical Jemima innings. It was a breezy cameo, but it came at the right time for India and it helped India finish the match well before the final over. So that's, and she was timing the ball well. Now

0: She came in the middle order. Earlier, she used to bat at number 3, where she had more time to build an innings and all. But if she's coming at 4 or 5 or even 6, then she needs to, you know, start hitting from the word go. And she tried to do that. And she was successful to a large extent today, which is good for India.
1: जी, और अगर हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास भी हमारे एक्सपर्ट्स के लिए कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नंबर्स है 2342-1083 और 2342-1085. इसके पहले दिल्ली का कोड 011 लगाना ना भूले. बैटिंग की बात चल रही है विजय, तो यस्तिका भाटिया इस मैच में उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है. जो कहा जा रहा था कि जिसकी वजह से हम उनको प्रेफरेंस दे रहे थे कि एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनता है और पावर प्ले में बढ़िया प्रदर्शन वो कर सकती हैं, क्या लगता है कि अगले मैच के लिए उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है आज के परफॉर्मेंस के बाद?
2: जिस तरीके से अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है, उनके ऊपर जो विश्वास दिखाया गया है, वो टीम कॉम्बिनेशन के हिसाब से तो एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है वो आपके लिए. और उनकी जगह भी वही है, वो टॉप 3 में ही बल्लेबाजी आपको करती हुई नजर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे बदलाव आप ऑलरेडी कर चुके हैं. जवेरा के बारे में बात करते हैं, जिस तरीके का उनका खेलने का तरीका है, वो जितने ज्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर में जाएंगे उतनी ज्यादा उनके लिए और ज्यादा चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की खिलाड़ी हैं कि थोड़ा सा समय जरूर लेती है, लेकिन फिर वो समय लेने की भरपाई आखिरी में आके जरूर कर लेती है. वो वैसे खिलाड़ी के लिए शुरू से ही अटैकिंग खेलना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है. रिचा उस नंबर पर नहीं आती जिस नंबर पर आज बल्लेबाजी करने आई थी. नॉर्मली आप उन्हें 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखती, वो एक फिनिशर का रोल उनका रहता है. तो शायद आज टीम टैंक है, जो थिंक टैंक है, उनका ये सोचना था कि शायद इस मैच में आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. रिचा के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत बढ़िया नंबर है, तो शायद इस वजह से आप चाहते थे कि थोड़ा सा गेम टाइम उनको और ज्यादा मिल जाए इस मैच के अंदर. पर वो खेलते एक ही तरीके से, उनको ये नहीं रहता ऑपोजिशन क्या है, उनको ये रहता है कि अगर बॉल मेरे हाफ में है तो वो अपने आप को बैक करती है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना है तो 3-4 प्रमुख जो खिलाड़ी हैं आपके बल्लेबाजी में, उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा उस दिन.
3: जी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चुनौती होने वाली है कड़ी, और मस्ट विन चुनौती होने वाली है. खैर, मस्ट चीजों की हम बात कर रहे हैं. मस्ट इज आर कॉलर्स एंड यू कैन ऑल्सो कॉल ऑन आर नंबर्स एंड जॉइन इन इन द शो. वी हैव वन कॉलर ऑनलाइन, उनसे बातचीत करेंगे. नमस्कार, अपना नाम बताइए.
4: जी, मैं विक्टर कुमार से बोल रहा हूँ.
3: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
4: मैं समस्तीपुर ग्राम पोस्ट बोझा मोहिद्दीन नगर से बैरव फिलेरो के जिला से बात कर रहा हूँ.
3: जी, अपना सवाल बताइए.
4: तो सवाल ये है, मेरा टीम का इतना खराब फील्डिंग तो कभी नहीं चल रहा था, इतना खराब फील्डिंग चल रही है.
3: जी,
4: ऐसे तो ये बड़ा मुकाबला में कभी भी मेरा टीम नहीं ये सफर कर पाएगी.
3: जी जी जी, हम आपका सवाल जरूर लेंगे, अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे. चेतन बाजी, वहीं पर बात घूम फिर कर आ गई है जो मिड इनिंग शो में हमने दोबारा डिस्कस की थी, और शायद सवाल वैलिड भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 4 कैच छोड़ेंगे तो फिर वहां पर मुश्किलात हो सकती है.
5: देखिए, आप किसी के खिलाफ भी अगर मैच खेलते हैं, उनके खिलाफ आप कैचेस छोड़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी. अगर आप सोचिए, अगर आपने आज कैचेस सारे पकड़े होते तो 110 के आसपास टोटल होता, तो यू हैव इजीली वन दिस गेम 14-15 ओवर्स में आप मैच को जीत लेते. तो आज आपने जीत हासिल की है, वो इंपॉर्टेंट है.
3: जी, और अब सीधा लेके चलेंगे आपको मैनचेस्टर, वहां पर सुनेंगे कि कप्तान क्या कह रहे हैं. सबसे पहले सुनेंगे बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को.
6: See, we have created a lot of chances in the middle, especially in the bowling, so we couldn't grab them, so they take this game away from us, and I think the way we actually bowled in the last game, we couldn't bowl.
7: How was 136 at halftime? Were you satisfied with the batting effort?
6: We are short of 15 to 20 runs, and we had a good start in the power play, what we are looking for the last few games. So, but we couldn't carry on in the middle, and in the last few overs of the innings, I think what we should accelerate on that time, so couldn't capitalize ourselves.
7: Positives even after the power play when India were looking strong. You stayed in the game in the second innings break also. You got your team around. India needed 33-36. What was your message then to still try and keep the game alive? You still had a foot in the game at that stage.
6: Yeah, we are talking about like anything can happen anytime. So just be positive and try to bowl in the right areas and try to be so calm. If it is the opportunity come, you have to grab it. So somehow I think we lost the momentum and they played really well.
7: Are you happy with the progress the team has made in your first international cricket in England? It's not like you've had a lot of experience over here. Are you satisfied with the progress overall?
6: See, it's not about success every time. I think the way this whole unit actually grew.

0: And an interesting thing, Vijay, Harman said that our confidence has changed since that win against Australia in Navi Mumbai. She's talking about the 50-over World Cup, obviously. But how have things changed for Australia? Because they must be seething about losing that game as well, and they look hungry. So how do you see that contest panning out?
1: Every time they come into the ground, I'm talking about Australia, their hunger is always there. And they set the tone. In early 2000, their main team has set the tone for the rest of the world to catch up the way they have played Test match cricket. Around that time, everybody is trying to do the same thing. And then their men's team winning 3 World Cups is absolutely evident that kind of cricket they love playing. Same goes for the women's side as well. They're the most dominating side as far as the women cricket is concerned. And they take pride in that. I think they're not going to forget what happened in the Mumbai. They'll come with that sort of a mindset that they're not going to give an inch as far as the Indian team is concerned. And let's not forget, if you keep an opponent like India alive, if they beat Australia, you might meet them again.
0: Right.
1: So Australia must be thinking, let's finish one opponent here in the league stage itself. So I think the pressure is going to be on the Indian side playing against the top side, plus everything on stake.
0: एवरीथिंग ऑन स्टेक. और आपको ये बता दें कि उससे पहले एक और मुकाबला होने वाला है जो भारतीय दृष्टिकोण से अहम है, वो है दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला अब से कुछ देर में होने वाला है. ब्रिस्टल में ये मुकाबला है जिसका टॉस हो चुका है. नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेतन भाजी, ये थोड़ा सा भारत के लिए खतरे की घंटी है क्या, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के पास मौका है बड़ा स्कोर बनाने का और वो बड़ा नेट रन रेट बूस्ट पाने का.
2: देखिए, मुझे अगर आप मेरी अपनी सोच से मैं बात करूं तो मुझे दूसरे मैच में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मैच के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. ठीक है, अगर एंड ऑफ द डे साउथ अफ्रीका हार जाते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन आप उसके ऊपर वो नहीं कर सकते. आप निर्भर मत रहिए. देखिए, दूसरे के ऊपर निर्भरता और देन आप सोच रहे हैं वो हारेगा मैं जीतूंगा, मतलब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस. आपने आज अच्छी क्रिकेट खेली, यू डिड वेल. आप क्या यहां से सीख कर गए हैं, आपने क्या गलतियां की, उस पर सुधार कीजिए. एंड अगर जो नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका का होना वो मालूम पड़ जाएगा आपको 3 घंटे के अंदर, लेकिन आप अपनी तैयारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कीजिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हराते वैसे ही आप थ्रू है, तो कोई टेंशन नहीं है. तो जो आपके हाथ में जो आपको करना है वो आप कीजिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है.
1: मुझे लगता है कि रन रेट तस्वीर बनी आने वाला है
2: बहुत.
1: हाँ, जिस तरीके से आप पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डाल रहे हैं उसमें रन रेट बहुत बहुत मुश्किल है कि रन रेट वहां पर आए. सीधा सीधा है दोनों टीमों के लिए, आप अपने बचे हुए मैचेस जीतिए और जिंदा रहिए
3: जी. और अगला मैच नॉकआउट मैच हो सकता है भारत के लिए. विजय, अभी आप बात कर रहे थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हर डिपार्टमेंट में एक्सेल तो कर ही रहा है इस टूर्नामेंट में भी, लेकिन साथ ही साथ वो जिस किलर इंस्टिंक्ट के साथ खेलने उतरता है, तो यू नीड दैट मेंटल स्ट्रेंथ, दैट माइंडसेट टू बीट देम.
1: तो वो मेंटालिटी ओवरनाइट नहीं बन सकती है, आपको उसकी तरफ अग्रसर होना पड़ता है. और जैसे हमने प्री शो में भी ये बात करी थी कि ये टीम एक बनती हुई टीम है, इस तरफ की तरफ आप नजर डालें, बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए पहला वर्ल्ड कप है. T20 वर्ल्ड कप से हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, अगर आप उस तरफ नजर डालेंगे तो उसमें आप कुछ ना कुछ जरूर ऐसे बॉक्सेस है जिनको टिक करते हुए नजर आएंगे. दूसरी तरफ आप अगर उस टीम की तरफ नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपको ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे नजर आएंगे जिनके पास बड़े मैचेस खेलने का अनुभव है. तो जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं वो तभी खेलते हैं जब लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं. और वो सिर्फ स्किल सेट नहीं है, एक बहुत चीज आपने यहाँ पर जिक्र की, मेंटालिटी. आई थिंक वो जिस मेंटालिटी से उतरते हैं वो एक विनिंग मेंटालिटी है. आप उनसे खेलते वक्त सिर्फ ये नहीं सोच रहे होते हैं कि हम अपने अच्छे दिन पे जीतेंगे, कई बार आप ये भी सोच रहे होते हैं कि हमारा अच्छा दिन तो होगा, क्या उस दिन ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा खराब दिन हो सकता है जहां पर हम उनको पकड़ सकते हैं. इस तरीके की धाक कुछ ऑस्ट्रेलिया टीम ने पिछले कुछ समय में जमाई है, और इसी वजह से आप सिर्फ उनको स्किल से नहीं हरा सकते, आपके उस दिन मानसिकता भी उनसे बेहतर होनी चाहिए.
0: खैर, हम ये बैठे बैठे आकाशवाणी के स्टूडियो में ये सोच रहे हैं कि हमारे लिसनर्स क्या सोच रहे हैं, सीधा जुड़ते हैं एक लिसनर्स के साथ और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि आज की जीत पर. नमस्कार, अपना नाम बताइए.
4: नमस्कार, मेरा नाम राम अवतार है, मैं कैथल और हरियाणा स्टेट से बोल रहा हूँ. सर,
0: राम अवतार जी, क्या सवाल करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से?
4: मेरा शहर सर, पहले तीनों क्रिकेट के जगत गुरुओं को नमस्कार मेरा.
1: नमस्कार,
4: और मैं सर ये चाहता हूँ कि जैसे यस्तिका भाटी को हम 3 नंबर पे उतार रहे हैं, तो 3 नंबर पे उतार के और हरमन को उतार के और ऋचा को उतार के फूलमाली को क्यों नहीं उतार सकते हम? वो भी एक बहुत बेहतर बैट्समैन है, आईपीएल में हमने देखा उसका जलवा.
0: जी जी जी तो
4: एक मैच

0: सकते हैं, जज तो नहीं कर सकते ना किसी को कि मिस गया उसका।
1: जी शशांक, वेलकम टू यू विद दिस क्वेश्चन। भारतीय फुलबली स्टार्टेड ऑफ इन इंडियाज फर्स्ट प्लेइंग 11 व्हेन दे फीचर्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, नाउ फाइंड्स हरसेल्फ आउट ऑफ द प्लेइंग 11, हाउ डू यू सी इट?
2: सो अभी जैसा कि हमारे कप्तान हरमनप्रीत ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अब आप

0: हिसाब से हम अपनी टीम चुनेंगे, जिसको हम हॉर्सेस फॉर कोर्सेज कहते हैं। तो उस फुलवनी ने पहला तो मैच खेला, उसके बाद इनको लगा कि शायद वो कॉम्बिनेशन जो वो उतारना चाहते हैं वहां पे उनकी जगह नहीं बनती है। इसका अर्थ कहीं से भी ये नहीं है कि वो बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं है, इंडियन टीम में है, इंडियन स्क्वाड में है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी परफॉर्मर है। हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हम देखें उनको खेलते हुए, ये संभव है।
1: विजय, कुड इट बी द लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम स्मृति एंड दीप्ति देयर इज नो अदर लेफ्ट हैंडर इन दैट ऑर्डर, डू यू थिंक दैट इज व्हाई दे हैव हेज्ड देयर बेट्स ऑन यास्तिका भाटिया?
2: I think before left hand, right hand combination, you need to understand, or as a team management, for us sitting here, need to understand what they feel, who they think is can give you the best. At the moment, they feel that Yastika Bhatia can give them what they're looking for. Then comes the combination, left hand, right hand combination. You have to pick up the best batter in the side. In their eyes, at the moment, it's Yastika Bhatia, and that's the reason why they're going with them. It's very simple to understand sometimes. You know what happens is, whoever is not playing, it's very easy to advocate and say that person can play as well. But the people who matter at the moment, they think that this is the person who can do the job for us, and they back that person.
3: जी विजय, थोड़ी देर पहले आपने रिचा घोष की बात की। रिचा नीड्स सम टाइम एंड देन शी एक्सप्लोड्स। व्हेन शी गेट्स मोर टाइम शी प्रूव्स टू बी मोर इम्पैक्टफुल, एंड ऑलमोस्ट सेम एज विद जेमी आल्सो। शी परफॉर्म्स बेस्ट व्हेन शी हैज टाइम टू रोटेट द स्ट्राइक एंड देन एक्सेलरेट। आज के मैच में रिचा घोष को ऑर्डर में पहले भेजा गया, क्या ऐसा ही कुछ आप अगले मैच में एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिसीजन लेंगे?
2: अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है, क्योंकि आज रिचा का उस नंबर पे आना आप नॉर्मली उन्हें देखते नहीं है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखें, कोई भी फॉर्मेट रहा, चाहे 50 ओवर की बात करें या T20 की बात करें, आपने हमेशा उनको एक फिनिशर के रूप में इस्तेमाल किया, और उन्होंने वो काम किया भी है। लेकिन कई मैचेस ऐसे भी रहे हैं जहां पर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे थे और आपकी उतनी विकेटें नहीं गिरी थी, लेकिन वो मोमेंटम आपको चाहिए था, तभी रिचा का बैटिंग ऑर्डर हमेशा थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्योंकि उनकी पास जो एबिलिटी है, कई बार आपके पास बीच में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो आपको गेम सेटअप करके देते हैं। जेमी का आपने जिक्र किया, वो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हैं कि गेम सेटअप करके देती हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो गेम सेटअप करते हैं, कुछ होते हैं जो मैच को फिनिश करते हैं। पिछले कुछ समय में रिचा आपके फिनिशर रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि उनका इस्तेमाल उसी तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बराबर की लड़ाई लड़नी है, तो आपके जो अपने इस तरीके के खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा प्रमोट करना ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं। उनको सिचुएशन और ऑपोजिशन से फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को बैक करती हैं, और ऐसे ही खिलाड़ी बढ़िया टीमों के खिलाफ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
1: एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया 4 में से 4 मुकाबले जीतकर ग्रुप ए में इस वक्त शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं, जिसके बाद आज भारत नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसने 1 मुकाबला कम खेला है। 3 में से 2 जीत उनके नाम अर्जित है, और अगर आज दक्षिण अफ्रीका नेदरलैंड्स को हरा देता है तो फिर भारत और दक्षिण अफ्रीका बराबरी पर आ जाएंगे, और बात आएगी इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेज बांग्लादेश। ये दोनों ही मुकाबले लॉर्ड्स के मैदान पर खेले जाएंगे। चेतन बाजी, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को बताएं, क्योंकि आप तो लॉर्ड्स में खेले हुए हैं, बार बार चर्चा होती है लॉर्ड्स पर उस स्लोप की और अलग डायमेंशंस की, क्या परिस्थितियां रहती हैं वहां पर और क्या वो चीजें हैं जिनका ध्यान देना होगा, खासकर हमारे बॉलिंग यूनिट को?
4: देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप स्लोप के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दें, बिकॉज हम लोग एज ए क्रिकेटर्स स्लोप के यूज टू नहीं होते हैं। हर ग्राउंड का डिफरेंट डायमीटर्स है, तो हर ग्राउंड पे आप जाएंगे आपको डिफरेंट कुछ ना किसी का अप द हिल आपको गेंदबाजी करनी है, कोई डाउन द हिल है, और लॉर्ड्स में भी ऐसा है, एक डाउन द हिल है, एक अप द हिल है। वो प्लेयर्स को बहुत जल्दी अनुमान लग जाता है उस चीजों का, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, लॉर्ड्स द मका ऑफ क्रिकेट का हर समय कहा जाता है, एक आपकी उम्मीद रहती है, एक तमन्ना रहती है कि आप लॉर्ड्स में जाएं और वहां प्रदर्शन करें। देखिए, लॉर्ड्स में खेलना एक अपने आप बड़ी बात है, लेकिन वहां पर खेलकर जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब भी आप अच्छा प्रदर्शन कुछ करते हैं लॉर्ड्स के ऊपर, वो बोर्ड के ऊपर आपका नाम जाता है, वो बोर्ड के ऊपर नाम सारी उम्र रहेगा, तय उम्र रहेगा, और जो भी वहां पर जाएगा हर क्रिकेटर आपका नाम वहां पड़ता है, तो एक आपके दिल में वो रहती है कि मैं यहां जाऊं, अच्छा प्रदर्शन करूं और इस बोर्ड में अपना नाम को शुमार करूं। और वो तभी हो सकता है भारतीय टीम के लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया को जाकर वहां मात देते हैं, तो मात देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने हरा दिया उनको, तो ऑटोमेटिक आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि आपको भूलना नहीं चाहिए जो विजय भी बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया

0: इंडिया विल गो फॉर अ किल बिकॉज दे डोंट वांट टू प्ले इंडिया अगेन. वो अगर यहां से जीतती है इंडिया तो दे हैव टू प्ले इंडिया समवेयर और द फाइनल्स में मिल सकती है इंडिया, क्योंकि इंडिया में दमखम है. तो दे विल गो फॉर अ किल, तो वो इंडिया को भी अपना पूरा दमखम के साथ क्रिकेट खेलनी जरूरी है.
1: जी विजय, अगर हम ऑस्ट्रेलियन टीम पे नजर डाल लें तो मल्टीपल मैच विनर्स हैं उनके पास. हर मैच में एक नया नाम, एक नया खिलाड़ी उभर के सामने आ जाता है जो जम के खड़ा होता है, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी उसका साथ दे रहे होते हैं. कभी कैमियोज में कर रहे होते हैं या फिर कभी कुछ और साथ में अच्छे स्कोर्स बना रहे होते हैं. भारतीय टीम को भी एक ऐसे एंकर की जरूरत पड़ेगी. हम जो स्कोर्स देख रहे हैं कि शेफाली वर्मा ने आज शानदार खेला, लेकिन 53 पे जाके वो पारी खत्म हो गई है. वही ऑस्ट्रेलियन ओपनर बेथ मूनी को अगर हम देखें, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट 74 वो बना चुकी हैं, पिछले मैच में एलिस पेरी 71 बना चुकी हैं. भारतीय टीम को इस एंकर रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है.
2: अगर आप इस फॉर्मेट की तरफ नजर डालेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम रोल है एंकर का. होता क्या है कि जो आपके टॉप थ्री हैं उनके पास सबसे ज्यादा समय है सबसे ज्यादा बॉलिंग खेलने का, तो वो आपको इसलिए नजर आते हैं सबसे ज्यादा रन बनाते हुए, या कभी भी आप देखेंगे टॉप थ्री के पास है तो आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो शीट एंकर का रोल अदा करेंगे. लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर जो टॉप के तीन खिलाड़ी हैं उनका खेलने का तरीका भी बिल्कुल अलग है. आपने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बात करी, जो दो नाम आपने लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपना लोहा मनवा चुके हैं. इसी तरीके से अगर आप धीरे धीरे खेलेंगे, शेफाली से आप कंसिस्टेंसी की उम्मीद नहीं कर सकते, उनसे आप इंपैक्टफुल पारियों की उम्मीद जरूर कर सकते हैं. जो कंसिस्टेंसी आएगी वो दूसरे छोर से किसी और खिलाड़ी को करनी पड़ेगी, क्योंकि शेफाली अगर इस तरीके का स्टार्ट आपको देती है तो वो प्रेशर गेंदबाजों के ऊपर डाल देती है, जिसका फायदा दूसरे छोर से उठाना और बल्लेबाजों के लिए बहुत जरूरी है.
3: जी, और हम उम्मीद करेंगे 28 जून को लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा ही इंपैक्ट देखने को मिले. आज का दिन 25 जून भारतीय क्रिकेट में यादगार, क्योंकि लॉर्ड्स के ही मैदान में कपिल देव की उस टीम ने पहली बार विश्व कप उठाया था, और इसी कामना के साथ की 2026 में T20 विश्व कप भारतीय टीम, भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में उठाए. हम लोग आते रहेंगे इस विश्व कप का ब्रॉडकास्ट आपके साथ लेके. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले हम अपने एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे. चेतन शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: धन्यवाद.
3: थैंक यू सो मच विजय भैया फॉर गिविंग योर टाइम.
2: मोस्ट वेलकम.
3: एंड थैंक यू सो सो मच शशांक शेखर फॉर बीइंग ऑन.
0: थैंक यू सो मच.
1: लेकिन साथ ही चलने से पहले दर्पण, हम अपनी टेक्निकल टीम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिसमें शामिल थे जयराम, संदीप दहिया, सुशील कुमार, राम आशीष यादव, और साथ ही साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्शन टीम जिसमें शामिल थी कविता वी, तन्मय पंत, अमीशा पटेल, और उस सब से भी ऊपर हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान.
3: इन सभी के एफर्ट्स, सभी के मिले जुले प्रयत्न से ये ब्रॉडकास्ट संभव हो पाया है. उम्मीद करते हैं आपको सुनने में मजा आया होगा. मैं दर्पण, मेरे साथ
1: मनिता,
3: और हम आपसे विदा लेते हैं 28 जून को भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का लाइव ब्रॉडकास्ट लेकर वापस आएंगे. सुनना ना भूलिएगा. नमस्कार.
4: प्लेयर ऑफ द मैच. अभी आप आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
5: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ऑफ द आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

अभी आप सुन रहे थे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच का मैनचेस्टर से सीधा प्रसारण FM 102.3 MHz पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस

FM-बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे राष्ट्रीय हिंदी समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन

0: बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:51 पर हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।